सुप्रभात, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है।

0: यह आकाशवाणी सागर है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना

0: कारोबार बढ़ा सकें।
1: कैन इंटर द वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हर रोज की तरह समूह स्वर में गाई इस मातृ वंदना के साथ।

समूह स्वर में मातृवंदना अभी आप सुन रहे थे। और आइए अर्चना कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये भजन। संगीत है जगजीत सिंह का।

जगजीत सिंह की आवाज अभी आपने सुनी। संगीत था जगजीत सिंह का, एल्बम था माँ। इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना, और इस कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं कवि नारायण अग्रवाल की रचना, स्वर है अनूप जलूटा का।

अनूप जलूटा की आवाज अभी आपने सुनी। रचना थी कवि नारायण अग्रवाल की। इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।

यह आकाशवाणी सागर है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 6:25 हुए हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होंगे सुरेश वाडकर और साथियों के। आज आप सुनेंगे इसका 9वां भाग। भूले बिसरे गीत सुनिएगा। सुबह 6:40 से संस्कृत में समाचार होंगे। सुबह 6:55 से इन्हें हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह पेश किया जाएगा 7:00 से। 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा प्राकृतिक खेती से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार। विशेषज्ञ होंगे मयंक मेहरा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रैली करेंगे

सुबह 7:10 से मनचाही गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा। सुबह 7:20 से गांधी चर्चा सुनिएगा। सुबह 7:45 से समाचार प्रभात का वक्त होगा सुबह 8 बजे का। रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। लोक संगीत के कार्यक्रम में कुछ बुंदेली लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 से। सुबह 8:30 पर सुनिएगा रूपक पुकार रही है वसुंधरा, प्रस्तुति होगी डॉक्टर संजय सिंह वर्मा की। आज आप सुनेंगे इसका पुनः प्रसारण। सुबह 9 बजे से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10 बजे से, इसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। गुलदस्ता कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 10:05 से। सुबह 10:30 पर सुनिएगा परिचर्चा, विषय होगा विश्व पर्यावरण दिवस। आमंत्रित विशेषज्ञ होंगे श्री रजनीश सिंह डीएफओ वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, डॉक्टर आशीष त्रिपाठी प्रमुख वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र देवरी और डॉक्टर नीलेश शाह उपसंचालक पशुपालन और डेयरी। सुबह 11 बजे से सुनिएगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह 11:30 से एक बार फिर से आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनवाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। इस घंटे की सुर्खियां सुनिएगा शाम 5 बजे से, इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी होगा शाम 5:02 से, इसे भी हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। लिजा के लफ्ज और लम्हे ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:30 से। संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:35 से। शाम 6 बजे से सुनिएगा कार्यक्रम सुनहरी यादें आकाशवाणी के 90 बरस। सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:30 से। लोकरंग कार्यक्रम होगा शाम 6:45 से और शाम 7:20 से। हिंदी में समाचार होंगे शाम 7 बजे से, इन्हें हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण के तहत प्रेषित की जाएगी शाम 7:05 से। ग्राम सभा का अनुप्रसारण किया जाएगा शाम 7:30 से, इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात्रि 8 बजे सुनिएगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला अंतर्गत कार्यक्रम का प्रसारण, विषय होगा महिला सशक्तिकरण, इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:35 से। समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा रात्रि 8:45 से। मनचाहे गीत सुनिएगा रात 9 बजे से और रात 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर सुरेश वाडकर और साथियों के हैं। आज आप सुनेंगे इसका 9वां भाग।

लक्षण सहित होने पर भी अत्यंत सुंदर और सर्वथा दोष रहित है। भक्त कवि ने फिर चार वेदों की वंदना की है जो भव सागर पार करने के लिए जलयान के समान है। साथ ही प्रणम्य है ब्रह्मा जिन्होंने भव सागर की रचना की, जिसमें से एक ओर अमृत चंद्रमा तथा कामधेनु जैसे जीवनदायी निकले तो दूसरी ओर मनुष्य रूपी विष तथा मदिरा। तुलसीदास को विश्वास है कि देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके ही उनके मनोरथ पूरे होंगे। सरस्वती देव नदी गंगा शिव पार्वती आदि के सम्मुख सिर नवाकर ही वो श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन कर सकेंगे, तभी उनकी भाषा तथा कविता का जो प्रभाव उन्होंने कहा है सत्य हो सके।

रामचरितमानस का संगीत में पाठ अभी आप सुन रहे थे। गायक स्वर थे सुरेश वाटकर और साथियों के। आज आप सुन रहे थे इसका नौवां भाग। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में स्वागत है सभी सुनने वालों का, और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं बनारसी ठग फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं, बोल हैं प्रेम धवन के, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में। और अब कार्यक्रम में अगला गीत बरखा फिल्म से सुनवाते हैं। आवाज है लता मंगेशकर की, बोल हैं शैलेंद्र के, संगीत है चित्रगुप्त का।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुधा मल्होत्रा की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत है अनिल विश्वास का, फिल्म का नाम है आरजू।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं अजीज कश्मीरी का लिखा गीत। संगीत है अजीज खान और इब्राहिम का, आवाज है सुलोचना कदम की और फिल्म का नाम है एक्टर।

अभी संस्कृत में समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बज चुके हैं, पेश कार्यक्रम सुबह सुबह। सभी सुनने वालों को सुमित दुबे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, प्री मानसून की गतिविधियों के चलते भीषण गर्मी से धीरे धीरे निजात मिलेगी और अच्छी बारिश होते ही बात चलेगी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की, और हर साल की ये मुहिम छेड़ दी जाती है जो कि बहुत जरूरी भी है। और रोपे गए बहुत से पौधे पेड़ बनकर झूमते सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन बहुत से नन्हे मुन्हे पौधे रख रखाव और सुरक्षा के अभाव में पेड़ बनने का सपना संजोए दम तोड़ देते हैं। इसलिए पौधे लगाना तो जरूरी है ही, लेकिन उनकी जरूरतों का ख्याल रखना और उनके बड़े होने तक उनकी सेहत का ध्यान रखना और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी सेहत कुदरत की सेहत और कुदरत की हजारों हजार नियामतों की कृपा दृष्टि से हमारी सेहत और स्वास्थ्य

जुड़ा है। हमारे अस्तित्व से लेकर हमारे जिंदा रहने के लिए हमें प्रकृति सब कुछ देती है, लेकिन हमारा लालच पूरा नहीं कर सकती। जल, जंगल, जमीन, पेड़, पौधे, जीव जंतु, पहाड़, नदियां और हम, इन सब के बीच एक लंबी श्रृंखला है, एक चेन है, जो एक दूसरे पर निर्भरता के सिद्धांत पर चलती है। इसलिए सबका साथ जरूरी है। किसी एक घटक के असंतुलन से पूरा का पूरा पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है, और इस असंतुलन को सहते रहम दिल प्रकृति सुधारने का भरपूर प्रयास करती है, लेकिन एक समय के बाद परिणाम बहुत दुखदायी होते हैं। इसलिए दूषित सामाजिक पर्यावरण को ठीक करते हमें ऊपर की ओर चलते नीचे अपनी जड़ों को भी देखना होगा, उन संस्कारों के महत्व को पहचानना होगा जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पूरे पर्यावरण को संरक्षित करते हैं। कुल मिलाकर उपभोग की वृत्ति पर लगाम लगाएं, जल बचाएं, प्रकृति से जुड़ें, सुंदर वसुंधरा को उसके उसी स्वरूप में आगे हस्तांतरित करते चलें। पर्यावरण दिवस पर आज यही संकल्प लें हम सब।

0: सुबह सुबह कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।
1: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में आज का विषय है प्राकृतिक खेती से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, और विशेषज्ञ हैं मयंक मेहरा।
1: और निश्चित रूप से वर्तमान समय जो चल रहा है, किसान भाइयों को बहुत ध्यान रखने वाली आवश्यकता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि केमिकल से मृदा की जो दशा है वो बिगड़ती जा रही है, और ऐसे ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा अनाज उगना बंद हो जाएगा। इसी तारतम्य में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ भी किसान भाई जा सकते हैं। ये थोड़ा सा है कि उत्पादन थोड़ा कम होता है, लेकिन यदि आपको अधिक समय तक मिट्टी की दशा सुधारना है और आप सोच रहे हैं कि मिट्टी बहुत अधिक समय तक आपकी अच्छी बनी रहे, इसके लिए आपको अपनाना पड़ेगा प्राकृतिक खेती जैविक खेती। अब प्राकृतिक खेती जैविक खेती क्या है, मैं संक्षिप्त में इस चीज़ को लूँगा। प्राकृतिक खेती का सीधा सीधा मतलब है कि प्रकृति से प्राप्त जो चीज़ें हैं सिर्फ आपको उनका ही प्रयोग करना है आपकी मिट्टी में। अब उनसे आप कोई भी अलग अलग विधि से कोई कोई भी चीज बना सकते हैं, जैसे बीजामृत हो गया, जीवामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया, आपका नीमास्त्र हो गया, अग्नियास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, दसपर्णी अर्क हो गया। ये तमाम चीजें हैं और इन चीजों को आप अपने घर पे निश्चित रूप से बना सकते हैं। लागत बहुत कम आती है ना के बराबर, और आपके पास जो प्रकृति से प्राप्त चीजें हैं जैसे नीम की पत्ती हो गई, आपके यहाँ गौमूत्र हो गया, आपका गोबर हो गया, मटर हो गया, बेसन हो गया, गुड़ हो गया, ये तमाम चीजें जो आपके यहाँ नजदीक में आसानी से उपलब्ध होती हैं, बरगद के नीचे की मिट्टी हो गई, इन चीजों का प्रयोग करके ही आप मिट्टी की दशा सुधार सकते हैं। बीजामृत हो गया, बीज उपचार करते हैं, जीवामृत को आप मिट्टी में डाल सकते हैं और पेड़ पौधों भी डाल सकते हैं, चाहे फसल आपकी सब्जी वाली हो या कोई दलहनी या तिलहनी या कोई अन्य फसल है। इसके अलावा मैं अब बात करूँ जैविक खेती, तो जैविक खेती में लाभदायक जो बैक्टीरिया जो मिट्टी में रहते हैं, जो वर्तमान समय में केमिकल दवा डालने से वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, उसका असर ये है कि यदि ये ऐसी दशा रही तो यदि कोई मक्के का डंठल आपके खेत में पड़ा है और ऑर्गेनिक परसेंट कम हो रहा है, इसका मतलब है डंठल यदि आप 2 से 4 साल बाद भी देखेंगे तो वो आपको बैजों को तो मिलेगा। तो इसलिए बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैविक खेती में लाभदायक जीवाणु जो है, जो मिट्टी में लाभदायक हजारों लाखों की संख्या में रहते हैं, उसमें आप जैविक खेती के बहुत तरीके हैं, प्राकृतिक खेती के तरीके हैं। इन चीजों के कृषि विज्ञान केंद्र सागर में भी हमारी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी जैविक खेती से संबंधित स्यूडोमोनास हो गया, बेबीडियो बेसियाना हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, पीएसबी हो गया, तमाम प्रकार के हमारे यहाँ जो बायो फर्टिलाइजर हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र सागर में उपलब्ध होते हैं, और निश्चित रूप से इनका प्रयोग करना आवश्यक है। और इससे भी बेस्ट है कि आप प्राकृतिक खेती के थोड़ा बहुत जगह में, जो 5 एकड़ आपकी जगह है तो लगभग आधे एकड़ में आप निश्चित रूप से जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करें। उत्पादन थोड़ा सा यदि आपको लगेगा कि कम होगा, लेकिन आपकी की बनावट और मिट्टी की दशा निश्चित रूप से इससे सुधरेगी, और लागत भी आपकी कम होगी, क्योंकि यदि आप लागत कम करेंगे तो जो मुनाफा रहेगा उसका परसेंट आपके पास ज्यादा होगा। तो निश्चित रूप से आप प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को भी कुछ हद तक अपनी मिट्टी में हमेशा के लिए उपयोग करते रहें, जिससे लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, रोग कीट कम लगेंगे, मृदा की बनावट अच्छी होगी, वातावरण अच्छा होगा, मृदा की संरचना अच्छी होगी, जनधारण क्षमता में वृद्धि होगी, और अंत में निश्चित रूप से इसमें फसलों का उत्पादन भी किसान भाइयों को बढ़ेगा।
0: कृषि संकेत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। विषय था प्राकृतिक खेती से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, और विशेषज्ञ थे मयंक मेहरा। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में होंगे प्रादेशिक समाचार। इन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक आज। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश, समय पर पूरा हो मेट्रो रेल परियोजनाओं का काम। और भाजपा ने प्रदेश के दो और कांग्रेस ने एक राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सबसे पहले हजीरा जाएंगे और औद्योगिक तथा अवसंरचना

0: परियोजना की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरे का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं इज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रदेश आज इंदौर के एक निजी होटल में भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम 2026 की मेजबानी करेगा। ये फोरम मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये फोरम भारत और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्र के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को सुदृढ़ करने तथा मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा,
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: इंदौर में 9 जून से प्रारंभ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन की कृषि विभाग के सचिव निशांत परमड़े इंदौर पहुंचे और आयोजन से जुड़े विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री वरवड़े ने होटल शेरिटन, मैरिट होटल और ग्रामीण हाट बाजार सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल संचालन के प्रथम चरण के कार्य पूरा होने के बाद परियोजना के आगामी चरणों के कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में भोपाल और इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी भोपाल और प्रमुख व्यावसायिक केंद्र इंदौर में मेट्रो रेल यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। दोनों नगरों की मेट्रो रेल परियोजना के सभी चरणों के संपूर्ण कार्यों में तेजी से पूरा किया जा रहा है। समग्र प्रगति की दृष्टि से दोनों परियोजनाओं के दो तिहाई कार्य पूरे हो चुके हैं। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। इन सीटों के लिए नामांकन जमा करने की तिथि 8 जून है। जरूरी हुआ तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल लोकभवन में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और आयुष विभाग के साथ चर्चा करते हुए विश्व सिकलसेल दिवस के तारतम्य में सिकलसेल उन्मूलन गतिविधियों को सघनता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उक्त पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों को वर्ष 2024-25 के लिए दिए जाएंगे। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और नाम संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। इस सुविधा का लाभ लेते हुए कुल 8,317 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इन सभी आवेदनों पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले की सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। आगर मालवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान चलाया जाएगा। डिंडौरी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इंदौर में शासकीय सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुहिम में खुड़ैल तहसील के ग्राम गारी पिपलिया में देव धर्मराज मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सिंगरौली कलेक्टर की अध्यक्षता में कल आपदा प्रबंधन कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने पंचायत विभाग और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

अभी प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:20 हो चुके हैं। पेश है मन चाहे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सभी को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जीवन मृत्यु इस फिल्म के गीत के साथ। इसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, लिखा आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत की फरमाइश है आप सभी की, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमारी सरबत देशमुख, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली, कुमारी सानवी, कुमारी कल्पना और समस्त राजे जाधव

देशमुख और वायाल परिवार। जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश है दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू की, और कुंडल बाणी महाराष्ट्र से ये व्हाट्सएप फरमाइश है गंगाधर सावनकर और विजया लक्ष्मी सावनकर की। एक और फरमाइश है ये मोताला महाराष्ट्र से और से भेजने वाले हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और विद्या कुमारी। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं जीवन मृत्यु फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जीवन मृत्यु फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत को सुनना चाहा था गौर झामर जिला सागर से कुंदनलाल चौरसिया निर्मोही, अंबिका प्रसाद चौरसिया, विवेक कुमार चौरसिया, वीरेंद्र कुमार चौरसिया, निशु चौरसिया, देवव्रत चौरसिया, वैभव चौरसिया, श्रेष्ठ चौरसिया, मानस चौरसिया, शुभांश चौरसिया, नमन चौरसिया और उनके तमाम साथी। इस समय आप सुन रहे हैं मन चाहे गीतों का कार्यक्रम और कार्यक्रम में अगला गीत रूप तेरा मस्ताना फिल्म से। आवाज मोहम्मद रफी की है, बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फरमाइश आप सभी की मधुबनी बिहार से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी की। ग्राम अमावनी जिला सागर से ये व्हाट्सएप फरमाइश है गुड्डू तिवारी, पूजा तिवारी, नारायण प्रसाद तिवारी, योगिता तिवारी, वैष्णवी तिवारी और समस्त तिवारी परिवार की। जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा ने ये फरमाइश भेजी है। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से ये फरमाइश है संतोष खड़से और विनोद खड़से की। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर और जयपाल यादव की। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं रूप तेरा मस्ताना फिल्म का गीत। आवाज है मोहम्मद रफी की।

0: इस समय आप सुन रहे हैं मन चाहे गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में समय है अंतराल का।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है मन चाहे गीतों के कार्यक्रम में। और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश आंधी फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, लिखा गुलजार ने और संगीत है राहुल देव बर्मन का। फरमाइश आप सभी की, पोटिया कणा दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू।

शशांक साहू और सीमा साहू ने इस गीत के लिए व्हाट्सएप फरमाइश लिख भेजी है और ये फरमाइश है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। पत्र हमें मिला है हरदेव मीका बलविंदर बिरक जैतिक बिरक और मीका बिरक का और जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से ये व्हाट्सएप फरमाइश है। मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहनी ऋतिक और बलवीर सिंह की। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से ये व्हाट्सएप फरमाइश है। राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक और आर्यन वर्मा की। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली। मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार की। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं आंधी फिल्म का गीत।

और अब आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं अधिकार फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में। गीतकार हैं रमेश पंत, संगीत है राहुल देव बर्मन का। फरमाइश आप सभी की। नेपाल पहले सागर से इस गीत के लिए पत्र में मिला तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, शिवा शिवांशु, यश अवधेश, प्रेम नारायण, रमेश कठोंदिया, सुजीत, रमाकांत दुबे और उनके तमाम साथियों का। और इसी गीत के लिए व्हाट्सएप फरमाइश हमें मिली सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मंजू और मयंक भाटिया की। पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग लखनलाल देवांगन और ईशांत देवांगन की ये फरमाइश है। और एक और फरमाइश है इसी गीत के लिए नेहरू वार्ड यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से पत्र भेजने वाले हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार और जितेंद्र मालाकार। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, फिल्म का नाम अधिकार।

अधिकार फिल्म के इस गीत के साथ ही मन चाहे गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 7:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा, वाचक स्वर जय शिखर का।

नमस्कार, आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन। अभी तक आपने सुना, अपने भोलेपन के कारण मैंने ये मान लिया था कि 21 दिन तक नियम में रहे हुए मजदूर बिना प्रयत्न के कतार में खड़े होकर मिठाई ले लेंगे और अधीर बनकर उस पर टूट ना पड़ेंगे। पर मैदान में बांटने की 2-3 रीतियां आजमाई गईं और वे विफल हुईं। 2-3 मिनट काम ढंग से चलता और फिर तुरंत बंधी कतार टूट जाती। मजदूरों के नेताओं ने खूब कोशिश की पर वो व्यर्थ सिद्ध हुई। अंत में भीड़, कोलाहल और छीना छपटी यहां तक बढ़ गई कि कुछ मिठाई कुचल कर बर्बाद हो गई। मैदान में बांटना बंद करना पड़ा और बची हुई मिठाइयों को मुश्किल से बचाकर सेठ अंबालाल मिर्जापुर वालों के बंगले पर पहुंचाया जा सका। दूसरे दिन ये मिठाई बंगले के मैदान में ही बांटनी पड़ी। और अब इससे आगे, मजदूरों की हड़ताल समाप्त होने के बाद दम लेने को भी समय ना मिला और मुझे खेड़ा जिले के सत्याग्रह का काम हाथ में लेना पड़ा। खेड़ा जिले में अकाल सी स्थिति होने के कारण खेड़ा के पाटीदार लोग लगान माफ कराने की कोशिश कर रहे थे। इस विषय में श्री अमृतलाल ठक्कर ने जांच करके रिपोर्ट तैयार की थी। इस बारे में कोई निश्चित सलाह देने से पहले मैं कमिश्नर से मिला। श्री मोहनलाल पंड्या और श्री शंकरलाल पारेख अथक प्रयास कर रहे थे, अथक परिश्रम कर रहे थे। वे स्वर्गीय गोकुलदास कहानदास पारेख और विठल भाई पटेल के द्वारा धारासभा में आंदोलन कर रहे थे। सरकार के पास डेप्यूटेशन भी गए थे। इस समय मैं गुजरात सभा का सभापति था। सभा ने कमिश्नर और गवर्नर को प्रार्थना पत्र भेजे, तार किए, अपमान सहे। सभा उनकी धमकियों को पचा गई। अधिकारियों का उस समय ढंग आज तो हास्यजनक प्रतीत होता है। उन दिनों का उनका अत्यंत हल्का बर्ताव आज असंभव सा मालूम होता है। लोगों की मांग इतनी साफ और इतनी साधारण थी कि उसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत ही ना होनी चाहिए थी। कानून ये था कि अगर फसल 4 ही आना या उससे कम आवे तो उस साल का लगान माफ किया जाना चाहिए, पर सरकारी अधिकारियों का अंदाज 4 आने से अधिक था। लोगों द्वारा ये सिद्ध किया जा रहा था कि उपज 4 आने से कम कूती जानी चाहिए, पर सरकार क्यों मानने चली भला। लोगों की ओर से पंच बैठाने की मांग की गई, सरकार को वो असहाय मालूम हुआ। जितना अनुनय विनय हो सकता था सो सब कर चुकने के बाद और साथियों से परामर्श करने के पश्चात मैंने सत्याग्रह करने की सलाह दी थी। साथियों में खेड़ा जिले के सेवकों के अतिरिक्त मुख्यतः श्री वल्लभ भाई पटेल, श्री शंकरलाल बैंकर, अनसुईया बहन, श्री इंदुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक, श्री महादेव देसाई आदि थे। श्री वल्लभ भाई अपनी बड़ी और बढ़ती हुई वकालत की बलि देकर आए थे। ऐसा कहा जा सकता है कि इसके बाद वे निश्चिंत होकर वकालत कर ही ना सके। हम नाड्याड के अनाथाश्रम में ठहरे थे। अनाथाश्रम में ठहरने को कोई विशेषता ना समझे। नाड्याड में उसके जैसा कोई स्वतंत्र मकान नहीं था जिसमें इतने सारे लोग समा सकें। अंत में नीचे लिखी प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए। हम जानते हैं कि हमारे गांव की फसल 4 आने से कम हुई है। इस कारण हमने सरकार से प्रार्थना की कि वो लगान वसूली का काम अगले वर्ष तक मुलतवी रखे। फिर भी वो मुलतवी नहीं किया गया। अतएव हम नीचे सही करने वाले लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस साल का पूरा या बाकी रहा सरकारी लगान नहीं देंगे, पर उसे वसूल करने के लिए सरकार जो भी कानूनी कार्रवाई करना चाहेगी हम करने देंगे और उससे होने वाले दुख सहन करेंगे। यदि हमारी जमीन खालसा की गई तो उसे हम खालसा भी होने देंगे, पर अपने हाथों से पैसे जमा करके हम झूठे नहीं ठहरेंगे और स्वाभिमान नहीं खोएंगे। अगर सरकार बाकी बची हुई सब जगहों में दूसरी किश्त वसूली मुलतवी रखे तो हम में से जो लोग जमा करा सकते हैं वे पूरा अथवा बाकी रहा हुआ लगान जमा कराने को तैयार हैं।
हम में से जो जमा कर सकते हैं उनके लगान जमा न करने का कारण ये है कि अगर समर्थ लोग जमा करा दें तो असमर्थ लोग घबराहट में पड़कर अपनी कोई भी चीज बेचकर या कर्ज करके लगान जमा करा देंगे और दुख उठाएंगे। हमारी ये मान्यता है कि ऐसी स्थिति में गरीबों की रक्षा करना समर्थ लोगों का कर्तव्य है। तो अभी आप सुन

0: गांधी चर्चा अभी आप सुन रहे थे। वाचक स्वर था जय शिखर का। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8 बजने को है। थोड़ी देर में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सिंह कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से

0: इस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रास्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भाव।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से

0: एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों

0: ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे, लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:15 हो चुके हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं ये पर्यावरण गीत। कलाकार हैं सिकंदर सिंह यादव।
1: बिरछा धरती को सिंगार, बिरछा

0: सिकंदर सिंह यादव के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। अगला लोकगीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्दन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्राम वासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है लोक संगीत के कार्यक्रम में और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक और पर्यावरण गीत। कलाकार हैं चंद्रभूषण पाठक और उनके साथी।

0: रात को जमाई हवा पानी परीक्षा ने हमें जोड़ा जिंदगानी सुधरा को जमाई हवा पानी परीक्षा ने हमें जोड़ा जिंदगानी
1: चंद्रभूषण पाठक के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। इस पर्यावरण गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।

यह आकाशवाणी सागर है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं रूपक पुकार रही है वसुंधरा। प्रस्तुति है डॉक्टर संजय सिंह वर्मा की, सुनते हैं आज इसका पुनः प्रसारण।

0: मैं ब्रह्मांड हूं, मेरी उम्र तकरीबन 14 अरब वर्ष है। मैं अक्सर सोचता था कि शायद मेरे आंगन में जीवन की धड़कन कभी सुनाई नहीं देगी। और सब कुछ यूं ही वीरान रहेगा। अरबों साल गुजर गए, फिर एक दिन मेरे कानों में कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। अरे, ये कैसी आवाजें मेरे कानों में पड़ रही हैं?
1: परमपिता, मैं पृथ्वी हूँ, आपके आंगन का एक छोटा ग्रह।
0: अच्छा, तो तुम पृथ्वी ग्रह हो। तुम्हारी धरती से ये कैसी आवाजें मेरे कानों में पड़ रही हैं?
1: परमपिता, कलकल की आवाज यहाँ पर बह रही नदियों और झरनों से आ रही है, और चहचहाने की आवाज पक्षियों की है।
0: ओ, यहाँ का नजारा देखकर तो मैं दंग हूँ। मेरे आंगन के एक ग्रह पृथ्वी में जीवन का संगीत आज मुझे सुनाई दे गया। ये बताओ, तुम्हारी धरती पर ऐसा क्या है?

0: मेरे बाकी ग्रहों और पिंडों पर नहीं है?
1: बताती हूँ परमपिता, मेरी धरती सूरज से ऐसी निश्चित दूरी पर मौजूद है कि इससे मिलने वाला प्रकाश लाभदायक साबित होता है।

0: ग्रह के तौर पर मैं बची रहूं, मगर मेरा जीवन संगीत, यह हंसती खेलती प्रकृति हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए।
1: दोस्तों, इस बारे में मंथन किया जाना चाहिए। आज भी हर रोज 50 से 150 स्पेसीज खत्म हो रही हैं। आने वाले सालों में 8 में से एक पक्षी और 1/4 जानवरों के भी विलुप्त होने का खतरा है।
2: पृथ्वी की धरती पर पहाड़, नदियां, समुद्र, मिट्टी के अलावा असंख्य प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इनकी इस विविधता को जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कहते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पूर्व निदेशक डॉक्टर एम ए हक,
3: चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा जीव हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो पशु पक्षी, मतलब कुछ भी हो, जीवाणु हो, सभी जैव विविधता का अंग है।
4: समूची पृथ्वी की जैव विविधता को कुल 34 हॉटस्पॉट या केंद्रों में बांटा गया है, जिनमें से भारत के पास 2 हॉटस्पॉट हैं। पहला पूर्वी हिमालय और दूसरा पश्चिमी घाट। यहाँ की जैव विविधता बहुत ही समृद्ध है। अनेक प्रजातियों के स्थानिक जंतु और पौधे पाए जाते हैं।
1: भारत में 47,000 से ज्यादा प्लांट स्पेसीज पाई जाती हैं और जानवरों की 89,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। ये इस देश की अद्भुत क्षमता है कि सिर्फ 2.5% भूभाग होने के बावजूद ये जमीन दुनिया की 17% ह्यूमन पॉपुलेशन को, 18% एनिमल पॉपुलेशन को ये अपने में संजोए हुए हैं।
2: जैव विविधता से हमें भोजन, कपड़े, दवाएं जैसी जीवन की हर चीज मिलती है। ये हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक बी के त्यागी,
5: क्या आप भोजन में कोई ऐसी चीज खा सकते हैं जो बायोडाइवर्सिटी की देन नहीं है, यानी कि जो प्राकृतिक स्रोत है या पेड़ पौधे या जानवरों से नहीं आती है? तो पहली बात तो हम भोजन कहाँ से लेंगे, हमारा जो फूड सिक्योरिटी जो आज हम कहते हैं कि सबको पेट भर खाना मिले, वो कहाँ से आएगा?
4: जैव विविधता में अनेक प्रजातियों के जंतु और पेड़ पौधों के अलावा सूक्ष्म जीवों की भी अहम भूमिका होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सूक्ष्म जीव अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर अन्नपूर्णा,
6: 1 ग्राम अगर सॉइल आप लेंगे तो उसमें आपको 1 मिलियन सेल्स से ज्यादा आपके पास माइक्रोब्स होंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, एक्टिनोमाइसिटिस हो, साइनोबैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, अर्थवॉर्म्स हैं, ये सारे जो हैं हमारे डाइवर्सिटी के अंश हैं। कोई भी दवाई हम यूज करते हैं उसका प्रभाव इस बायोडाइवर्सिटी पर जरूर पड़ता है, तो उसके वजह से आगे का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो बड़ा कमजोर पड़ जाता है।
4: सूक्ष्म जीवों की असंख्य प्रजातियां हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, जो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इनके क्षय पर प्रकाश डाल रहे हैं वनस्पति विज्ञानी डॉक्टर अखिला नंद राय।
7: हमारे सामने आम है, इमली है, महुआ है, तमाम सारी प्रजातियां हैं। इसमें से कुछ कट रही हैं, घट रही हैं, लुप्त प्राय हो रही हैं, वो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको क्या अंदाजा है कि जो जमीन के अंदर या हमारे अगल बगल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीवी हैं, वो किस रेट से घट रहे हैं? हमने एक पौधा उखाड़ा, उस पौधे से एसोसिएटेड बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, बग्स होती हैं और बहुत सारे सूक्ष्म जीवी होते हैं जो आपस में एक साथ रहते हैं। वो ये हमें आपको नहीं पता, लेकिन हम उसको उखाड़ देते हैं अपने स्वार्थ के लिए।

0: तुम तो अपने खेत में गाय के गोबर से बनी खाद का इस्तेमाल करती हो, है ना? लेकिन देखो तो पड़ोस के हल्कू चाचा कोई दूसरी तरह की खाद का प्रयोग करते हैं, जिसे वो बाजार से लाते हैं।
1: बेटा, वो रासायनिक खाद कीटनाशक और उर्वरक होता है, उससे उपज बढ़ती है, लेकिन मिट्टी और पर्यावरण के लिए वो नुकसानदायक है।
0: वो अम्मा

0: ओ कीट, कीटनाशक ऐसा कोई शक बोल रही थी तुम, ये क्या होता है?
1: बेटा फसलों में कीड़े लग जाते हैं, उन्हें मारने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है, समझे? ये रसायनों से बनती है। ये कीड़ों को मारने के अलावा मिट्टी, हवा और पर्यावरण में भी पहुंचती है और इन सब की सेहत को खराब करती है, समझे? किसान भाई जो इनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी इन रसायनों से खतरा बना रहता है। अच्छा सुनो, देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं।
2: एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में पेस्टिसाइड्स बड़ी चिंता का विषय है। इसके उपयोग से फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के साथ ही वो इंसेक्ट्स भी मर जाते हैं जो पूरे इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। वर्तमान समय में एग्रो बायोडायवर्सिटीज पर चर्चा, उस पर रिसर्च, ये बहुत अहम है।
0: अम्मा ये एग्रो बायोडायवर्सिटी तो बड़े कमाल की चीज है। अम्मा ये रासायनिक कीटनाशक नुकसानदायक है?
1: हाँ बेटा। अच्छा देखो बेटा, डॉक्टर अन्नपूर्णा हमें क्या समझा रही हैं? सुनो तो,
3: जब भी हम कोई ऐसी दवाई यूज करते हैं, चाहे वो कीटनाशक हो या कोई भी दवाई हम यूज करते हैं, उसका प्रभाव इस बायोडायवर्सिटी पर जरूर पड़ता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी ये केमिकल्स हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, फंजिसाइड्स हो, जो भी हैं, इनका बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करें। और जितना ज्यादा आप ये गोबर का खाद हो, कंपोस्ट हो या फिर केंचुआ का जो कंपोस्ट हो, इन चीजों को अगर आप यूज करोगे तो आपका सॉइल का हेल्थ भी बरकरार रहेगा और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी जो है सस्टेन रहेगी।
0: अम्मा हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। देखो ना, यहीं से हमें जीवन के लिए सब कुछ मिलता है।
1: मेरा बेटा तो बड़ा समझदार हो गया।
4: हमारी पृथ्वी के जंगल जैव विविधता के विशाल स्वरूप होते हैं। इनसे हमें अनेक संसाधन मिलते हैं और तो और हमारा वातावरण भी स्वच्छ बना रहता है। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क दिल्ली के वैज्ञानिक डॉक्टर एकता खुराना,
5: जो जंगल होते हैं, जितना भी पोल्यूशन होता है उसको ट्रैप करते हैं, डस्ट को ट्रैप करते हैं, और ये जंगल जो है ये हमें ना तो सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड पौधे देते हैं, ये हमें पहनने के लिए कपड़े, ये हमें लकड़ी, ये हमें और अन्य चीज़ें देते हैं जो हमारे दैनिक उपयोग में ज़रूरी है। और जैव विविधता और जंगल और इकोसिस्टम अगर नहीं होगा तो ये सब इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा।
4: बड़े अफसोस की बात है कि हमारी इतनी समृद्ध जैव विविधता के बावजूद आज जीवों के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर ए के कंड्या,
6: कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो इस पूरे विश्व से गायब हो गई, इनको कहते हैं ग्लोबली एक्सटिंक्ट। कुछ होती हैं लोकली एक्सटिंक्ट, जैसे सागर में एक प्लांट मिला करता था बॉसवेलिया सेरेटा, सफेद रंग का कागज लिखने का जिससे बनाया जाता था, वो यहाँ बहुतायत में था, अब यहाँ नहीं है। शहडोल, उमरिया उस इलाके में अभी भी है, तो इसको कहते हैं लोकली या रीजनली एक्सटिंक्ट। ये यहाँ से गायब हो गया क्योंकि यहाँ आदमी ने उसको काटा और पर्यावरण इधर का ऐसा बिगाड़ दिया, जो बचे हुए थे पनप नहीं पाए और धीरे धीरे वो भी मर गए और गायब हो गए।
4: अब तो हमारे आसपास हमेशा पाई जाने वाली प्यारी चिड़िया गोरैया भी विलुप्ति के कगार पर जा पहुंची है।

0: हमें आगे जानकारी दे रहे हैं विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर आर गोपीचंद्रन।
1: एक खतरा का सिर्फ एक ही कारण होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हमको जितना चाहिए उतना अगर हम लेंगे, उस नजर से, उस सोच से हम करेंगे तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर हम ओवर एक्सप्लॉयट करते हैं हमारा सॉइल का, हमारा वाटर्स का, देन क्या हो जाता है, प्रदूषण लेवल भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो जीवित उसमें रह सकता है वो रह नहीं पाएंगे।
0: एक तरफ तो वैज्ञानिक नई जीव जातियों की पहचान करने में जुटे हैं, मगर दूसरी ओर पहले से मौजूद अनेक जीव जातियां तेजी से लुप्त होती जा रही हैं। मानवीय गतिविधियां इसकी बड़ी जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से विलोपन अधिक नुकसानदायक नहीं होता है। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क दिल्ली के वैज्ञानिक डॉक्टर फैयाज खुदसर।
2: मैं उदाहरण स्वरूप बताऊंगा, डोडो जो बहुत सुंदर एक चिड़िया थी जिसको हमने खो दिया, मॉरिशस में आइलैंड पे मिलता था, लोग गए बसे अपने जानवर को लाए तो लोगों ने चिड़िया को खाया और जानवर ने उसके नेस्ट को उड़ाया, अब डोडो खो दिया हमने। उसी तरह पिंक हेडेड डक हमारे देश में था, बांग्लादेश में था, म्यांमार में था, हमने घर बनाए ऊँचे, उनके घरों दे तोड़े, आज वो खत्म हो गए, पोस्टल स्टाम्प में वो हैं। वल्चर 97% लॉस हो गया वल्चर का। दिल्ली की नदी, इतनी सुंदर नदी, जब लॉन्ग स्नॉटेड क्रोकोडाइल थे, यहाँ टर्टल्स थी, यहाँ डॉल्फिन्स थे, जो हमने आज खो दिया।
3: हमारे आसपास और कौन कौन सी प्रजातियों पर विलुप्तीकरण का खतरा पैदा हो गया है बता रही हैं पर्यावरणविद डॉक्टर ईला तिवारी।
4: हमारे वनों में चौसिंगा, पिसोरा, कृष्ण मृग, हाथी तथा गौर, तेंदुआ, बाघ, सेही, अजगर, राजगिद्ध, सफेद तीतर, तोता, नीलकंठ, मैना, लाल मुनिया लुप्त प्राय हैं। वनस्पतियों में लुप्त प्राय वनस्पति हैं सफेद चंदन, जमाल गोटा, काला शीशम, सफेद सेमल, बच गुगुल, डीका माली, श्वेताक्र, अकोल, भृंगराज तथा ब्राह्मी लुप्त प्राय हैं।
3: गिद्ध जैसे जंतु आज दुर्लभ हो रहे हैं, इन्हें प्रकृति के सफाई कर्मी के तौर पर जाना जाता है। पर्यावरण मंत्रालय के पूर्व निदेशक डॉक्टर एम ए हक।
5: अब लोग कहेंगे भाई गिद्ध से क्या होता है, जब जानवर मर जाते हैं तो उनको लोग जो भी उनके अंग हैं जिनका उपयोग हो सकता है जैसे चमड़ा वगैरह को निकाल लेते हैं, बाकी को फेंक देते हैं कहीं आबादी के बाहर, तो वहां गिद्ध आकर उनको खाते थे, उनको समाप्त कर देते थे। तो एक तो वहां पे दुर्गंध नहीं होता था, बीमारियां नहीं फैलती थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके कारण आवारा कुत्ते हैं उनको अधिक भोजन नहीं मिलता था। अभी गिद्ध जब लगभग समाप्त हो गए हैं तो कुत्तों की तादाद बहुत बढ़ गई है, और आप बराबर देखते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि हर साल कितने लोग हैं जिन्हें कुत्ते काटते हैं जिससे वो मर भी जाते हैं।
3: शहर बसाने के लिए मानव ने जंगल साफ किए और पेड़ काटे, जिसके कारण पेड़ पौधे तो नष्ट हुए ही पशु पक्षियों की असंख्य प्रजातियां भी समाप्त हुई। जंतु विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर सुबोध जैन।
6: जब से पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ है तभी से लगातार स्पीशीज नई बनी है और कई स्पीशीज लगातार समाप्त हुई हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है स्पीशीज के समाप्त होने की। लेकिन वर्तमान समय में ये बात जरूर है कि मनुष्य के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके कारण जो स्पीशीज खत्म हो रही हैं उनकी दर बढ़ गई है।
7: दीपक, अरे तू इन बेचारे पक्षियों को अपनी गुलेल से क्यों मारने में लगा हुआ है?
8: मैडम, एक दो पक्षियों का अगर मैं शिकार कर लूं तो कौन सा बड़ा नुकसान पहुंच जाए?
7: तुम्हें गलत फहमी है।
8: क्यों?
7: प्रकृति में हर चीज आवश्यक है, चाहे वो कीट पतंगे जैसे छोटे जीव ही क्यों ना हो।
8: क्या मैडम, छोटे छोटे कीट पतंगे जैसे जीव भी जरूरी हैं?
7: बिल्कुल दीपक, हमारे पर्यावरण में कोई भी जीव या प्राकृतिक संसाधन व्यर्थ नहीं है।
8: हाँ।
7: तुम्हें मालूम है
8: क्या?
7: कि ये नन्हे कीट पतंगे फूलों में परागण क्रिया को अंजाम देते हैं?
8: नहीं नहीं मैडम, ये परागण क्या होता है?
7: अच्छा, मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो, फूल के नर और मादा हिस्से आपस में जुड़कर आगे की पीढ़ी के लिए फल और बीज का निर्माण करते हैं। और मजे की बात ये है कि इस प्रक्रिया में कीट

0: पतंगे पौधों की सहायता करते हैं।
1: कीट पतंगे पौधों, वो कैसे मैडम?
0: बेटा ऐसे कि फूल के नर और मादा हिस्से एक ही पौधे या अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। अब फूलों से अपना भोजन पाने के लिए ये कीट पतंगे उनके पास जाते हैं।
1: अच्छा।
0: और अनजाने में नर हिस्से के पराग कण झड़कर मादा हिस्से पर गिर जाते हैं।
1: ओ मैडम, मधुमक्खी भी फूलों पर मंडराती रहती है, क्या वो भी फूलों के परागण में सहायता करती है?
0: बिल्कुल सही कहा दीपक।
1: हाँ?
0: मधुमक्खी भी परागण में सहायता पहुंचाती है।
1: हाँ।
0: अच्छा बताओ।
1: हाँ?
0: क्या इन छोटे कीट पतंगों के बिना हम रह सकते हैं?
1: बिल्कुल नहीं मैडम, मुझे सब समझ में आ गया। प्रकृति में हर चीज कोई ना कोई महत्वपूर्ण काम करने के लिए बनी है।
0: हाँ।
1: और मैडम, अब मैं पक्षियों का कभी शिकार नहीं करूँगा और दूसरों को भी शिकार करने से मना कर दूंगा, ठीक है?
0: शाबाश दीपक, ये हुई ना बात।
2: चार्ल्स डार्विन के अनुसार प्रजातियों का विलुप्तिकरण एक प्राकृतिक क्रिया है, परंतु मानवीय क्रियाकलापों ने इस प्रक्रिया को इतना तेज कर दिया है कि यदि हम अभी नहीं चेते तो पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन नष्ट हो सकता है। डॉक्टर फैयाज खुद सर,
3: हम जब मनुष्यों को देखते हैं तो मनुष्य ने ये ठानी कि हमें अपने को विलुप्त कर लेना है। हमारे आसपास जो जंगल थे उसको खत्म कर दिया, खाद्य श्रृंखला में हमने छेद कर दिया। जब छेद कर दिया तो हवा ठंडी आएगी कि गर्म, ये पता नहीं, तो ये गर्म हवा आ रही है। दो पांव के जानवर जिसको मनुष्य कहते हैं, उसने हमेशा सोचा कि हम सुप्रीम प्राइमेट्स हैं और हम शायद दुनिया के सारी चीजों को सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया। सांस लेने के लिए हवा नहीं बना सकता, पानी नहीं बना सकता, उसके लिए जैव विविधता पे उसे निर्भर रहना पड़ेगा। वो आपके जीवन के लिए आवश्यक है, उसे बचाएं तभी आप बचेंगे।
4: जैव विविधता के संरक्षण हेतु जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन पीस और पेटा जैसे संगठन कार्य कर रहे हैं, वहीं वैज्ञानिकों ने भी इस ओर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया है। वनस्पति विज्ञानी प्रोफेसर ए.के. कंड्या,
5: जैव विविधता के बारे में जो पहला सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 की मई में। रियो डी जेनेरियो के बाद क्योटो में एक सम्मेलन हुआ जिसमें बहुत सारे समझौते हुए अनेक देशों के बीच में कि किस तरीके से प्रदूषण को घटाया जाए। प्रदूषण एक ऐसा कारण है जो बहुत सारी जैव विविधता को समाप्त कर देता है। IUCN नाम की एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका मुख्य ऑफिस स्विट्जरलैंड के ग्लेंड नाम की जगह में है, और इन्होंने सारी दुनिया के विभिन्न संस्थानों से जो शोध लोगों ने किए हैं उनको एकत्रित करके एक किताब बनाई है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। और इस किताब में पूरी सूची है कि दुनिया के किस हिस्से में कौन कौन सी पादप प्रजातियां पाई जाती थीं जो अब लुप्त हो गई, कौन कौन सी जंतु प्रजातियां पाई जाती थीं जो अब लुप्त हो गई, किन के लिए जीवन अब कठिन हो गया है और लुप्त प्राय है, उनको बचाना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है।
2: भारत में भी इस दिशा में काफी प्रयास हो रहे हैं। कड़े कानूनों के अलावा वन और पर्यावरण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अधीन बहुत सी संस्थाएं जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में कार्य कर रही हैं, जिनमें प्रमुख हैं वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनके अलावा देश के सभी राज्यों के वन और पर्यावरण विभाग, असंख्य गैर सरकारी संस्थाएं और पर्यावरण के रक्षक और विशेषज्ञ भी अपने अपने स्तर पर जैव विविधता को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क और अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में ऐसे ही सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के वैज्ञानिक डॉक्टर फैयाज खुद सर,
3: ये नमकीन जमीन थी, यहाँ पे कुछ भी उगाना असंभव था, लेकिन हमने घास और दलहन प्रजाति के जंगली पौधों के जरिए इस जमीन को इस लायक बनाया और आज जो ये जंगल देख रहे हैं ये 12 साल पुराना जंगल है। यहाँ पे मैमस छोटे देखेंगे, सिवेट है, यहाँ पे बार्किंग डियर अभी है, और जिन पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित किया, वहाँ पे घरौंदे बनने लगे, जीव जुटने लगे और नीलगाय, खरगोश, जंगली सुअर आदि आने लगे और उनके पीछे आया बिल्ली प्रजातियों का सबसे बड़ा एक जानवर जिसको तेंदुआ कहते हैं, वो यहाँ आया और 25 दिन तक वो यहाँ पे रहा और इस बात को वो दर्शाया, ये जो पार्क है एक क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र बन चुका है जो किसी भी स्तर के मैमल को सपोर्ट कर सकता है जो कभी दिल्ली में हुआ करते थे।
2: जैव विविधता के संरक्षण के लिए करीब 103 राष्ट्रीय उद्यान और 537 अभयारण्य भी बनाए गए हैं। हमें बताया मध्य प्रदेश स्थित लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर में फैले नौरादेही अभयारण्य में कार्यरत बीएल स्वामी ने।
6: काला हिरण इस अभयारण्य की विशेष प्रजाति रही है, जैसे हमारे यहाँ भेड़िया है, भेड़िया की संख्या बढ़ी और आज भेड़िया अच्छी तादाद में सेंचुरी में प्राप्त हो रहा है। आज की स्थिति में क्रोकोडाइल मगर पहले कम मात्रा में थे लेकिन आज बढ़ गए। इसके साथ में यहाँ पर और भी जानवर हैं जैसे नीलगाय, इसके बाद चिंक, चौसिंगा और हाइना, सेही, अन्य जानवर यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन इस सेंचुरी में एक ही बात है, अधिग्राम होने के कारण मानवीय दबाव बढ़ रहा है जिससे वन्य प्राणी की स्वतंत्रता में बाधा पैदा हो रही है।
4: जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अनेक कानून और नियम बनाए गए हैं। भारतीय वन सेवा के अधिकारी शांत कुमार शर्मा।
7: भारत सरकार ने एक नया अधिनियम वर्ष 2002 में बनाया जिसको जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कहा गया है, के तहत प्रत्येक राज्य स्तर पर एक जैव विविधता बोर्ड का गठन किया जाता है, जिला स्तर पर एक जिला स्तरीय जैव विविधता संरक्षण कमेटी है, तकनीकी समर्थन समूह है, उपखंड स्तर पर उपखंड स्तरीय जैव विविधता कमेटियां हैं, ग्रामीण स्तर पर ग्राम स्तरीय जैव विविधता कमेटियों का गठन किया गया है। ये सब इसमें जागरूकता लाने का काम करते हैं और ग्राम स्तर पर एक जैव विविधता पंजी निर्माण का एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है जिससे कि एक सर्टन इंटरवल के बाद ये पता किया जा सके कि जो प्रजातियां, जो पशु पक्षी, जो पेड़ पौधे उस क्षेत्र में, उस गांव में मिलते थे, उनकी अब वर्तमान में क्या स्थिति है।
2: जैव विविधता संरक्षण के लिए खासतौर पर बच्चों को जागरूक किए जाने की जरूरत है। इको क्लबों की भूमिका भी अहम होती है। पर्यावरण विभाग दिल्ली सरकार के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर बी सी सावत।
8: इसे स्कूलों के माध्यम से हमारे इको क्लब स्कीम है दिल्ली सरकार का, इनका एक रजिस्टर बनाने के लिए हमने बुलाया जो इसको बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बोलते हैं। जैसे ऐप है, बटरफ्लाई ऐप है, बटरफ्लाई कितना वैरायटीज का है तो उसमें ऐप के जरिए में दिखाते हैं ये बटरफ्लाई कहाँ मिलता है, ये बटरफ्लाई क्या मिलते हैं। जैसे पेड़ पौधे के बारे में भी डिजिटलाइज हो रहा है, जैसे फिल्म्स है, डॉक्यूमेंट्री है, ये दिखाया जाता है।
4: भारत सरकार की विज्ञान प्रसार जैसी संस्थाएं भी जैव विविधता को लेकर लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देने में अपना योगदान दे रही हैं। विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक बीके त्यागी।
9: हम पूरे देश में स्कूलों के बच्चों के साथ, जो समाज के विभिन्न लोग हैं उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं और काफी सारी किताबें और एक एक्टिविटी किट बनाई है और समय समय पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसमें एक जो सबसे बड़ा कहें कि जो बहुत ही पॉपुलर लेवल पे था वो एक सीडी हमने निकाली थी, मैं हूँ इंडिया। सारे मुद्दे हमने इसमें उठाए और एक रिक्वेस्ट करी कि आप आ जाओ और जिसकी वजह से आप हमसे रूठ के गए हो, हम उस माहौल को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करेंगे।

साथियों, बायोडायवर्सिटी आगामी पीढ़ियों की धरोहर है। हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास से ये सुनिश्चित करें कि नेचुरल रिसोर्सेज हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए उसी रूप में उन्हें सौंपे जिस रूप में हमारे पूर्वजों ने इसे हमें सौंपा था।

मां वसुंधरा की पुकार को यदि आज भी मनुष्य ने अनसुना किया तो आने वाली पीढ़ी शायद हमें कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी।

पुकार रही है वसुंधरा। अभी आप सुन रहे थे ये रूपक, प्रस्तुति थी डॉक्टर संजय सिंह वर्मा की। अभी आप सुन रहे थे इसका पुनः प्रसारण। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने को है, थोड़ी ही देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। और चित्रलोक में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में समीर का लिखा और नदीम श्रवण के बनाई धुन पर ये गीत। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

श्रोताओं, आज है अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग डे। हर साल ये 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2017 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी और पहला IUU दिवस 5 जून 2018 को मनाया गया था। इस महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी और पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट PSMA। यह दिवस PSMA की भी वर्षगांठ का प्रतीक है, जो अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए दुनिया की पहली बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है ना, अवैध मछली पकड़ने और इससे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान से दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है, बढ़ाना है।

अमिताभ भट्टाचार्य की बोल प्रीतम की बनाई धुन पर अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाजों में ए दिल है मुश्किल फिल्म का ये गीत। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं समीर का लिखा गीत प्रीति पिंकी और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में मुझे कुछ कहना है फिल्म से।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य

श्रोताओं, अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज 4 बजे शाम को पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी। कहानी का शीर्षक है नजरिया। वाचन स्वर नेहा शर्मा का है, संपादन सहायक काजल भतरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इश्क विश्क फिल्म का ये गीत अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा है, अनु मलिक ने संगीत से सजाया है।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आप मुझे अच्छे लगने लगे। इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और अभिजीत के युगल स्वरों में, इब्राहिम अश्क की शब्द रचना है, राजेश रोशन की बनाई तर्ज।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे आप मुझे अच्छे लगने लगे अलका याग्निक और अभिजीत की युगल आवाजों में। और अब आपको कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत सुनवाने जा रहे हैं आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल सोना मोहपात्रा की आवाजें कुमार का लिखा गीत विशाल शेखर का संगीत। इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर और रात को पुनः 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार केंद्रित रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर। सुनना नहीं भूलिएगा।

अब इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा मुझे यानी पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: My name is Lakhan, my name is Lakhan, sajnon ka sajan, mera naam hai Lakhan.
1: तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना।

इसके बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थी आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार, मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज

आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका, जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है, बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए, तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था, लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म मिर्जा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। मिर्जा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

तेजा जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

दोस्तों ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और

0: प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खंडवा जिले की चिट्ठी। आलेख हीरा लाल लोंगरे, वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने निवाड़ंचल को बड़ी सौगात देते हुए 4,415 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत एनएच 347 पी के हिवारखेड़ी रोशनी आशापुर रूधी मार्ग को टू लेन और देशगांव जुलवानिया मार्ग को फोर लेन में अपग्रेड किया जाएगा। परियोजना से खंडवा बैतूल खरगोन बड़वानी जिलों में यातायात सुगम होगा, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति भी मिलेगी। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने हाल ही में वनग्राम आवलिया में वन विभाग और एलएनटी कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व कालीभीत परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी वीरेंद्र सिंह अचालिया ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि वन क्षेत्रों में रहने वाले अधिक से अधिक युवा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। युवा कार्यक्रम के तहत वन क्षेत्रों के 18 से 35 साल के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉ. शाह ने कहा कि सरकार युवाओं को और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खंडवा जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नगर निगम खंडवा ने 20,490 कंटूर ट्रेंच बनाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि जिले ने ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण कर देश में 5वां स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानून को आज खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे। वे खालवा और खंडवा में मानवाधिकार से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे तथा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। खंडवा में आयोजित जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति दिशा की बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों को उर्वरक वितरण के ई टोकन सिस्टम की जानकारी देने और पेयजल योजनाओं के बेहतर संचालन पर विशेष जोर दिया है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने गत दिनों खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी में 1,36,00,000 रुपए लागत के इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। इस परियोजना से 160 आदिवासी महिलाओं को मछली पालन, पशुपालन, बतख पालन और फल सब्जी उत्पादन के माध्यम से रोजगार मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों से खरीफ फसलों की बुआई के लिए प्रमाणित और गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग करने की अपील की है। विभाग द्वारा खाद और बीज की गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जा रही है और नमूनों की जांच भी कराई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जिले भर में मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों और नगरीय निकायों में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। खंडवा में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस कंट्रोल रूम में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अगम जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारेगण की उपस्थिति में 60 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रथम बैच को भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, आधुनिक तकनीकों के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया जाएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में किसानों को जैविक प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य सुधार और कृषि आधारित उद्यमिता की जानकारी दी गई है। वहीं श्रम विभाग ने असंगठित श्रमिकों से 13 जून तक अनिवार्य रूप से ई केवाईसी पूरी कराने की अपील की है। उधर पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर माणिक के स्मारक वाचनालय में संगोष्ठी और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। खंडवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, स्वच्छता, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नगर निगम द्वारा झीलोद्यान और नमो वन क्षेत्र में विशेष वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा तैयार सीड बॉल के उपयोग की भी तैयारी की जा रही है। मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए मध्य प्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त तक नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मत्स्या खेत पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: अभी आपने सुनी खंडवा जिले की चिट्ठी, आलेख हीरालाल लोंगरे का, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 10:05 हुए हैं। पेश कार्यक्रम गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस कव्वाली के साथ। आवाज़ें जफर हुसैन खान, वजाहत हुसैन खान और साथियों की, बोल हैं अमीर खुसरो के।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। आपको बता दें, आज सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे परिचर्चा, विषय होगा

विश्व पर्यावरण दिवस प्रायोजक होंगे GIZ नई दिल्ली। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। गुलदस्ता कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं बशीर बद्र का लिखा कलाम, स्वर और संगीत राजकुमार रिज़वी का है।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं सईद राही का लिखा कलाम। स्वर हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के, संगीत है जगजीत सिंह का।

0: कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं परिचर्चा। विषय है विश्व पर्यावरण दिवस।
1: नमस्कार श्रोताओं, ये कार्यक्रम वन हेल्थ एवं एग्रो इकोलॉजी प्रोजेक्ट द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इस परियोजना में मध्य प्रदेश शासन का पशुपालन एवं डेयरी विभाग नोडल विभाग के रूप में सहयोग कर रहा है। ये प्रोजेक्ट GIZ के तकनीकी सहयोग से सागर जिले में संचालित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य मानव पशु एवं पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच संतुलन स्थापित करना है तथा वन हेल्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। यदि हम दवाओं का विवेकपूर्ण एवं संतुलित उपयोग करें, भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा पर ध्यान दें एवं रसायनों और उर्वरकों का संतुलित उपयोग करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करें तो हम कई स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं। इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश के सागर जिले में किसानों, पशुपालकों और समुदाय के अन्य सदस्यों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इन कार्यक्रमों में भाग लें और वन हेल्थ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।
2: और हाँ साथियों, इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत महीने के आखिरी शुक्रवार को शाम 7:20 पर आकाशवाणी सागर द्वारा रेडियो कार्यक्रम वन हेल्थ रियल वेल्थ भी प्रसारित किया जाता है। तो अपने साथियों के साथ, अपने परिजनों के साथ इस कार्यक्रम को भी जरूर सुना कीजिए। धन्यवाद।
3: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस परिचर्चा में। हम सभी जानते हैं कि 5 जून को प्रतिवर्ष हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और पर्यावरण में हम जो भी गतिविधियां करते हैं, मानव द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती हैं, उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव जरूर पड़ता है। एक तरह से पर्यावरण संरक्षण एक वैश्विक जिम्मेदारी है और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का भी उद्घोष ये दिवस हमें कराता है। तो आज इस दिवस के ऊपर हम एक विशेष परिचर्चा लेकर के आपके समक्ष आए हैं और 3 बेहद खास मेहमान हमारे इस परिचर्चा में शामिल हैं। आपका हम एक एक करके परिचय देते हैं। हमारे बीच हैं डॉक्टर नीलेश शाह, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं पशुपालन एवं डेयरी विभाग सागर से। हमारे बीच है रजनीश कुमार सिंह साहब, आप DFO हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सागर से। और हमारे बीच हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी साहब, आप प्रमुख वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र देवरी सागर से। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू, धन्यवाद।
3: डॉक्टर नीलेश शाह, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे हम करना चाहेंगे और जलवायु परिवर्तन की बहुत चर्चा होती है जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं। वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, तो हम जलवायु परिवर्तन से क्या समझें और इसके साथ ही जब हम विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो इसकी क्या महत्ता है आज के दिन?
4: जलवायु परिवर्तन से आशय है पृथ्वी के तापमान, वर्षा, वायु एवं मौसम के पैटर्न में स्थायी रूप से जो परिवर्तन आ रहा है ये जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जलवायु परिवर्तन में हो क्या रहा है कि सामान्य से अधिक बारिश, सामान्य से कम बारिश, अत्यधिक सूखा पड़ना और भी दूसरी प्राकृतिक आपदाएं, इनके प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके कारण पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि पृथ्वी का टेम्परेचर विगत कुछ वर्षों में लगातार रूप से बढ़ रहा है, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी मात्रा का बढ़ना है।
3: जी, ग्रीन हाउस गैसेस की बात आपने की, तो मुख्य रूप से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसका उत्सर्जन वायुमंडल में होता है और क्यों इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है?
4: सबसे पहले तो मैं ग्रीन हाउस गैसेस की विशेषता बताना चाहूँगा कि इन गैसेस में हीट को एब्जॉर्ब करने की या ऊष्मा को अवशोषित करने की कैपेसिटी होती है जिससे कि पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन अभी हो क्या रहा है विगत कुछ वर्षों में कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ रही है। तो जो मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस हैं, सबसे प्रमुख है

कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में जिसका कंट्रीब्यूशन लगभग 74% है। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है वो मीथेन है, जिसका कंसंट्रेशन वातावरण

0: तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ने का है कि वनों का कम होना। हम सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। जब पेड़ पौधों की संख्या कम होगी, वन का क्षेत्रफल कम होगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ रही है। सेकेंडली, जहाँ तक मीथेन गैस का सवाल है, मीथेन गैस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कारण बढ़ती है। खासकर धान की खेती में मीथेन गैस का अधिक उत्सर्जन होता है। पशुपालन में जो रूमिनेंट्स हैं या जुगाली करने वाले पशु हैं, उनके जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें मीथेन गैस का अधिक उपयोग होता है। तीसरा, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर के अधिक उपयोग के कारण नाइट्रस ऑक्साइड का रिलीज अधिक होता है, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और दूसरी अन्य ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री से या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से और विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान होते हैं।
1: बहुत विस्तार से आपने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया, और एक महत्वपूर्ण बात आपने ये बताई कि कार्बन उत्सर्जन जो बढ़ रहा है उसको सोखने का काम हमारे वन किया करते थे, लेकिन वनों की संख्या कम हो रही है। और हमारे बीच रजनीश कुमार सिंह साहब हैं, DFO हैं आप वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से, तो आपको इस चर्चा से जोड़ना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि जंगल वन प्राणी का संरक्षण यदि नहीं किया गया तो पर्यावरण और मानव जीवन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
2: तो जैसा डॉक्टर शाह ने बहुत विस्तार से बताया ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में और कैसे जंगलों की ही भूमिका है कि वो उनको अवशोषित करते हैं और हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं और उससे हमारा जो क्लाइमेट चेंज की प्रोसेस को वो रोक सकते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि तमाम तरह के जैविक दबाव हैं। हमारे देश की जनसंख्या लीप एंड बाउंस में बढ़ रही है और आज भी ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या ऐसी है जो जंगलों पर निर्भर है, और उनकी जंगलों पर निर्भरता के कारण तमाम प्रयासों के बाद भी जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लेकिन यदि हमने वन्य प्राणियों का संरक्षण कर लिया तो होता यह है कि वन्य प्राणियों का संरक्षण करने के लिए आपको अनिवार्य है कि आप उनके घर जंगल को संरक्षित करें। तो जैसे मैं कहूं कि हमें टाइगर का संरक्षण करना है, तो टाइगर का संरक्षण करना तभी संभव है जब उसका खाना हो। हमें चीतल चाहिए, सांभर चाहिए और बहुत सारे हर्बीवोर चाहिए, तो हम हर्बीवोर संरक्षित करेंगे, और उन हर्बीवोर को संरक्षित करने के लिए हमें घास के मैदान चाहिए, तो हम घास के मैदान और वो पेड़ पौधों को संरक्षित करेंगे जिनकी पत्तियों को या फलों को ये शाकाहारी प्राणी खाते हैं। तो इस तरह से हम कहते तो हैं कि हम वन्य प्राणियों को संरक्षित कर रहे हैं, लेकिन हम अंततोगत्वा जंगलों को संरक्षित करते हैं वन्य प्राणियों के नाम पे, और हम खुद के लिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, एक बेहतर एनवायरनमेंट बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से एनवायरनमेंट को यदि हमें अच्छा रखना है तो वन्य प्राणियों को भी सुरक्षित और स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है।
1: जी, अंतर संबंध है, किसी को अलग करके नहीं देख सकते हैं, सारे जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी में सबकी बेहतरी है, भलाई है। एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कृषि। डॉक्टर आशीष त्रिपाठी साहब, आपको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृषिगत जो क्रियाएं होती हैं किस प्रकार से उनको एक बेहतर प्रैक्टिसेस के माध्यम से किया जाए ताकि जो पर्यावरण एक चुनौती के रूप में हमारे समक्ष आ रहा है उसका दबाव कम हो जाए।
3: कृषिगत क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण है फसल चक्र का अपनाना। पुराने समय में क्या होता था, हमारे पूर्वज कई तरह की फसलें लगाते थे। समय के जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो मोनोक्रॉपिंग की ओर चले गए। जैसे अभी चर्चा में बात आई कि जो धान का इलाका है, धान अगर ज़्यादा मात्रा में हम लगाएंगे तो एक विशेष तरह की ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है जो हमारे टेम्परेचर को या जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसके लिए हानिकारक हो सकता है। इसी प्रकार से पुराने टाइम में हम दलहनी फसलों को ज़्यादा मात्रा में लगाते थे। दलहनी फसलें कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं और वो सॉइल में फिक्स भी करती हैं। धीरे धीरे हम उस सिस्टम से विचलित हो रहे हैं और मोनोक्रॉपिंग की ओर जा रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ एक ही क्रॉप लगती है, दूसरी क्रॉप लेते नहीं है। तो अगर हम फसल विविधीकरण की ओर जाएंगे, फसल चक्र का ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम जो हमारी कृषिगत क्रियाएं हैं उनके माध्यम से हम पर्यावरण हितैषी काम करेंगे। दूसरा, जिस प्रकार से उत्पादन बढ़ाने का एक जो टारगेट हमने किया है देश में पूरा, तो उत्पादन बढ़ाने के दौरान बहुत सारे पेस्टिसाइड, बहुत सारे केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स हमने ऐसे उपयोग किए जो हमारी मिट्टी में जाके जल को प्रदूषित कर रहे हैं, फिर वो एनवायरमेंट के साथ कहीं ना कहीं हमारी जो पर्यावरण गतिविधियां हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं।

0: तो अगर हम कृषिगत क्रियाओं की बात करें तो हमको प्रॉपर एक फसल चक्र अपनाना पड़ेगा। बार बार हमको मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं करना, बार बार हम अगर जुताई करेंगे, बार बार मिट्टी को डिस्टर्ब करेंगे तो उससे कार्बन का उत्सर्जन भी, कार्बन भी हमारा जो मिट्टी में कार्बन परसेंटेज है वो कम होता है। जो फर्टिलाइजर हमने उपयोग किए हैं ज्यादा मात्रा में अगर हम उनका उपयोग करते हैं, गलत तरीके से उपयोग करते हैं, जैसे हम यूरिया का उपयोग करते हैं, तो यूरिया से सीधा सीधा अगर हम यूरिया धूप में डाल देते हैं, गर्मी में डाल देते हैं, तो वो उड़ के हमारा एटमोस्फियर में पहुंचता है। तो कृषिगत क्रियाओं को अगर संतुलित और समन्वित तरीके से किया जाए, क्षेत्र विशेष में हम फसल चक्र का उपयोग करें, तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण हितैषी काम कर
1: कर
0: सकते हैं।
1: सकते हैं। रसायन मुक्त खेती की तरफ बढ़ने की बात होती है और तमाम इसके जो वैकल्पिक साधन हो सकते हैं उसके बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा होती है। प्राकृतिक खेती की बात कर
0: जी
1: लीजिए या फिर आप ऑर्गेनिक कृषि की बात कर लीजिए, तो क्या दूसरे विकल्प हैं? कैसे हम रसायनों के प्रयोग को कम कर सकते हैं? वैकल्पिक व्यवस्था क्या हमारे समक्ष है?
0: हमारे पास बहुत बायोमास है। जहां धान का इलाका है वहां धान का पैरा बहुत है, जहाँ पे गेहूं हो रहा है वहाँ गेहूं की नरवाई बहुत हो रही है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसमें शॉर्टकट मेथड जो अपनाते हैं कि इसमें आग लगा दी हमने। आग लगाने से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जो गैसेस निकल रही हैं वो पर्यावरण को भी हानिकारक हैं और जो कीट पतंगे हैं उनके लिए भी हानिकारक हैं। तो सबसे पहले तो हमको जो भी फसलें हम ले रहे हैं उन फसलों में समन्वित मात्रा में रसायन और जैविक इसको अपनाना है, और फिर धीरे धीरे हमको कुछ इलाका जैविक कृषि या प्राकृतिक कृषि में हमको कन्वर्ट करना है, जिसमें हम किसान के खेत में, किसान के फील्ड में जो भी गोबर की खाद है उससे वर्मी कंपोस्ट बना के, जो भी बायोमास है उसको रिसाइकिल करके, यानी जो नरवाई है उसको हम खाद बना के, धान का पैरा है उसको नरवाई बना के, इसको हम जमीन में उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो केमिकल्स का प्रेशर है वो कम होगा। दूसरा, केमिकल्स में भी बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हैं, तो हम उनका उपयोग करें। रसायनों के साथ साथ हम जैविक आदान, बायो फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर, सोलुबल फर्टिलाइजर, इनका उपयोग करें तो हमारा जो केमिकल्स का जो प्रेशर है जमीन में वो कम होगा, और धीरे धीरे फिर हम उस मिट्टी को जैविक की ओर कन्वर्ट करेंगे। एक साथ हम पूरा जैविक में अगर करने का सोचते हैं तो हमको ना तो उत्पादन प्रॉपर मिलेगा, हमारी लागत भी बढ़ सकती है, और हमको उत्पादन अगर प्रॉपर नहीं मिला तो किसान घाटे में जाएगा। तो एक पूरा सिस्टम बना के, पूरी एक प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम किसान भाइयों से आह्वान करते हैं कि जितनी उनकी जमीन है उसका 1/10 हिस्से में वो प्राकृतिक खेती करें, तो बहुत अच्छी बात है। अगर 5 एकड़ का किसान है तो आधा एकड़ में खेती करेगा, आधा एकड़ में करने में उसको बहुत कोई लागत नहीं बढ़ेगी, बहुत कोई श्रम नहीं होगा, और धीरे धीरे जब उसको फायदा होने लगे किसान को, तो फिर वो ज्यादा जमीन को भी उसमें कन्वर्ट कर सकता है।
1: धीरे धीरे प्राकृतिक और जैविक क्रियाओं की तरफ बढ़ना पड़ेगा और कुछ रकबों को सुरक्षित करके उसके परिणाम देख लिए, उसके बेहतर परिणाम जैसे ही आपके सामने आएंगे आप रकबे को बढ़ा सकते हैं, यही एक बेहतर तरीका है। डॉक्टर नीलेश शाह साहब, हम जलवायु परिवर्तन की बार बार चर्चा कर रहे हैं और वैश्विक तापन में वृद्धि, ये सीधा सीधा जो हमें देखने में अभी आ रहा है, ये जो प्रतिकूल प्रभाव है, बाकी इसके हम अगर प्रतिकूल प्रभावों की बात करें तो क्या अभी हम पर्यावरण में देख रहे हैं और आने वाली चुनौतियां, दीर्घकालिक चुनौतियां क्या हैं?
2: जलवायु परिवर्तन का सबसे जो मुख्य दुष्प्रभाव है कि मौसम की अनिश्चितता, कि हम खुद कहीं देख पा रहे हैं कि जो पहले एक साइकिल रहती थी ऋतुओं की, वो बिल्कुल बिगड़ी हुई है। ऐसा टेम्परेचर पहले कहीं नहीं देखा गया। तो ये जो तापमान में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है, पहली बात। दूसरा, मौसम की प्रतिकूलता के कारण एग्रीकल्चर प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी अतिवृष्टि हो जा रही है। पहले जितनी बारिश साल भर में होती थी, तो कई ऐसे स्थान में देखने आया है कि साल भर की बारिश 1 या 2 दिन या 6 दिन में हो गई। तो इससे किसी भी तरीके का फायदा नहीं है, उल्टा एग्रीकल्चर को नुकसान है। तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बर्फ पिघल रही है उसके कारण समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। तो बर्फ पिघलने के कारण समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, तो समुद्र के आसपास की सराउंडिंग्स हैं वो क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। अगर उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश को देखें तो अभी पिछले वर्षों में कितनी ज्यादा इससे संबंधित दुर्घटनाएं हुई हैं। तो ये सब जलवायु परिवर्तन का ही प्रतिकूल प्रभाव है। तीसरी बात, मानव स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का। विभिन्न प्रकार की नई नई बीमारियां आ रही हैं, इन्फेक्शियस डिजीज भी आ रही हैं, या जिसको हम इमर्जिंग डिजीजेस बोलते हैं। विभिन्न प्रकार की पशुजन्य बीमारियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है जलवायु परिवर्तन के कारण। वेक्टर बॉर्न डिजीज के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सब प्रभावित हो रहा है। हमारी कृषि की उत्पादकता कम हो रही है, पशुओं की

0: उत्पादकता कम हो रही है, तो इन सब दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हमें जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसके लिए बहुत सकारात्मक प्रयास करने पड़ेंगे।
1: जी, बात सिर्फ अब पर्यावरण संरक्षण की नहीं रह गई है बल्कि मानव स्वास्थ्य पे भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। रजनीश कुमार सिंह साहब, आप DFO हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस और प्रोजेक्ट टाइगर लगभग एक समय ये दोनों चीजें शुरू की गई 1972-73 के आसपास। हम बाघों के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, भारत शासन का भी इस पे जोर है, आम जनता की समझ के लिए आप कैसे उन्हें बताएंगे कि बाघों का संरक्षण समूचे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कैसे उपयोगी है?
0: जी हाँ, मैं आमतौर पे एक बचपन में सुनी हुई कहानी बताता हूँ कि एक बूढ़ी महिला थी, अंधी भी थी, आंखें नहीं थी उसकी, और उसने भगवान से जब वरदान मांगने का समय आया तो उसने कहा कि भगवान मुझे अपने पोते को चांदी की कटोरी में खाना खिलाना है और उसको देखना है कि वो खाना खा के कितना खुश होता है। तो वो चतुर महिला थी, भगवान ने उसको केवल एक वरदान मांगा था, कहा था एक वरदान लो, पर उसने एक ही वरदान में तीन तीन वरदान ले लिए। तो उसी तरह से जब हम टाइगर कंजर्वेशन की बात कहते हैं ना, तो कई बार लोगों को लगता है कि हम केवल टाइगर की बात क्यों कह रहे हैं, हम वास्तव में टाइगर का केवल नाम लेते हैं पर हम संरक्षण की बात पूरे पर्यावरण की करते हैं। क्योंकि यदि टाइगर है तो जैसा मैंने बताया था, हर्बीवोर्स चाहिए, हर्बीवोर्स के लिए ग्रास चाहिए, और यदि घास के मैदान और जंगल है तो हमारी नदियों में पानी रिस रिस के आएगा, बाढ़ नहीं होगा। रिस रिस के आने वाला जो पानी है साल भर नदी में रहेगा तो साल भर हम खेती कर पाएंगे, हमारे उद्योग धंधे चल पाएंगे। तो इसी को वैज्ञानिक एक टर्म यूज करते हैं कि टाइगर इज अम्ब्रेला स्पीशीज, टाइगर एक छतरी है और उस छतरी के नीचे ही ये पूरी मानवता फल फूल रही है, और हमारे जो वुड इकोसिस्टम है उसका वो एपेक्स प्रीडेटर है। तो यदि हमने टाइगर को बचा लिया तो हम अपनी पूरी मानवता को बचा पाएंगे, जंगलों को बचा पाएंगे। क्योंकि हम यहाँ सागर में बैठे हैं, मध्य प्रदेश का केंद्र है लगभग, तो मैं ऑडियंस को ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि आप पश्चिम मध्य प्रदेश के हिस्सों को देखें जहाँ धीरे धीरे करके जंगलों का लगभग हमने पूरा सफाया कर दिया है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर जैसे जिले, जहाँ पे यदि आपको पानी लाना हो तो 3-5 किलोमीटर बहुत सामान्य दूरी मानी जाती है। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश, शहडोल, डिंडोरी, मंडला ऐसे जिलों में आमतौर पे आपके घर से 10-20 मीटर दूर पे ही आपको पानी मिल जाता है, और आपको पानी जैसी एक बेसिक कमोडिटी लाने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है। तो यदि आप टाइगर और उसके जंगलों को बचा पाएंगे तो इस तरह से आप पूरी मानवता और पर्यावरण को बचा पाएंगे। एक और उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहूंगा
1: जी।
0: जैसे भारत में माँ गंगा का स्थान है, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक और रिलीजियस और हर तरह से माँ नर्मदा का योगदान है। लेकिन जिन लोगों ने माँ नर्मदा का उद्गम स्थल देखा है वो तो एक छोटे से नल की टोटी से निकलता हुआ पानी जैसा है, और उसके बाद में बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और रातापानी और हमारा वीरांगना दुर्गावती, इन जंगलों से जो रिस रिस के पानी जाता है वही माँ नर्मदा को उत्ता विहंगम बनाता है कि वो हमारे पूरे मध्य प्रदेश के खेतों को सींचती हैं और पूरा जीवन देती हैं। तो हम जब टाइगर और वन्य प्राणियों को बचाएंगे तो उसका सीधा सीधा बाई प्रोडक्ट है कि हम अपने खेतों में बहुत अच्छी फसल ले पाएंगे।
1: जी, टाइगर एक प्रतिनिधि के रूप में है
0: जी,
1: एक प्रतीक के रूप में है, यदि आपने उसको बचा लिया तो एक तरह से पर्यावरण के संरक्षण में काफी योगदान दे रहे हैं, काफी वाइल्ड लाइफ को आप बचा ले जा रहे हैं। आपने बताया कि जंगलों की संख्या कम हो रही है और पानी से सीधा संबंध उसका बताया आपने। एक और चीज जो जहन में आती है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, तेंदुआ कई बार सुनने में आता है कि वो जहां पे मनुष्य का रहवास है वहां पे चले आ रहे हैं।
0: जी, जी।
1: तो इन वाइल्ड लाइफ को अपने प्राकृतिक पर्यावास में रहना बहुत जरूरी है
0: जी,
1: ये बनाए रखना कितना जरूरी है और अभाव कहां पे हो रहा है?
0: देखिए, ये बनाए रखना तो बहुत जरूरी है, जैसे आपको मुझे हमें अपना घर चाहिए, वन्य प्राणियों को भी घर तो चाहिए। लेकिन वन्य प्राणियों का घर हमारे घर जैसे नहीं होता है, खुला जंगल उनका घर होता है। पर मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में बढ़ते पॉपुलेशन के साथ हुआ क्या है, पहले यदि आज आप 30 या 40 साल पुराना हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र देखें तो गांव होता था और गांव के बाहर एक चरनोई की जगह होती थी, फैलो लैंड होती थी, और उसके बाद घना जंगल होता था। तो आमतौर पे जो ये टाइगर, लेपर्ड जैसे वन्य प्राणी घने जंगलों में रहते थे, कभी कभी वो फैलो लैंड में आ जाते थे जहां हम निस्तारी अपनी करते थे, मवेशी चराते थे, डिफिकेट करने जाते थे, छोटी मोटी लकड़ी लेके आते थे, चराई करते थे, लेकिन वो गांव तक नहीं आते थे। लेकिन चूंकि हमें खेतों की जरूरत थी, हमारे पास बड़े बड़े एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स आ गए,

0: तो हमने अब अपने खेत एकदम जंगल की दहलीज तक ले गए हैं। टाइगर हमारे पड़ोस में नहीं आया, हम टाइगर के पड़ोस में रहने चले गए। और फिर पड़ोसी के मिजाज से तो आपको निपटना ही पड़ेगा। एक बात मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण है। टाइगर का एक वजन लगभग 200 से 250 किलो होता है, लेकिन टाइगर का जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है, जो उसकी बुद्धि होती है, दिमाग होता है ना, वो लगभग 250-260 या 300 ml तक ही होता है। जो एक हमारा इंसान का बच्चा पैदा होता है वो 350 होता है उसका, है ना, और एक वयस्क आदमी का 1400 होता है। तो टाइगर में दिमाग नहीं है, सिर्फ शरीर है उसमें, ताकत है उसमें, दिमाग इंसान के पास है। तो जैसे आज हमारे देखिए मध्य प्रदेश में हाईवे बहुत सारे बन गए, पर यदि आप बिना सीट बेल्ट लगाए जाएंगे, बिना हेलमेट पहने जाएंगे तो दुर्घटना होगी। ऐसे ही यदि आप जंगलों में अपनी सुरक्षा के साथ जाएंगे तो कोई वन्य प्राणी किसी आदमी पे अटैक नहीं करता है। या ये भी बताना चाहूंगा कि हम जो जंगलों की सुरक्षा की बात कहते हैं, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में मेरे पास लगभग 500 लोगों की टीम है। हम हर दिन 5 से 7 किलोमीटर पैदल उन जंगलों में गश्त करते हैं जहां 30 टाइगर हैं, जहां करीब 40-50 लेपर्ड हैं। यदि उनकी प्रवृत्ति इंसान पे हमला करने की होती तो सबसे पहला शिकार मेरे वन रक्षक होते, लेकिन वो सावधानी से जाते हैं, उनको मालूम है कि क्या सावधानियां बरतना है। साल दर साल 35 साल की नौकरी करके वो खुश होके देश के पर्यावरण में योगदान देके गर्व के साथ रिटायर होते हैं। चूंकि आपने कॉन्फ्लिक्ट की बात कही है, हमारे पूरे जो ऑडियंस सुन रही है मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के बाहर, जंगलों में यदि आप अपनी जरूरत के लिए जा रहे हैं ना, तो 2-3 सावधानियां केवल ले लें, अकेले ना जाएं, 2 या 3 लोग जाएं। अब तो मोबाइल में हर एक के पास में स्पीकर है, गाना लगा दें, गाना बजते रहेगा। मैं आपको दावा करता हूं कि कभी कोई एनिमल आपको अटैक नहीं करेगा। ये जितनी भी दुर्घटनाएं हुई है ना, ये अकस्मात वाली ही हुई है, औचक। तो कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ लोग महुआ या तेंदू के लिए रात को 3 बजे चले जाते हैं और वो बैठ के महुआ बीन रहे हैं, और टाइगर या लेपर्ड को लगता है कि ये कोई चौपाया है। आप देखिएगा कि जितनी भी ये दुर्घटनाएं हुई है, बस दुर्घटना थी, टाइगर को लगा मुझसे दुर्घटना हो गई, वो बॉडी को छोड़ा और चला गया। जैसे हम हाईवे पे निकलते हैं ना, थोड़ी सावधानी करते हैं, घर के बाहर जाते हैं ताला लगाते हैं, तो बस जंगल जाए तो साथियों के साथ जाए और थोड़ा सा आवाज करते हुए जाए,
1: यानी मानव के आहट से जानवर दूर स्वतः भाग जाते हैं
0: एकदम। वो हमसे ज्यादा डरता है, हम उससे जितना डरते हैं उससे कई गुना ज्यादा डरता है।
1: मनुष्य के पास दिमाग है और दिमाग को लगाना बहुत जरूरी है। अब हम समाधान पक्ष की तरफ बढ़ना चाहेंगे और डॉक्टर आशीष त्रिपाठी साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि अभी जो कृषि में प्रक्रियाएं चल रही हैं, निसंदेह जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका उत्सर्जन बढ़ा है, क्या समाधान देना चाहेंगे, हम क्या प्रक्रिया अपनाएं, क्या एग्रीकल्चरल जो हमारी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस है उसको अपनाएं ताकि हम इसके प्रभाव को कम कर पाएं और एक एनवायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर पाएं।
2: देखिए, सबसे पहले तो हमको जो हमारे पूर्वज करते थे, समन्वित कृषि प्रणाली में कृषि के साथ साथ पशुपालन, पेड़ पौधे लगाना, फल वृक्ष लगाना, तो ये हम सबको करना पड़ेगा कि खेती के साथ साथ हम पशुपालन करें। पशुपालन में जो हमारे पास कंपोस्ट निकलेगा वो हमारी खेती में काम आएगा। हम हमारे फार्म में, हमारे खेतों में फलदार वृक्ष लगाएं, कुछ जलाऊ लकड़ी के लिए अगर हमारी ज़रूरत है तो उसके लिए हम देसी पौधे लगाएं जो हमारे पर्यावरण हितैषी होंगे। फसल चक्र अपनाएं, एक ही तरह की फसल हम ना लगाएं, एग्रोकेमिकल्स का हम कम उपयोग करें, रसायनों का कम उपयोग करें, और जो भी हमारे पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे कीटनाशी फफूंदनाशी है, इनकी जो हमारी जरूरत है, वो हमारे फार्म पे उपलब्ध जो भी वनस्पतियां हैं उनसे हम जैविक कीटनाशी बनाएं और जैविक कीटनाशी बना के हम उनका उपयोग करें। क्योंकि जलवायु परिवर्तन में हम लगातार ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कीड़े, ऐसी बीमारियां जो हमारे यहाँ पहले नहीं थी या बहुत कम मात्रा में थी, वो अब हमारे यहाँ बढ़ती जा रही हैं। तो जब बीमारियां बढ़ेंगी, कीड़ों का प्रकोप बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से किसान भाई उसके लिए एग्रोकेमिकल्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। जैसे हम एक उदाहरण करें व्हाइट फ्लाई का, सफेद मक्खी एक ऐसा कीट है जो पहले बहुत कम मात्रा में प्रकोप करता था, लेकिन पिछले 10 सालों में इसका प्रकोप, चाहे हमारा सोयाबीन हो, चाहे हमारा उड़द हो, मूंग हो, सब्जियां हो, सभी में इसका प्रकोप बढ़ गया। हम ये देखते थे एक मिलीबग नामक एक कीट होता है जो सफेद रंग का होता है, वो केवल आम का मेन पेस्ट था। आज अगर हम देखें तो टमाटर में भी लग रहा और सब्जियों में लग रहा, साथ साथ गुड़हल में, हमारे जो ऑर्नामेंटल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा उसका प्रकोप हो रहा है। तो इस तरह से जब रेंज बढ़ती जा रही है तो हमको बार बार पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे। जब बार बार हम पेस्टिसाइड डालेंगे तो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करेगा, जमीन को प्रदूषित करेगा, हमारे पानी को प्रदूषित करेगा और अल्टीमेटली हमारे मानव स्वास्थ्य पे इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो हमको समन्वित कृषि प्रणाली, फसल चक्र प्रॉपर अपनाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये जो कृषि में इसका जो प्रभाव है वो

0: कम हो। जी डॉक्टर नीलेश शाह साहब, हम अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ती अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हरित अर्थव्यवस्था की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा और आपने जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे कारक बताएं, दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं बताएं। अब हम जानना चाहेंगे कि हम करें क्या, समाधान क्या है, कैसे हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकें।
1: सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक हो रहा है उसको कम कैसे करें, तो वन क्षेत्र का हमको विस्तार करना होगा। दूसरी बात, जो हम ईंधन का उपयोग कर रहे हैं अंधाधुंध तरीके से, ईंधन और इलेक्ट्रिसिटी का, उसके उपयोग को हमको थोड़ा सा कम करना होगा। तीसरा, हमारा जो फूड हैबिट्स हैं, खाने की जो हमारी पद्धति है, उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। प्रोसेस्ड फूड को कम से कम खाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी उतना ज़्यादा ईंधन या इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। हम सिंपल दाल रोटी सब्जी खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी समस्या कहाँ आती है कि हम पहले खाने को फ्रिज में रखेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, फिर फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो गर्म करेंगे, उसमें फिर ईंधन लगेगा, और बाहर का हम फूड मंगा रहे हैं, दूर दूर से फूड मंगा रहे हैं, तो इन सब बातों से हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बढ़ता है। तीसरी बात, मीथेन के प्रोडक्शन को अगर हम कम करना है तो मीथेन को कम करने के लिए इसका जो सबसे प्रमुख सोर्स है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मैंने बताया कि उनके डाइजेशन के माध्यम से और उनका जो गोबर आदि जो डिकम्पोज होता है उससे मीथेन निकलती है, तो लाइव स्टॉक के गोबर का प्रबंधन हम बायोगैस के माध्यम से कर सकते हैं, जैविक खाद में कर सकते हैं, ताकि वो मीथेन का उत्सर्जन हम कम से कम कर सकें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, अगर शाकाहार भोजन पर हम शिफ्ट होते हैं तो मानव जनित ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को 60% तक हम कम कर सकते हैं। तो कहने का आशय यह है कि हमें खाद्य आधारित अनुशासन अगर हम अपनाते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम कर सकते हैं, पर्यावरण पर हम सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, पानी आदि की बचत कर सकते हैं।
0: जी, बहुत सारे उपाय आपने बताए हैं और ऊर्जा के स्रोतों की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, नवकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं इसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा।
1: निश्चित रूप से ये भी बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसका अगर हम उपयोग अधिक से अधिक करते हैं तो हमें पारंपरिक ईंधन में कटौती कर सकते हैं। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात, प्लास्टिक का उपयोग जो अधिक हो रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, इससे बाहरी कचड़े की क्वांटिटी बढ़ती है और उस कचड़े के ढेर से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है।
0: खाद्य संबंधी अनुशासन को हमें अपनाना पड़ेगा और अपनी आदतों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। डेफो साहब, रजनीश कुमार सिंह साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी आदतें मानव अपनाए जिससे हम पेड़ पौधे वन्य जीव इसकी रक्षा कर पाए, संरक्षण कर पाए, और खासकर जो यूथ है, जेंजी है, उसको स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे अपील करें।
2: देखिए, जैसा अभी डॉक्टर शाह ने भी बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, अब नहीं तो कभी नहीं, हम उस दौर पे आ चुके हैं। मैं दो तीन बड़े सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा जो हम सब कर सकते हैं। जैसे पानी की बचत की बात हो रही है ना, हम केवल नहाने में यदि शावर यूज कर रहे हैं या हम अपने वॉश बेसिन का टैप बंद नहीं कर रहे हैं यूज करते समय, हम अपना वाटर का कंजम्पशन डबल कर देते हैं और उसमें आधा वेस्टेज होता है। तो ये छोटी सी चीज है, मतलब ये तमाम तरह के आपको एड इस तरह के देखने को मिले हैं कि किस तरह से पानी का दुरुपयोग पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा, पावर जनरेशन की बात है, हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं और हर तरह का पावर जनरेशन अंततोगत्वा टेम्परेचर को बढ़ाएगा ही, तो ज़्यादा जरूरी है कि हम पावर को बचाएं। और हम यदि कमरे से बाहर निकलने वाले आखिरी व्यक्ति हैं तो हम पंखा और लाइट बंद कर दें। यदि हम किसी बहुत बड़ी जगह पे हैं जहां एक हिस्से में हम बैठे हुए हैं तो केवल उसी हिस्से को लिट करें, या सुबह होने के बाद हम बाहर की लाइटें को ध्यान से बंद कर दें, तो आई थिंक हम बहुत सारा बिजली प्रोडक्शन की ज़रूरत जो है उसको ख़त्म कर सकेंगे। और लास्टली, एक जो बहुत बड़ा जंगलों पे जब हम खतरे की बात कहते हैं तो मैं जानता हूँ कि हमारे बच्चे या युवा जंगल में जाके जंगल को नहीं बचा पाएंगे, पर आप अपने घर में रह के जंगल को बचा सकते हो। आपके घरों में दूध आता है तो जो भैया दूध लाते हैं ना, उनसे जरूर पूछिए कि आप अपनी गाय को घर में स्टॉल फीडिंग कराते हैं कि जंगल भेजते हैं, और बोलिए कि यदि आप जंगल भेजते हैं तो हम दूध नहीं लेंगे आपसे। तो इस तरह से जो जंगलों के पौधों को गाय बैल के खुरों से नुकसान होता है उसको बचा पाएंगे, और वो काम कई हेक्टेयर कई एकड़ जंगल लगाने जैसा ही होगा।
0: जल, जंगल, जमीन, सारी चीजों के बारे में बात करना पड़ेगा, और बहुत वृहद ये विषय है। आधे घंटे के इस छोटे से समय में, इस परिधि में इसको समेट पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो भी छोटे छोटे उपाय आपने मानव

0: आदत में परिवर्तन संबंधी दिए, उसे अपना करके निश्चित रूप से हम जलवायु परिवर्तन से निपट पाएंगे और अपने पर्यावरण को सहेज पाएंगे, संरक्षित कर पाएंगे। और जैसा कि DFO साहब ने कहा कि यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो इस मंत्र को हमें अपनाना पड़ेगा और पर्यावरण संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और हमें इसे निभाना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर नीलेश शाह, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं पशुपालन एवं डेयरी विभाग सागर में। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं रजनीश कुमार सिंह साहब, आप DFO हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सागर से। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी साहब का, आप कृषि विज्ञान केंद्र देवरी सागर से हमारे बीच इस परिचर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का।
1: धन्यवाद।
2: ये कार्यक्रम वन हेल्थ एवं एग्रो इकोलॉजी प्रोजेक्ट द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इस परियोजना में मध्य प्रदेश शासन का पशुपालन एवं डेयरी विभाग नोडल विभाग के रूप में सहयोग कर रहा है। ये प्रोजेक्ट GIZ के तकनीकी सहयोग से सागर जिले में संचालित किया जा रहा है।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे GIZ नई दिल्ली।
4: अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, विषय था विश्व पर्यावरण दिवस। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
0: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
0: और डोंडी दुहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
0: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
0: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
0: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
0: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
0: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कॉमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
2: जी।
0: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
2: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।
2: जी,
0: यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
2: जी,
0: इस डाकघर की स्थापना 5 नवम्बर 1983 को हुई थी।
2: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
2: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। बहुत अच्छे से शासन करिए।
4: खास ऐलान
1: शान

0: आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
1: हाँ महाराज, महाराज बताइए,
0: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
1: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
0: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
2: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
0: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
3: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
4: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
0: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
4: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
5: जी महाराज,
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो,
6: महाराज की
7: जय हो,
6: महाराज की जय हो।
0: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
4: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
0: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
1: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
0: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
1: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
0: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
1: धन्यवाद महाराज।
4: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
1: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
8: हुआ? मुझे भी नकली हो सकता है
1: यार, क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली, तुम
8: नकली कैसे हो गया?
1: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
7: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय।
0: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
1: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ लें महाराज।
0: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
1: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जोहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
0: क्या? और कोई शंका?
1: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
0: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा

0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
3: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलू मैं जल्दी सीख भी जाती हूँ।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उपनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 11:30 होने

को हैं। थोड़ी देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

है और जान इश्क है, इश्क से

मिताली सिंह की आवाज थी। एल्बम का नाम था नशे मन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। राजेश रेड्डी की गजल पंकज उधास की आवाज में, एल्बम का नाम नबील।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
3: After a detailed assessment,
4: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य

0: अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से एलएएफ के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी की आवाज से, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म मन की आंखें।

ममता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। ये दूसरा आदमी फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ?
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा,
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो?
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
2: सखी सहेली।

छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

कामजोर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदीवर के बोल थे। डाक फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: डाक फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। इस कार्यक्रम का स्वरूप तो आपको पता ही चल चुका है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम संक्षेप में बता देते हैं। वैसे ये जो इबारत लिखी जाती है, आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि गानों की आपकी हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। तो फिर ध्यान से पढ़ लीजिए कविता। वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ ली है और लिखा भी है कि आज की इबारत में तो कविता है। भाई, कविता थोड़ी कठिन है, मुश्किल हो रहा है अंदाजा लगाना, तो यही तो बात है। पहेली अगर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए तो वो पहेली ही क्या। तो चलिए हम वो इबारत पढ़ देते हैं कविता की शक्ल में। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, चीड़ और देवदार की छांव में पली, बुरांश के फूलों से दहकती, किसी खूबसूरत झरने सी चंचल। पेड़ पौधों और जंगलों के बीच वो हिरनी सी भरती कुलाचे, पगडंडियों पर उसके पांव पड़ते तो धरती के आंचल में एक मधुर कंपन जाग उठता। खुली वादियों में चलते हुए वो देखती एक ख्वाब, नीले अंबर के पार वो देखती तो बारिश की बूंदें जैसे प्रेम की माला पिरोती। प्यार के राग पर वो गुनगुनाती, जहां बादलों के पंखों पर बैठकर मन उड़ने लगता। वो आसमान की ओर निहारती, कहीं दूर बादलों की आग छलक पड़ती। बारिश उतरती पहाड़ों की देह पर तो झरने नदी का हाथ थामे गुनगुनाने लगते कोई खूबसूरत गीत। हवा उसकी जुल्फों को सहलाकर गाती कोई सुरीला नगमा, और जब उसकी जुल्फें पवन के संग थिरक उठती तो घाटियों में गूंजता प्रेम का दर्द भरा राग। उसकी आंखों में उतर कर रच देती सिंदूरी कविताएं, वो फूलों से नहीं उनकी खुशबू से प्रेम करती थी। नदियों से नहीं उनके सफर से, और आकाश से नहीं उसकी असीम उम्मीदों से। उसके दिल में अजब सा संसार था, एक पूरा जंगल सांस लेता था उसके दिल में। नदियों का संगीत, पहाड़ों की चुप्पी, वो थी पहाड़ों वाली लड़की, जिसकी हंसी में झरनों की कलकल थी, जिसकी आंखों में बादलों की नमी थी। अब भाई, बहुत सारे शब्द मिल गए आपको, तो आज तो ऐसे लगता है कि शब्दों की माला पिरोई जाएगी और ढेर सारे शब्द होंगे, उसमें मुझे ही मुश्किल पड़ जाएगी कि कौन सा वाला गाना सुनवाएं, कौन सा वाला नहीं। चलिए फिलहाल ये गाना सुनिए और देखिए कि इसमें कौन सा शब्द आया है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म मोहम्मद रफी।

सुबह ये गाना आपने सुना, फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज़, गीतकार, संगीतकार का नाम हमने पूछा था, कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आई हैं और ज़्यादातर श्रोता ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ममता जी इस कार्यक्रम में आई हैं, पहली बार आई हैं और कहाँ गायब थी। भाई गायब तो कहाँ थे, हम तो ऑन एयर होते थे और आपसे गुफ्तगू होती थी, अभी हाल में सजीव प्रसारण आपने देखा है माने जी के साथ, गायब कहीं नहीं थे, बस थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है तो कुछ प्रोग्राम छोड़कर कुछ नए प्रोग्राम करने पड़ जाते हैं। बहरहाल चलिए ये टिप्पणी हम पढ़कर सुनाते हैं। हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत एक खूबसूरत कविता है, तो मैंने सोचा मैं भी एक कविता रच देती हूँ, साझा कर देती हूँ। इन्होंने आगे लिखा है कि बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं इसके रचयिता कौन है। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहाँ, चलो हम दोनों चले वहाँ। जहाँ दिन भर महुआ पर झूले, रात को चू पड़ते हैं फूल। जहाँ दिन भर महुआ पर झूल, रात को चुपड़ते हैं फूल। बांस के झुरमुट में चुपचाप जहाँ सोए नदियों के कूल। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहाँ, चलो हम दोनों चले वहाँ। विहग मृग का हो जहाँ निवास, जहाँ अपने धरती आकाश। कविता आगे भी इन्होंने लिखी है, काफ़ी लंबी है और बहुत सारे श्रोताओं की चूँकि टिप्पणियाँ आ रही, तो हम चाहते हैं कि आप संक्षेप में लिखें ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबारत रूपी कविता बहुत पसंद आई, पर्यावरण दिवस की झलक दिख रही है, आपको नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है कि हर पंक्ति गुनगुनाते हुए बता रही है आज के सुंदर सुहाने सफ़र में एक खूबसूरत लड़की, पहाड़ देवदार के बगीचे में बहार के झरना, नदी चलता नीले नंबर अंबर, चांद जवाए हमको तरसाए, बारिश देह पर पड़ते टिप टिप बरसा पानी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। मतलब इतने सारे गानों के बोल लिख डाले हैं कि अब हमें मुश्किल पड़ रही है कि पूरा कैसे पढ़ें। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की काव्य रूपी इबारत विश्व पर्यावरण दिवस के लिए है। इबारत में काल्पनिक पहाड़न युति का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि इसमें कहीं प्रकृति की छटा भी है, लेकिन

लेकिन कहीं उन जो वो लड़की है, ख्वाबों वाली पहाड़ों वाली लड़की, उसके साथ जो शब्द हैं उन शब्दों पर गाने लिए गए हैं, और उस इबारत से आपके मन में जो कविता आ रही है वो भी आप लिखिए, और आपके जहन में जो गाने आ रहे हैं वो भी सुझाइए, हो सकता है आपका गाना हम शामिल कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुमराह फिल्म का गाना सुनवाते हैं। तो बताइए कि इस कविता से कौन सा वाला शब्द इसमें शामिल है। हाँ, पिछले गाने में शाम शब्द आया था जो हमने चुना था, वो हम आपको बता रहे हैं। तो गुमराह फिल्म के गाने में इस कविता से कौन सा शब्द आ रहा है, और साथ में आपको पूछना है कि कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना।

गुमराह फिल्म का गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें। हमने आपसे पूछा था कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना, सुनील दत्त और माला सिन्हा। तकरीबन सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफ़र में पहाड़ों नदियों के गीतों की महफिल है, मुझे एक गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली का पसंद आ रहा है, वो अगर आप सुनवा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी ये कविता बहुत ही सुंदर मर्मस्पर्शी है, आपने पहाड़ों हवा बारिश और फूलों की भाषा में एक निर्जर सी आत्मा को उभारा है, नाजुक मुक्त और अनंत उम्मीदों से भरी। हमारी वसुंधरा का प्रतिबिंब पहाड़ों वाली लड़की के माध्यम से प्रकृति के हर एक रूप, उसके गीतों, हवा के सरसराहट, नदियों की चंचलता को जीवंत कर दिया है। ज़रा ये तो बताइए कि आप बात पर्यावरण

की कर रहे हैं अगर, तो पर्यावरण की बात जब आती है तो आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं? इस आज के इस प्रोग्राम के टिप्पणी में विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर ये भी आप लिख सकते हैं कि आप निजी स्तर पर क्या करते हैं। जैसे हाल ही में अभी जब सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ थी 2 जून को, तो जब हिमानी शिवपुरी जी, जानी मानी अदाकारा हिमानी जी आई थी, तो उनके हाथों विविध भारती के परिसर में पौधारोपण किया गया था। तो इस तरह से हम निजी स्तर पर चाहे तो रोज एक पौधा रोप सकते हैं। तो अगर एक एक पौधा हम सब ने रोपा तो कितने सारे पौधे हो जाएंगे, जरा गणना कीजिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं की टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैं कोच्ची में हूँ, बादलों का आनंद ले रहा हूँ। हरियाली बिना बादलों के संभव नहीं। मुंबई में था तो पार्क के पेड़ पौधे आसमान की तरफ नजरें उठाए प्रकृति से मानो गुहार लगा रही थी कि हमारे दुखों का अंत कब होगा, मेघों की गर्जना कब सुनाई देगी। ऐसा लग रहा था मानो वो बेदम से हो गए हैं। पत्तों की हरीतिमा खत्म सी हो रही है, पेड़ों के डंठलों में सीधे खड़े रहने की ताकत नहीं है। कोच्ची में चारों तरफ पेड़ झूम झूम कर बादलों का स्वागत कर रहे हैं। सचमुच यहाँ हम मुंबई में कोई पौधा रोपते हैं तो बस 2 महीने या मुश्किल से 3 महीने बाद वो मुरझाने लगता है, क्योंकि मिट्टी हमें सही नहीं मिल पाती है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं, माली काका को बुलाते हैं और पौधे नए लगवाते हैं, उनसे मिट्टी नई बदलवाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? अगर करते हैं तो ज़रूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत प्रकृति से जुड़ी, सुंदर नज़ारे, पहाड़, पौधे, नदी, झरने, खुली वादियाँ, आसमान, बादल, बरसात, फूल, धरती, जंगल, पशु पक्षी, प्रेम गीत, प्रेम का दर्द, सुबह की पहली किरण, शाम की सिंदूरी, वातावरण वाली आवाज़, मीठी आवाज़। तो आपने गाने कौन से बताए? गाने तो बताए नहीं, गाने भी तो बताते चलिए। जैसे अभी हमने जो गाना सुनवाया गुमराह फिल्म का, हवाएँ थीं और फिजाएँ थीं, और इसके प्यार था, प्यार शब्द भी आया है इस कविता में। तो अब जो अगला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, ज़रा उसमें ढूंढिए कि कविता में कौन सा शब्द आया था, वो कविता और गाना मैच हो रहा है कि नहीं। आज और कल फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको पूछना है।

0: है तुम्हें।
1: आज और कल फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। बहुत आसान सवाल था और सभी श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के सुरीले सफर में जहां एक पहाड़ी लड़की वादियों में घूमती, झरनों में नहाती, फूलों की घाटी में समा जाती है, उसके गीत उन वादियों में गूंज रहे हैं। वो एक प्रेमी की तलाश में है जो एक पहाड़न के दिल को समझे, उसके जज्बात को समझे, वो अपना ले तमाम परदेसियों की तरह छोड़कर चला ना जाए। इस बात से कि परदेसी की तरह छोड़कर चला ना जाए, फिल्म जब जब फूल खिले याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रकृति की बातें होंगी, सब कुछ है, प्रकृति भी है, प्यार है, दर्द का राग है, कविता एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मौसम पर आधारित है आज का कार्यक्रम, मानसून की आमद होने वाली है, केरल से आना शुरू हो गया है, आज बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो लगता है कि मेरी लिस्ट के सभी गाने बजने वाले हैं आज, और इसलिए मिलते हैं 1 बजे, भाई शुरू हो चुका है कार्यक्रम और देखते हैं कि आप सबकी पसंद और हमारी पसंद मिलती जुलती है। वैसे अगर आप कुछ गाने हमें सुझाएं तो हम आप वाले गाने भी बजा सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे श्रोताओं की वो पसंद होनी चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी लिस्ट भेजी है। एक ने लिखा है, नीले पर्वतों की धारा, दिल का भंवर करे पुकार, मैंने कहा फूलों से, वगैरह वगैरह। तो देखते चलिए कि आप वाले गाने इसमें शामिल हैं या नहीं, और हाँ, शब्द भी बताते चलिए कि इस शब्द से अभी कौन सा, किस शब्द से कौन सा गाना बजा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें प्रकृति सुंदर हवा देती है, ठंडी छांव देती है, फूल देती है, जीवन जीने का आधार देती है, इसलिए जब मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रही है। तो मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो, पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने जीवन और अपने कल को सुरक्षित रखने का सबसे सुंदर प्रयास है। बिल्कुल सही फरमाया, और इसी बहाने आप उन पुराने दिनों को भी याद करते चलिए जो जब बड़े बड़े बाग होते थे, गांव में अभी भी हैं, और उन बागों में तरह तरह के पेड़ हुआ करते थे, फूलों की वादी होती थी, फूलों की घाटी, पेड़ में आम के पेड़, जामुन के पेड़, और वो कैथा, और जो बहुत सारे ग्रामीण फल होते थे जिनके नाम भी हम आज भूल चुके हैं। तो जो आम जामुन के पेड़ ख़ास तौर से जाते थे, आप पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेते थे या ढेला मार के फेंकते थे, टूट कर आम गिरता था, तो बाप दादे के लगाए हुए वो पेड़ के आम खाते रहते हैं। तो कभी सोचा है कि आपको भी एक पेड़ लगाना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे, जिस तरह आप अपने दादा नाना को याद करते हैं। चलिए, याद करते रहिए, और गानों से जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो डिटेल्स भी याद करते चलिए। फिल्म 2 दूनी 4 बताइए किसकी है आवाज़, किसका है संगीत और किसका है गीत।

दो दुनी चार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीत किसका है, गीत किसका है। किशोर कुमार की आवाज़, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत है। और कौन से शब्द के लिए ये गाना सुनवाए ये भी ज़रा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत के गुलजार गीतकार गुलजार हैं और ये मेरा पसंदीदा गाना है, अभिनेता किशोर कुमार है और बहुत पसंद है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको देखकर फेसबुक पेज पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बड़ी इबारत उसमें इतना कुछ समाया हुआ है कि इसके लिए एक घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी कैसे निभाती हैं। प्रोग्राम तो प्यारा होने वाला है क्योंकि एक तो आप और भी बहुत सारी बातें लिखिए भाई, तारीफ के अलावा आप वो बातें लिखिए जो पर्यावरण से जुड़ी हैं। और आप, हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई पौधा रोपा है या पौधे की देखभाल आप करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, पर्यावरण के लिए आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं। जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, नदी के किनारे, समंदर के किनारे जाते हैं, तो वहाँ एक खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं और एक दो रैपर वहीं पर फेंक के चले आते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो पानी है, नदी का पानी है, इसमें जाकर वो इकट्ठा हो रहा है। यहाँ तक कि समंदर की लहरों के साथ बहुत सारा कचरा आता है। जब हम मुंबई में किसी बीच पर जाते हैं या किसी भी समंदर के किनारे कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर जब पैरों में पॉलीथीन अटकता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो बस ऐसे ही सोचिए कि वो जो पानी है समंदर या नदी का, उन्हें भी बुरा लगता होगा। तो साफ़ सफाई का ख्याल भी रखें। फिलहाल सुने ये गाना।

दिल्ली का ठग फिल्म का गाना आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजें, एसएच बिहारी के बोल, रवि का संगीत। अब बहुत सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है, अब गानों के बोल भी आए हैं श्रोताओं की ओर से, और ज़्यादातर श्रोताओं ने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी, आज की इबारत से समझ में आ रहा है। भाई अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की भीगी भागी सी, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने पंछी बनूं उड़ती फिरूं ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, हुस्न पहाड़ों का, और भी गानों की लंबी फहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार भी। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फेनिल झरना है, सुंदर कुदरत के नज़ारे हैं, बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।

0: फिनिल झरने सुंदर कुदरती नज़ारों के बीच गा रहे हैं ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर्दे पर। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा। एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों को काटकर उस ज़मीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जिससे मानव और पशु पक्षी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से ज़रा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार पेड़ पौधे नदी तालाब ही तो हैं, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ हैं, गाँव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे, अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी। वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें कलाकार।
1: प्यार करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
0: गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो?

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहां नीले अंबर संग अटखेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहाँ पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियाँ थीं जो जिस पर झूले बंधे हुए थे, सब के सब कहाँ खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहाँ हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहाँ पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटखेलियाँ हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकाल कर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा, तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी ज़रा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, ज़रा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। संगीतकार का नाम जरा बताइए, कौन है संगीतकार?

सेहरा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, रामलाल का संगीत था। हमने संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा पहाड़ी लड़की का सौंदर्य सादगी, प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़ें और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार संगीतकार का नाम ज़रा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई ख़ास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं।

आ फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदें बरसने लगी, ये गाना, और नील गगन की छाँव में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है, एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन धाए, ये वाला गाना भी लिखा है जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गाँव नदियाँ नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए, पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफ़र में रेडियो सखी ने नदियां, पहाड़ इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है, तो आप बताइए क्या था। हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। सुनिए कि प्रोग्राम का आखिरी गाना।

गारे में हीरो हैं जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। नाम बताइए जरा और हीरोइन का नाम भी बताइए। हीरो और हीरोइन का नाम आपको बूझना है।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, साधना और जॉय मुखर्जी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना, सुरीला सफ़र। ये सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, जब पेड़ मुस्कुराते हैं तो ऋतुएं गुनगुनाती हैं, और जब नदियां बहती हैं तो जीवन का संगीत सजता है। हरियाली धरती का श्रृंगार है, नदियां उसकी धड़कन और आकाश उसका विस्तार है। प्रकृति का ये अनुपम काव्य जीवन के होठों पर गीत सजाता रहे, इसी कामना के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर सुनिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम।

पेड़ों की छांव में शीतलता है, फूलों की खुशबू में जीवन का उत्सव है। जब वृक्ष खिलखिलाते हैं तब जीवन गुनगुनाता है। नदियों की कलकल, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों का मधुर गान, यही तो वो संगीत है जिसके सुरों पर जीवन मुस्कुराता है।

0: Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha.
1: तो श्रोताओं, फूलों की सुगंध, बादलों की छांव और वृक्षों का स्नेह मनुष्य को मिलता रहे, इसी कामना के साथ आइए संकल्प लें कि धरती को हम उतना ही सुंदर बनाकर रखें जितनी सुंदर ये हमें विरासत में मिली है। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर हैं। सूरत में वे 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं शाम को दमन में नामो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल और नामो अस्पताल सहित करीब 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एयर ट्रंक कंपनी भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करेगी। श्री मोदी ने कहा कि यह देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे भारत क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक केंद्र के रूप में और मजबूत होगा तथा रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण

0: और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार कला, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और सामाजिक कार्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में भी पौधरोपण, संगोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
1: आज के समय में पर्यावरण को लेकर हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल अवधारणा या जीवन पद्धति थी, सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई। अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति संध्या वंदन दीप प्रज्वलन के साथ, सूर्योदय देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ, अगर भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में माचना नदी घाट पर केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं रायसेन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण किया गया, जबकि गुना में एनसीसी इकाइयों ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। वहीं सतना के बगहा में जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदौर में 9 जून से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां आज भी जारी हैं। झाबुआ में सुबह तेज बारिश हुई, जबकि सीहोर, रायसेन और कई अन्य जिलों में भी मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने आज भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 45 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच, मंदसौर, श्योपुर सहित 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। केरल में मानसून 4 जून को पहुंच चुका है और प्रदेश में मानसून के 20 से 22 जून तक के बीच दस्तक देने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में मलेरिया निरोधक माह के तहत कल बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है संदेश के साथ एक प्रचार रथ को रवाना किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य प्रियंका अनुंगो ने नर्मदापुरम प्रवास के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिव्यांगजनों को कौशल विकास प्रशिक्षण तथा बैंक ऋण से जोड़ने के निर्देश दिए। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी प्रोग्राम 3.0 के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में स्नातक 18 से 30 वर्ष तक के युवा 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 1 जुलाई को होगी। और प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उसके उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि छोटे तालाब जिनका किसी नदी से कोई संबंध नहीं है उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित

0: विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
5: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं, लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण

0: दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, दोपहर 2:30 का ये वक्त जबकि कुछ फुर्सत जिंदगी चुरा ही लेती है, जी हाँ, तो इन फुर्सत के लम्हों में आइए कुछ सुरीले नगमे आपकी ही फरमाइश पर आप तक भेजते हैं।

0: शैलेंद्र का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था, फिल्म थी ताजमहल। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो।
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, आदमपुर बिहार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं घर पे ही अपना बुटीक है मेरा, सिलाई करती हूँ।
0: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
1: हाँ जी।
0: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
1: हाँ जी।
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के।
0: अरे
1: वाह, सारी गारमेंट्स बनाती हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है, फिल्म का तेरा मेरा साथ है।
0: बहुत प्यारा गाना है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: स्वाति सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं?
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम रहती है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने का?
1: मैम मिल जाता है। मैम आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा। और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र छिपी रहे।
0: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का काम काज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ आकाशवाणी के, सभी केंद्र के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं आप?
1: पढ़ाई तो खत्म है, मेरे कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया है, तो
0: हाँ।
1: उनकी याद में गाना सुनेंगे, उनकी आवाज में तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी, इंदौर से बोल रही हैं, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत।
0: बढ़िया।
1: और दिन में धूप में तो निकलना।
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो तब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: आप बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो आप
1: से बात करके बहुत आनंद आ रहा है, मैम आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उससे थोड़ा कम समय दे पाते हैं, 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को ही आता है 9 बजे। छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं, क्या अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है, जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से?
1: मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ, मैं उज्जैन से।
0: अच्छा, रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी और एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है।
0: अरे वाह, यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना?
1: जी मैम, अभी 2-3 महीने हुए।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ है, कड़क वाली की अच्छी वाली?
1: नहीं,
0: आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम, हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है और शाम की टाइम हम रोज घूमने जाते हैं। मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए, इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना, तो समझिए फिर तो आप थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी थोड़ा बहुत रहता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत बहुत ही अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: मैम, अच्छा लगता है उनके साथ, और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर पे बहू आ गई तो टेंशन फ्री है थोड़ा।
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की सास हैं।
1: बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है।
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी। तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: तो संभालना जरूरी है ना, घर में तो सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे है, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ
0: जी। तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं?
1: तो सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, तो मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता, भोले मिश्री संगीत सविता, भोले मिश्री गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता, सुन किचन में चलता रहता, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में अगर रुचि है ना आपकी, तो समझिए आपका जीवन बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ, और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है,
0: ये अच्छी चीज है।
1: हाँ, और दूसरा और सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना। घर में मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं गमलों में सब में।
0: अरे वाह,
1: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ। मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पिया जो है जबलपुर का है
0: जी,
1: तो हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहाँ पर हमें शरीफा, इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलियाँ, इतने पौधे में पेड़ लगता फल लगते रहे कि मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो समाई जमाई जीवन देते मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना सुनूंगी गागो साइड खान का, नाचो तो बंसी बजा। हाँ
0: जी बिल्कुल, सुनवाती हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी।
1: पूर्णिमा सहगम, अभी

0: तेलंगाना में रह रही हूँ।
1: अच्छा अच्छा,
0: गाने सुनती रहती हूँ।
1: आप बताइए क्या करती हैं आप?
2: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
1: कितना छोटा है आपका बच्चा?
2: अभी 2 साल की हुई है।
1: ओहो, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
2: वो ज्यादा नहीं कर पाती, पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
1: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
2: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
1: यानी अच्छी बच्ची है।
2: हाँ।
1: जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
2: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
1: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपनी, मतलब आप छोड़ रखा है इस समय?
2: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
2: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
1: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
2: बीमारी सही कर दे, डांस बिल्कुल म्यूजिक तो ऐसी चीज है।
1: जी, एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
2: हाँ, फिट भी रहते हैं बहुत।
1: जी तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
2: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
1: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं रत्ना बोल रही हूँ। हाँ, रत्ना सिन्हा।
0: अच्छा रत्ना जी बोल रही हैं, कहाँ से?
1: बाराबंकी से।
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं ऐसे तो हाउसवाइफ हूँ, मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी

0: फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए।
1: बिल्कुल।
0: जो है
1: आपके परिवार में कौन कौन है?
0: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है।
1: बहुत बढ़िया। तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से।
0: जी जी जी जी।
1: तो बताइए जी, तो आप बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
0: जी, बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है। मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं।
1: अच्छा अच्छा, आपने लगा रखे हैं?
0: हाँ, लगा रखे हैं। और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी।
1: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए, वो चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया। बहुत अच्छी बात है ये।
0: और साथ
1: वही तो, हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना।
0: बिल्कुल, आती हैं, सब खेलती हैं।
1: जब वो चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना?
0: जी जी।
1: तो आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
1: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाते हैं आपको ये, आपके पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी। तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निको से है।
0: तो आप कहाँ से?
1: मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैडम।
0: अच्छा,
1: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा लगता है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: मुझे जाकवर सिंह ने का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ओडिशा गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की।
0: अरे वाह,
1: बीएससी नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है? तो
1: मुझे सिलाई आती है, तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती।
0: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या ना हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है, लेकिन आपने उस चीज़ को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या चीजें सिल लेती हैं?
1: ये हो रही है कि आज सखी सहेली को मेरी फोन लगी। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है।
0: अरे वाह, जून में ही है दोनों बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ हाँ, और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है।
0: अच्छा,
1: तो हैप्पी बर्थडे की गीत सुनाई देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करें। तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती हूँ।
0: अच्छा, सारी चीजें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: सुजाता फिल्म का गीत है ना।
0: सुजाता का कौन सा? अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको, पसंद करिए ये गीत।

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी

0: नम्रता टिकोरे और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला। भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूं बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर। शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कहकर गई है पता है? कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर, कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज़्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूँ? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

0: सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा। मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। दो दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई जैसे मेरी बुराई कर रही हूं, और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।
1: सासु जी तूने

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिय, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है। वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है। प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आईं, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थीं। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ, आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटाकर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतनी सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी। मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूं पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी। इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी।

भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी अब तो आप खुश है ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना, साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आई। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

0: हितों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया। वाचन स्वर प्रताप सुमजी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है,

0: अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत पहुंच गए हैं, जहां वे आज 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। वे आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पौधा लगाया और लार्सन एंड ट्रूबो के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से विश्व पर्यावरण दिवस पर जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा कि पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत और वन्य जीव हमारे जीवन के आधार हैं। प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी प्रोग्राम 3.0 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में स्नातक 18 से 30 वर्ष तक के युवा 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां आज भी जारी हैं। मौसम विभाग ने भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 45 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युवाणी। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।
1: चर्चा के साथ, जिसका विषय है विश्व पर्यावरण दिवस। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 1972 में की गई थी और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सन 1973 को मनाया गया था। यह दुनिया भर में सबसे बड़ा पर्यावरण जागरूकता मंच है, जिसमें 140 से अधिक देश आधिकारिक रूप से भाग लेते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वच्छ हवा, पानी और सुरक्षित जैव विविधता के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक प्रदूषण और वनों की कटाई जैसी गंभीर समस्याओं को नियंत्रित करने पर इस दिन विशेष मंथन होता है। हर वर्ष एक खास थीम निर्धारित की जाती है, जैसे प्लास्टिक प्रदूषण का अंत, ताकि एक निश्चित लक्ष्य पर काम किया जा सके। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए इस दिन व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं और लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह सिर्फ सरकारों का नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य तय करता है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और कचरे का उचित निपटान करें। यह दिन हमें वनों, प्राकृतिक संसाधनों और लुप्त प्राय जीव जंतुओं के संरक्षण के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का संदेश भी देता है। स्कूलों, कॉलेजों और कॉरपोरेट कार्यालयों में रैलियों, निबंध प्रतियोगिताओं और सेमिनारों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। इसका मूल मंत्र आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरा भरा ग्रह बचाना है, ताकि वे भी सुरक्षित वातावरण में सांस ले सकें। साथियों, ये तो थी हमारी एक छोटी सी चर्चा विश्व पर्यावरण दिवस पर। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेकर चलते हैं आपको वार्ता की ओर। वार्ता का विषय है रील्स बनाम रियल और हमारा युवा। वार्ताकार हैं अदिति शुक्ला। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अदिति और आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 675 किलो हर्ट्ज पर।

0: बताओ, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आज हर युवा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, रील्स की दुनिया, जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। यही रील्स की दुनिया का हमारे रियल लाइफ में क्या असर पड़ता है, आज हम बात करेंगे रील्स वर्सेस रियल की। दोस्तों, आज का समय डिजिटल युग का समय है। मोबाइल फोन अब केवल बातचीत का साधन नहीं रह गया है, बल्कि हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया है। सुबह आँख खुलते ही लोग सबसे पहले मोबाइल खोलते हैं और रात को सोने से पहले आखिरी बार भी मोबाइल ही देखते हैं। इन सब के बीच जो खाली समय मिलता है, वो भी मोबाइल देखने में ही चला जाता है। और इस सब में सबसे ज्यादा अगर युवाओं को कोई चीज आकर्षित कर रही है, तो वो है सोशल मीडिया रील्स। कुछ सेकंड की छोटी छोटी वीडियोस आज लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। मनोरंजन, फैशन, डांस, कॉमेडी, फिटनेस, शिक्षा, यात्रा, खाना बनाना, हर तरह की जानकारी अब रील्स के माध्यम से ही मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम रील्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर रील्स धीरे धीरे हमें नियंत्रित करने लगी हैं? क्या यह केवल मनोरंजन है, या फिर हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं? आइए, आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। श्रोताओं, अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, तो लोगों के पास खाली समय में करने के लिए अलग-अलग चीजें हुआ करती थीं। कोई किताबें पढ़ता था, कोई दोस्तों के साथ समय बिताता था, कोई खेल खेलता था, या फिर परिवार के साथ बैठकर बातें किया करता था। लेकिन आज की स्थिति काफी बदल गई है। जैसे ही लोगों को खाली समय मिलता है, वे तुरंत मोबाइल खोलकर रील्स देखने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि केवल 2 मिनट के लिए मोबाइल खोलते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा निकल गया। यही रील्स की सबसे बड़ी ताकत है। ये वीडियो इतनी तेजी से बदलती है कि हमारा दिमाग लगातार नई चीजें देखने का आदि हो जाता है। वैसे रील्स का सकारात्मक पक्ष भी है। आज बहुत से युवा अपने हुनर को दुनिया के सामने ला पा रहे हैं। छोटे शहरों और गांवों के युवा भी अपनी प्रतिभा दिखाकर पहचान बना रहे हैं। कोई गाना गाकर लोकप्रिय हो रहा है, कोई डांस से लोगों का दिल जीत रहा है, तो कोई शिक्षा से जुड़ी जानकारी देकर दूसरों की मदद कर रहा है। आज कई शिक्षक भी रील्स के माध्यम से कठिन विषयों को आसान भाषा में समझा रहे हैं। फिटनेस ट्रेनर्स स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे रहे हैं। छोटे व्यवसाय करने वाले लोग अपने काम का प्रचार कर रहे हैं। यानी रील्स केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि रोजगार और अवसर का भी मंच बन चुकी है। कई युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना करियर बनाया है। कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर्स बने, कुछ वीडियो एडिटर्स, तो कुछ डिजिटल मार्केटर्स और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इससे यह साफ है कि अगर सही तरीके का उपयोग किया जाए, तो सोशल मीडिया युवाओं के लिए नए अवसर के दरवाजे खोल सकती है। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। रील्स की दुनिया जितनी आकर्षक दिखाई देती है, वास्तविक जीवन उतना आसान और परफेक्ट नहीं होता। सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों की जिंदगी का केवल एक अच्छा हिस्सा दिखाई देता है। महंगे कपड़े, शानदार होटल्स, घूमना फिरना, लग्जरी गाड़ियाँ, हमेशा खुश रहने वाले चेहरे, ये सब देखकर कई युवाओं को लगता है कि उनकी जिंदगी दूसरों से कम अच्छी है। धीरे धीरे तुलना करने की यह आदत आत्मविश्वास को कमजोर करने लगती है। लोग सोचने लगते हैं कि वो दूसरों जितने सफल या सुंदर नहीं हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली जिंदगी पूरी सच नहीं होती। कैमरे के पीछे का संघर्ष, तनाव और मेहनत भी होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। आज कई युवा केवल लाइक्स और व्यूज पाने के लिए अपनी असली पहचान बदलने लगे हैं। कुछ लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो केवल लोगों का ध्यान खींचे, और दूसरों की नकल करते करते वो अपनी असली पहचान खोने लगे हैं। दोस्तों, आपने शायद ध्यान दिया होगा कि अब लोग किसी भी खूबसूरत जगह पर या तो घूमने जाएं या फिर परिवार के साथ बैठें, कैमरा पहले खुल जाता है। धीरे धीरे हम अपने पलों को जीने की जगह उसे रिकॉर्ड करने में ज़्यादा व्यस्त हो रहे हैं। इसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ रहा है। पहले परिवार के लोग साथ बैठकर बातें किया करते थे, लेकिन अब कई घरों में सभी लोग एक ही कमरे में बैठकर भी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। दोस्ती भी अब ऑनलाइन चैट और इमोजी तक सीमित होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है। हर समय फोन चेक करना, नोटिफिकेशन का इंतजार करना और दूसरों से अपनी तुलना करना तनाव और चिंता को बढ़ा सकता है। कई युवाओं में अकेलापन की भावना भी बढ़ रही है। श्रोताओं, हमें यह समझना होगा कि तकनीक हमारे लिए ही बनी है, हम तकनीक के लिए नहीं। मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग तभी तक अच्छा है जब तक वह हमारी ज़िंदगी को आसान बनाए, ना कि हम पर हावी हो जाए। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया का उपयोग संतुलित तरीके से करें। अगर आप रील्स देखते हैं तो अपने समय की सीमा तय करें। हर समय फ़ोन हाथ में रखने की आदत को कम करें। दिन का कुछ समय मोबाइल के बिना बिताने की कोशिश करें। दोस्तों और परिवारों के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत करें, किताबें पढ़ें, खेल कूद में हिस्सा लें, संगीत सुनें और प्रकृति के बीच में समय बिताएं। अपनी वास्तविक ज़िंदगी को सोशल मीडिया की दुनिया से ज़्यादा महत्व दें। और सबसे ज़रूरी बात, खुद की तुलना किसी और से मत करिए। हर व्यक्ति की ज़िंदगी अलग होती है, हर किसी का संघर्ष अलग होता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। दोस्तों, रील्स की दुनिया हमें मनोरंजन, जानकारी और अवसर देती है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हम उसका उपयोग समझदारी से करें। तकनीक तभी फायदेमंद है जब हमारे नियंत्रण में रहे। हमें डिजिटल दुनिया और वास्तविक जीवन के बीच सही संतुलन बनाना सीखना होगा, क्योंकि असली खुशियाँ लाइक्स और व्यूज में नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए समय, सच्ची दोस्ती, अच्छे स्वास्थ्य और मन की शांति में होती है। तो आइए हम सब भी यह संकल्प लें कि सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, लेकिन उसे अपनी जिंदगियों पर हावी नहीं होने देंगे। रील्स देखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, लेकिन अपने वास्तविक जीवन और रिश्तों को कभी नहीं भूलेंगे। इसी संदेश के साथ मैं अदिति आप सभी से विदा लेती हूँ। यह कार्यक्रम सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
1: दोस्तों, अभी हमने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था रील्स बनाम रियल और हमारा युवा, जिसमें वार्ताकार थी अदिति शुक्ला। आइए साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं हमारी अगली चर्चा की ओर, जिसका विषय है प्राकृतिक खेती। यह खेती रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और बाहरी आदानों यानी इनपुट्स पर निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखती है। इसका मुख्य उद्देश्य जैविक कचरे और प्राकृतिक पोषक तत्वों का उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य और सूक्ष्म जीवों को पुनर्जीवित करना है। इसमें फसलों की वृद्धि और कीट नियंत्रण के लिए गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़ और बेसन से बने जीवामृत तथा बीजामृत का प्रयोग होता है। यह प्राकृतिक दृष्टिकोण किसानों की खेती की लागत को लगभग शून्य कर देता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। यह विधि पर्यावरण के अनुकूल है, जो भूमिगत जल को प्रदूषित होने से बचाती है और जैव विविधता को बढ़ावा देती है। खेत की नमी को बनाए रखने और खरपतवार को रोकने के लिए मिट्टी को कार्बनिक पदार्थों से ढकने की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रणाली में पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, जिसमें वर्षा जल का अधिकतम और कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है।

प्राकृतिक तरीके से उगाई गई उपज रसायन मुक्त, पौष्टिक और मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। इसमें कम से कम जुताई की जाती है, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक संरचना और केंचुए जैसे मित्र जीवों को नुकसान नहीं पहुंचता। इसमें मुख्य फसल के साथ अन्य सहायक फसलें और पेड़ भी उगाए जाते हैं, जो मिट्टी की नाइट्रोजन क्षमता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा प्राकृतिक खेती पर। आइए श्रोताओं, आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी हमने जो ये गीत सुना ये था फिल्म रश से, जिसके गायक थे ऐश किंग, मुअज्जम और रिजवान अली खान, जिसके गीतकार थे आशीष पंडित और संगीत से सजाया था प्रीतम ने। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं हमारी अगली चर्चा की ओर, जिसका विषय है गांव के विकास में युवाओं की भूमिका। युवा किसान वैज्ञानिक तरीकों, जैविक खेती और ड्रम सीडर या ट्रैक्टर जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग करके कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। गांव में युवाओं द्वारा ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन सरकार

सेवाओं जैसे आधार अपडेट, बिल भुगतान के बारे में जागरूक किया जा सकता है। शिक्षित युवा अपने गांव के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन और मार्गदर्शन देकर शिक्षा का स्तर ऊपर उठा सकते हैं और ड्रॉपआउट दर को कम कर सकते हैं। युवा बढ़ईगिरी, सिलाई, कंप्यूटर जैसे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके अन्य ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। युवा स्वच्छता अभियान चलाकर शौचालय निर्माण को प्रेरित करके और स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर गाँव को बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त गांव का अभियान चलाकर युवा पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। स्थानीय उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, शहद, अचार को ऑनलाइन माध्यमों और सोशल मीडिया से जोड़कर युवा उन्हें उचित बाजार दिला सकते हैं। गांव में खेल के मैदानों का विकास करके और टूर्नामेंट आयोजित कर युवा पीढ़ी को नशे और गलत आदतों से दूर रखा जा सकता है। युवा ग्राम पंचायत और सरकारी अधिकारियों के बीच की कड़ी बनकर ग्रामीणों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं। युवा वर्ग बाल विवाह, दहेज प्रथा और लिंग भेद जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा या संकट के समय युवा दल वॉलंटियर के रूप में आगे आकर गाँव की सुरक्षा और राहत कार्यों में भी अहम योगदान दे सकते हैं। कुछ इन कार्यों के द्वारा गाँव के विकास में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन सकती है। युवाओं को इस बारे में सोचना चाहिए। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी गाँव के विकास में युवाओं की भूमिका विषय पर। आइए अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी हमने ये जो गीत सुना ये था फिल्म बॉबी से, जिसमें आवाज़ थी शैलेंद्र सिंह की, जिसके गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए साथियों, अब आपको दे देते हैं रोजगार सूचना भी। एसएससी सीजीएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है ग्रुप बी एंड सी। पदों की संख्या है 12,256, जिसमें आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 32 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी www.ssc.gov.in पर विजिट भी कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। दीजिए अनुमति अपने मित्र अनुपम खरे को

0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगा हर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लव्स और लम्हे।
1: हिल इंडिया हाइड्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करता है लिजा के
2: लफ्ज और लम्हे।
3: इस महफिल में कबूल फरमाइए नासिर
2: और साहिबा का
3: प्यार भरा
2: आदाब। लिजा जी, हमने सुना है कि दर्द

0: वो शय है जो शायरी को और भी निखार देती है। आपकी नजर में क्या है दर्द?
1: किसी के दर्द को समझ पाना, किसी के दर्द में शामिल होना एक इबादत ही तो है।
2: सवाब तेरी इबादत का साहिब।

0: हैं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: अगर शायरी में पेचो खम का जिक्र न हो तो भी कुछ अधूरापन रह जाएगा।
0: गजल लेकर मैं आई हूँ। मौजों को तला तुमने गजब के ये खम दिए, मौजों को तला तुमने गजब के ये खम दिए, तेरी हसीन जुल्फ से पर फिर भी कम दिए, उनकी खता पे फिर से लो हम हंस के चल दिए, उनकी खता पे फिर से लो हम हंस के चल दिए, सोचेंगे फिर कभी चलो के कित

0: गोरे सफ़ों से भी तेरा पैगाम मिल गया, गोरे सफ़ों से भी तेरा पैगाम मिल गया। कासिद ने ला के ख़त तेरे जो हमको नम दिए।
1: बहुत खूब।

0: बेहतरीन,
1: शुक्रिया नवाजिश आपकी।
0: और अब वक्त का तकाजा है कि हमें चलना होगा, इजाजत दीजिए साहिबा
2: और नासिर को।
3: लिजा के
0: लफ्ज़ और लम्हे।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे हिल इंडिया हाइड्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड।
4: लिजा के लफ्ज़ और लम्हे, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:35 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अमिक हनफी का कलाम अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में।

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कार्यक्रम संगीत सरिता में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं लकी अली की आवाज में महबूब का लिखा ये गीत।

0: बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: कार्यक्रम संगीत सरिता में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आइए इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज़ों में वसीम बरेलवी का कलाम।

लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब यहीं संपन्न होता है।

0: कार्यक्रम संगीत सरिता अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:55 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुनहरी यादें। आकाशवाणी के 90 बरस के अवसर पर इस बार अपनी यादें साझा कर रहे हैं आकाशवाणी के सेवानिवृत्त इंजीनियर गफ्फार खान और मसूद अहमद खान। इनसे हमारे स्टूडियो में भेंट की है जय शेखर ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुनहरी यादें।
1: श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के सुनहरे 90 बरस होने के बाद हम देखते हैं पीछे मुड़कर तो बहुत सारी यादें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया आकाशवाणी के कामों में और अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। श्रोताओं के जहन में कई बार ये चीज भी आती है कि ये कार्यक्रम बनते कैसे हैं, हम लोग जब कहीं जाते हैं ओबी रिकॉर्डिंग पर तो वो रिकॉर्डिंग कैसे होती है, कार्यक्रम बाहर रिकॉर्ड किए जाते हैं तो हमारे साथ कौन सी टीम होती है, उन टीम का एक एक व्यक्ति का क्या काम होता है, वो कैसे काम को अंजाम देते हैं। ऐसी ही सारी बातों के जवाब के लिए हमने अपनी स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे सेवानिवृत्त वरिष्ठ तकनीशियन मसूद खान साहब और सेवानिवृत्त अभियांत्रिकी सहायक गफ्फार खान साहब। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: गफ्फार भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नौकरी की शुरुआत कैसे हुई, आकाशवाणी में कैसे आ पाए?
2: हुआ ऐसा कि हम लोग अपना कोर्स करके निकले इलेक्ट्रॉनिक्स का, और मैं तो एक्चुअली खुरई से आता था।
1: अच्छा,
2: हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं।
1: हाँ हाँ।
2: तो उसी दौरान क्या हुआ, दूरदर्शन का एक्सपांशन हुआ। तो अब हम लोग तो जानते नहीं थे ये सब चीजें, बस पता था कि दूरदर्शन चालू हो गया।
1: हाँ हाँ।
2: तो ये यहाँ दूरदर्शन में
1: हाँ।
2: जॉब के लिए रोजगार कार्यालय से हम लोगों के नाम मंगाए गए।
1: हाँ हाँ।
2: लेकिन उसमें भी बड़ा इंटरेस्टेड किस्सा है। मैं तो एक्चुअली खुरई से आता था।
1: हाँ हाँ।
2: तो संडे की डेट थी,
1: रहने वाले अब खुरई के,
2: खुरई का हूँ मैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो संडे का दिन था जिस दिन बुलाया गया।
1: हाँ।
2: तो साथ ही इन लोगों ने सबने बताया कि संडे को बुलाया है।
1: हाँ।
2: तो मैं तो खुरई से आता था, तो मेरे दिमाग में ये आया कि शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं, संडे का दिन कौन सा ऑफिस खुलता है या क्या।
1: हाँ हाँ।
2: तो मैं नहीं आया, और बुलाया एक्चुअली उसी दिन था।
1: अच्छा,
2: तो
1: अच्छा।
2: उस दिन इन लोगों के सारों के नाम सिलेक्ट हो गए उसमें, मैं नहीं आया, तो नेचुरली के नाम फिर कट ही गया उसमें से लिस्ट से। जब मैं नेक्स्ट डे संडे को आया तब इन लोगों ने बताया कि तुम्हारा तो नाम कट गया उस लिस्ट से। तब मुझे घबराहट हुई, मैंने यार इतना बढ़िया मौका, और माने ये बात सच थी कि बुलाया गया था।
1: हाँ।
2: तो फिर मैंने कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाया।
1: हाँ।
2: तो सीधा मैं दूरदर्शन के ऑफिस आ गया। तो क्या था कि जो वहाँ के डायरेक्टर थे मोदी साहब, उस समय स्टेशन इंजीनियर लिखते थे।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो वो थे, तो उनसे तो मैं गया, मिला उनको, ये बात बताई, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हो गया, मेरा नाम लिस्ट में नहीं आ पाया। तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, बैठो। ड्रायर से कागज निकाला।
1: हाँ।
2: पेन दिया, बोले लो एक एप्लीकेशन सादा लिखो।
1: हाँ।
2: उन्हें लिखाई और
1: हो गया,
2: ले ली
1: जी, जी।
2: उसके बाद फिर वो मेरे को इंटरव्यू में बुलाया।
1: हाँ, हाँ।
2: और फिर ऐसे हुआ कि सिलेक्शन हो गया हम लोग।
1: अच्छा, अच्छा।
2: तो इंटरव्यू को बुलाया होगा।
1: हाँ, हाँ।
2: तो उसमें इंटरव्यू वगैरह हुए जब भी डेट पे, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। मैक्सिमम हमारे बैच के हो गए थे उसमें। तो ऐसे वो शुरुआत हो गई।
1: मसूद भाई, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या कहानी रही आकाशवाणी में प्रवेश की।
3: मेरी आकाशवाणी में प्रवेश से पहले तो आईटीआई में प्रवेश की भी एक कहानी।
1: अच्छा,
3: यही है।
1: जी जी जी जी।
3: क्योंकि मेरे परसेंटेज थे 43.5%।

0: और वो भी उसके लिए भी एक कहानी है कि हायर सेकेंडरी में जब मैं था, मैंने प्राइवेट दिया,
1: हाँ हाँ,
0: तो मैं फिजिक्स में और इंग्लिश में एक एक नंबर से सप्लीमेंट्री आ गई।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो मैं बीमार हो गया।
1: हाँ।
0: तो मेरा एक दोस्त था कुछ टाइम के बाद,
1: हाँ हाँ,
0: क्या हुआ कि फिजिक्स और इंग्लिश में जो भी 5 नंबर के अंदर से फेल हुए थे,
1: हाँ,
0: उन्हें सर का ग्रेस दे दिया गया।
1: अच्छा,
0: दोनों
1: अच्छा,
0: सब्जेक्ट में।
1: अच्छा,
0: तो मैं दोनों में एक एक नंबर से फेल था
1: जी।
0: तो मेरा एक दोस्त था कैलाश जैन, आप जानते हो
1: जी।
0: तो वो आया मेरे पास, कह रही ऐसा तो तू तो पास हो गया जी। अरे मैंने मजाक कर रही है, दिल रखने के लिए कह रहा होगा।
1: हाँ।
0: लेकिन फिर वो सही बात थी।
1: हाँ हाँ।
0: तो मैं उस तरीके से वो निकल गया, तो
1: हाँ,
0: मुझे 43.5% अब मैंने एक साल BSc किया, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ITI करते हैं।
1: हाँ।
0: तो ITI का फॉर्म डाल दिया।
1: हाँ।
0: ITI में जब एडमिशन हो रहे थे हम लोग पहुंच गए, पूरी ITI हो गई। फिर आकाशवाणी में जो सुभाष ने सुनाया, सेम कंडीशन मेरे साथ थी। तो पहले जो संडे के दिन नहीं आए, मैं आया था, तो टेक्नीशियन का था उस दिन इंटरव्यू।
1: हाँ।
0: मैंने इंटरव्यू दिया तो मोदी जी थे, उन्होंने जो भी इंटरव्यू में सवाल पूछे, कुछ बने कुछ नहीं बने।
1: हाँ।
0: एक सवाल उन्होंने और पूछा था, तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम।
1: वो सवाल याद है आपको?
0: वो सवाल उन्होंने पूछा था, ट्यूबलाइट में चोक क्यों लगाते हैं।
1: अब तो इसका जवाब पता होगा आपको।
0: हाँ, अब तो पता है,
1: तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: कुछ देर के लिए मतलब उसको छड़े हाई वोल्टेज चाहिए पड़ता है
1: जी,
0: उसके लिए। और फिर उसके बाद उसको कट करके वो स्थिर वोल्टेज करंट देता रहता है।
1: हाँ, हाँ,
0: उसके लिए। लेकिन उस टाइम नहीं मालूम था।
1: हाँ, हाँ,
0: तो मैंने कहा नहीं मालूम। उन्होंने कहा ठीक है जाइए आप। तो वो टेक्नीशियन के मैं बाहर हो गया।
1: अच्छा,
0: नहीं
1: अच्छा।
0: बना। दूसरे दिन फिर हेल्पर का भी था, उसमें भी मेरा नाम था।
1: हाँ।
0: तो मैं फिर चला गया। जब दूसरे तो उन्होंने देखा, अरे तुम कल भी आए थे। मैंने कहा जी। तो कहने लगे कल जो पूछा था उसका जवाब दो। तो मैंने बताया, मैंने पता किया तो ये बात है, इसलिए लगता है। कहने लगे ठीक है जाइए।
1: हाँ।
0: मेरा एडमिशन अब हो गया, मुझे भर्ती
1: हाँ,
0: कर दिया।
1: हाँ, हाँ।
0: तो मैं इस तरीके से।
1: अच्छा अच्छा
0: अच्छा। आकाशवाणी में प्रवेश
1: जी, जी, बहुत ही रुचिकर बातें बताई आप दोनों ने, प्रवेश की बड़ी अच्छी बात लगी। अच्छा मैम गफर भाई, ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे मशीनों से पाला पड़ता है जो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे, उन मशीनों के नाम बताएं कि माइक है और फिर क्या कैसी रेंज रहती है और जो सारी चीजें हैं कौन कौन सी होती हैं जिससे श्रोताओं तक हमारी आवाज पहुंचती है।
2: अब सबसे पहली कड़ी तो ये अपन जिसके सामने बैठे माइक है।
1: हाँ।
2: जो अपन माइक से बोलते हैं।
1: हाँ।
2: तो ये अपनी ये आवाज या साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलती है।
1: हाँ।
2: फिर वो जाके एक एम्पलीफायर होता है।
1: हाँ।
2: उसको अपने वॉइस या इलेक्ट्रिकल लेवल को एम्पलीफाई करती है, माने इस काबिल बनाती है कि एक लेवल तक उसको बूस्ट कर देती है।
1: अच्छा अच्छा।
2: उसके बाद फिर वो जो लेवल एक फिर अपन मास्टर लेवल में देके और पूरा लेवल बराबर जितना अपन को ट्रांसमीटर के इन में चाहिए। ट्रांसमीटर एक ऐसी युक्ति या सिस्टम है।
1: हाँ।
2: कि जो अपनी वॉइस को इलेक्ट्रिकल में बदल के फिर ट्रांसमीटर क्या करता है, आपके वही वॉइस कम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को।
1: हाँ।
2: ट्रांसमीटर एक RF फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है।
1: अच्छा अच्छा।
2: रेडियो फ्रिक्वेंसी जो लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं।
1: हाँ, हाँ।
2: तो उस पर सुपर इम्पोज यानी चढ़ा देती है, जैसे हाँ, कि अपन किसी बस में बैठते हैं।
1: हाँ,
2: वो अपन को बिठा के दूसरी जगह छोड़
1: बिल्कुल,
2: लेती
1: बिल्कुल।
2: है। सेम ऐसे ही इसमें रहता है कि ट्रांसमीटर हमारा अपनी वॉइस को RF पे बिठा के वो जितनी उसकी शक्ति क्षेत्र रहता है।
1: हाँ,
2: जैसे हमारे ट्रांसमीटर की प्राइमरी कवरेज इस FM की 50 है, वैसे तो फिर कुछ क्षेत्र 100-150 किलोमीटर तक चली जाती है, तो वहां तक ये ले जाता है। उसके बाद सेम फिर उल्टी प्रोसेस होती है रेडियो में हमारे।
1: अच्छा,
2: जो भी सिस्टम है।
1: हाँ, हाँ।
2: के जो मॉड्यूलेटेड वेव्स गई।
1: हाँ।
2: रेडियो ने एंटीना से रिसीव किया, फिर उसको वो अलग अलग करता है उधर।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ। RF को ऑडियो से अलग कर, फिर ऑडियो एम्पलीफायर में आती है, एम्पलीफायर से फिर सीधे स्पीकर को, और स्पीकर फिर वही काम करता है उल्टा।
1: हाँ।
2: कि हमारे इलेक्ट्रिकल वेव्स को सीधे साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता।
1: कितने सरल शब्दों में आप बता रहे हैं, हमारे श्रोता भी समझ चुके होंगे कि कितनी रुचिकर बात है आपने बता दी और बड़े आसानी से बता दी। मसूद भाई, अब आपसे जानना चाहेंगे कि लोग देखते हैं उनको ये टावर दिखता है तो वो पूछें कि भाई ये टावर का हमारी आवाज को पहुंचाने में क्या काम होता है, तो क्या काम करता है टावर?
0: हमारी आवाज को पहले रिकॉर्ड किया जाता है।
1: हाँ
0: भाई, आकाशवाणी में स्टूडियो में हमारी आवाज को रिकॉर्ड किया
1: या सीधी आवाज भी जा रही है
0: अपने ट्रांसमीटर से, जब उसको रिले कर भेजते हैं।
1: हाँ।
0: तो उसके बीच में पूरा ट्रांसमीटर आता है, उसमें एम्पलीफायर वगैरह ये सब कुछ होने के बाद।
1: हाँ।
0: आजन ने बताया।
1: हाँ।
0: तो सब होने के बाद हम उसको टावर पे देते हैं।
1: हाँ।
0: तो टावर से वो सिग्नल निकलते हैं और फिर वो हम रेडियो में उसको कैच करते हैं
1: जी।
0: तो वो पूरा

0: भाईजान ने भी पूरा सवाल आपको डिटेल में बता ही दिया है कि कैसा होता है।
1: तकनीकी बातें तो होती रहेंगी, साथ में अब हम ये जानना चाहेंगे कि मसूद भाई आप अब निवास कहाँ करने लगे हैं और आपके जीवन कैसे बीत रहा है सेवानिवृत्ति के बाद, और आकाशवाणी में आपने इतने सालों तक काम किया तो कौन कौन सी यादें आपको घर पे बैठे बैठे याद आती हैं?
0: देखिए, मैंने आकाशवाणी में करीब करीब 37 साल काम किया है और अभी मैं 2024 जून में रिटायर हो गया हूँ।
1: हाँ,
0: रिटायर होने के बाद ठीक है, अच्छा चल रहा है। मैं रिटायर होने के बाद हज पे गया, हज करके आया हूँ, फिर उसके बाद से मैं भोपाल में शिफ्ट हो गया हूँ।
1: अच्छा अच्छा।
0: और भोपाल में करवत पे मैंने मकान बना लिया है, बहुत अच्छे से कट रहा है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात आकाशवाणी में, जो हमने 37 साल काटे इसके दौरान जो भी हमारे साथ हुआ है, तो बहुत अच्छा वक्त कटा है हमारा। कभी ऐसी कोई बात नहीं रही है कि किसी से कोई विवाद हुआ है, कुछ भी बात हुई हो। लेकिन हाँ, जब भी किसी अधिकारी ने कोई काम दिया है, अगर आपकी टीम के साथ अच्छा तालमेल है, तो कोई सा भी काम आपको मिल जाए, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, लेकिन आपकी टीम अगर आपके साथ अच्छी है तो आप हर काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो।
1: क्या बात है, आपने कितनी बड़ी बात बताई कि श्रोता भी ये जानना चाहते होंगे कि ये आवाज जो पहुंचती है तो केवल आवाज ही, जो अनाउंसर या कंपेयर सामने बैठा हुआ केवल उसी की आवाज आती है, तो आपने बताया कि ये सारा काम टीम वर्क होता है।
0: टीम वर्क,
1: एक टीम होती है इस पूरे एक कार्यक्रम के पीछे, एक अनाउंसमेंट के पीछे। उस टीम में कौन कौन लोग होते हैं गफर भाई, बताएं थोड़ा सा।
2: टीम में तो इंजीनियर्स टीम होती है, जिसमें टेक्नीशियन से लेके इंजीनियर सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन और भी कई सिस्टम रहते हैं, जहाँ कैपिटल्स वगैरह होते हैं, जैसे दिल्ली, भोपाल या भी रात, तो वहाँ अपलिंक स्टेशन भी होता है, जो प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो वो लोकल के लिए ट्रांसमीटर के द्वारा रेडिएट कर दिया जाता है, जो लोकल के श्रोता सुन लेते हैं। लेकिन अगर आपको काफी दूर ले जाना है, ऑल इंडिया भेजना है, तो उस प्रोग्राम को फिर हम एक सैटेलाइट को भेजते हैं। अपलिंक एक सिस्टम होता है, डिस्क होती है, जो सैटेलाइट को सिग्नल भेजती है, और फिर वो सैटेलाइट, एक सैटेलाइट कम से कम 33 अर्थ को कवर कर लेता
1: अच्छा,
2: है
1: अच्छा।
2: पूरे ग्लोब को कवर करने के लिए कम से कम हमें 3 सैटेलाइट चाहिए पड़ते हैं। तो अपना काम चल ही जाता, कि इंडिया तो कवर हो ही जाता जहाँ, तो इस तरह ये और बहुत सिस्टम रहते हैं। अब तो और नए नए सिस्टम आ गए, जो हम नेट के थ्रू भी, ऐप के थ्रू भी, पूरे वर्ल्ड में सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सागर आकाशवाणी सुनी जाती है,
2: पूरे वर्ल्ड में सुनी जाती है, तो वो ऐप के माध्यम से।
1: और ऐप का नाम भी हम श्रोताओं को बता दें, News on AIR। श्रोताओं, इस ऐप को आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे तो आपको अपने घर की याद नहीं सताएगी, क्योंकि सागर आकाशवाणी हमेशा आपके साथ रहेगी।
0: मसूद भाई, लद्दाख में भी सुनी जा
1: रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मसूद भाई, मैं ये बताएं कि जब भी कोई VIP मेहमान आते हैं हमारे शहर के बाहर आसपास, तो एक OB टीम तैयार होती है, रेडियो रिपोर्ट बनती है, तो वो OB टीम होती है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं कार्यक्रम और तकनीकी विभाग से, और उसका काम क्या होता है?
0: जब OB की रिकॉर्डिंग का कोई आता है, कोई VIP आया, तो हमें उसकी OB की रिकॉर्डिंग करने जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो उसकी तैयारी हमें ये करना है कि हमें पूरी अपने इक्विपमेंट वगैरह सब टेस्ट करना है, सबको अच्छे से तैयार करके रखना है, रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए। अब हमारी टीम रहती है उसमें भी, भाई प्रोग्राम से एक अधिकारी रहेगा, इंजीनियर से एक रहेगा, और एक आध दो और सपोर्ट के लिए रखते हैं।
1: अच्छा,
0: फिर उसमें माइक टेस्ट और अपने लैपटॉप में भी रिकॉर्डिंग करना, उनकी टेस्टिंग, सबकी टेस्टिंग करना है, केबल वगैरह सब चेक करके, फिर हमें उसको तैयार करके लेके जाना पड़ता है। जहाँ रिकॉर्डिंग है वहाँ उसका पूरा सिस्टम जमाना पड़ेगा, उसके बाद हमारी रिकॉर्डिंग होगी।
2: इक्विपमेंट में हमारे कम से कम 2 से 3 माइक रहते थे, और मिक्सर भी होता था, और पहले सबसे स्टार्टिंग में एक UPTR होता था, जिसमें स्पूल,
1: स्पूल वाला
2: स्टार्टिंग उससे हुई। फिर धीरे धीरे जैसे समय बदला तो छोटे छोटे रिकॉर्डर, डिजिटल रिकॉर्डर, आजकल तो डिजिटल रिकॉर्डर भी आ गए हैं, और उस समय कैसेट रिकॉर्डर भी होते थे, तो ये सारा हम लोग लेके जाते थे। एक समय की बड़ी मजेदार घटना, रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग खेल परिसर में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हुए, तो उनकी रिकॉर्डिंग को मैं गया हुआ था। तो हम लोग संयुक्त टीम, भोपाल से दूरदर्शन टीम आती थी, तो साथ में मिलकर ही रिकॉर्डिंग करते थे। तो वो रिकॉर्डिंग हुई सबकी, लेकिन क्या हुआ, जब कोई भी VIP आता है तो उनके साथ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं के क्या बोलते हो, जैमर टाइप, जैमर हाँ, बोलते हैं उसको, कि जब वो ऑन करते हैं तो वो आपकी रिकॉर्डिंग को प्रभावित करते हैं, तो उसमें विसलिंग वगैरह ऐड हो गई, सारे दूरदर्शन वाले के भी हाथ पैर फूल गए कि अब क्या करें, हमारे भी सारे रिकॉर्डिंग में वो
1: विसलिंग आ गई।

0: फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर
1: डिस्टर्ब कर। तो अब वो क्या हुआ, लेकिन एक छोटा रिकॉर्डर था मेरे पास
0: जी,
1: कैसेट रिकॉर्डर।
0: अच्छा अच्छा।
1: वो भी मैं ऐसे बैकअप के लिए रखता था।
0: हाँ हाँ।
1: तो किस्मत से उसमें वो बिसलिंग रिकॉर्ड नहीं हुई।
0: क्या बात
1: है। तो उसी से फिर सारी प्रोग्राम बने, वो ही ऑडियो फिर
0: दूरदर्शन
1: भोपाल को भी दी।
0: अरे वाह।
1: तो इस तरह ऐसे कई, अब हाँ, वो तो बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, कई घंटे निकल जाएंगे।
0: अच्छा मसूद भाई, जब लगातार प्रसारण चलता रहता है, हमारे स्टूडियो से हमारे श्रोता रूबरू होते रहते हैं अपने रेडियो के माध्यम से, फिर इन सारी मशीनों को इनका मेंटेनेंस कैसे होता है, कब होता है?
2: नहीं, ठंडा करने के लिए तो ये है कि 24 घंटे और जितनी देर प्रसारण चलता है
0: हाँ,
2: उतने टाइम एसी लगे हुए है, फुल कूलिंग रहती है।
0: हाँ,
2: 24 डिग्री से 22 डिग्री से ज्यादा हम लोग टेम्परेचर नहीं जाने देते।
0: हाँ,
2: इसके लिए हम लोगों का मेंटेनेंस तो चलता है।
0: हाँ,
2: एसी का अलग मेंटेनेंस
0: बिल्कुल,
2: होता
0: बिल्कुल,
2: है।
0: बिल्कुल।
2: अब रही बात कभी कभी ट्रांसमीटर का मेंटेनेंस करना पड़ता है।
0: हाँ, हाँ।
2: अब ट्रांसमीटर तो चूंकि पूरा चलता है, सुबह से चालू हुआ तो 11 बजे
0: हाँ,
2: रात ही बंद हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो फिर हम लोगों की रात में ड्यूटी लगती है शिफ्ट में।
0: अच्छा अच्छा।
2: 3-4 लोग आते हैं सब लोग, फिर पूरा ट्रांसमीटर खोलेंगे, उसकी पूरी मेंटेनेंस सफाई वगैरह सब कुछ होता है। तो उसमें कभी कभी, अब जैसे एक बार हम लोगों ने मेंटेनेंस किया, एक केबल पता नहीं कहाँ की काट दी। अब पूरा में सब करने के बाद जब चालू कर रहा तो चालू ही नहीं हो रहा है।
0: हाँ हाँ।
2: 3:30 बजे जब जाके देखिए यार, एक केबल जो काट दी थी इसको देखो जरा, जबकि पूरा मेंटेनेंस हर चीज का बहुत बढ़िया हो चुका है।
0: हाँ हाँ।
2: लेकिन वो केबल कट गई थी। फिर उसको देखा, अरे यार ये कट गई, उसको फटाफट जोड़ा, कनेक्ट किया और फिर उसके बाद चालू किया। जब जान में जान आई कि हाँ भैया चालू चालू से प्रसारण जा पाएगा। मेंटेनेंस हम लोगों का पूरी रात चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजे से हम लोगों का मेंटेनेंस होता है।
0: हाँ।
2: टाइम पास भी अच्छा होता है।
0: आकाशवाणी निरंतर अपनी टीम के साथ आप तक उत्तम गुणवत्ता के साथ प्रसारण पहुंचाती रहती है, और आपका प्यार हम तक चिट्ठियों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन कॉल्स के माध्यम से मिलता रहता है। जो श्रोता पहले खतों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से अपनी फरमाइशें सुनते थे, आजकल तो बड़े मजे के साथ फोन उठाते हैं, मोबाइल कहीं भी रहें, किसी भी गांव में रहें, और नंबर घुमाते हैं और सीधे फोन इन पर उनकी फरमाइश आ जाती है, उनके सवाल रख दिए जाते हैं। तो ये कैसे काम करता है फोन इन?
1: ये ऐसे, इसके पीछे एक और मजेदार किस्सा है। पहले तो केवल दिल्ली मुंबई बड़े केंद्रों में ही फोनिंग प्रोग्राम चलते थे, और बाकी इंडिया में शायद कहीं भी नहीं होते थे।
0: हाँ हाँ।
1: तो स्टार्टिंग का समय था, तो हमारे स्टेशन इंजीनियर अजय कुमार श्रीवास्तव साहब थे
0: जी,
1: और मोस्ट सीनियर डायरेक्टर प्रोग्राम गुहा साहब थे।
0: हाँ।
1: बहुत अच्छे,
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: तो उन लोगों ने कहा कि फोनिंग प्रोग्राम शुरू करना है, ये कुछ हो सकता है क्या, मेरे से डिस्कस किया।
0: अच्छा,
1: मैंने कहा कोशिश करके देख लेते हैं।
0: हाँ।
1: तो एक ऐसा ही जैसे ये फोन रखा है।
0: हाँ।
1: इसमें कुछ मैंने टेक्निकल वो लगा के
0: हाँ,
1: वो सिस्टम बना दिया
0: उस टाइम पे, यानी जुगाड़ किया।
1: जुगाड़ किया।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो वो ऐसा ही रखा रहा, वो रिकॉर्डिंग करके दिखा दी, लेकिन गुहा साहब ने देखा, कह रही ये तो फोन रखा, अरे यार ये मजा, रिकॉर्डिंग सब बाकायदा सब सही हुई।
0: हाँ।
1: लेकिन उनको फोन देख के कुछ अच्छा नहीं लगा।
0: हाँ।
1: तो उन्होंने उसका कहा, नहीं नहीं नहीं ये नहीं चलेगा।
0: हाँ।
1: तो फिर क्या हुआ कि फिर ऐसी साहब जो थे हमारे श्रीवास्तव साहब, बाकी ने मेरे से बोले, बोले यार ऐसा कुछ करो कि ये दिखे ना।
0: हाँ।
1: वो भी हो जाएगा।
0: हाँ।
1: तो फिर मैंने इसको एक डब्बे में बंद कर दिया, केवल तार निकल गया। फिर जब उनने वो डब्बा अब्बा देखा, बोले हाँ ये ठीक है। इसके बाद वो रिकॉर्डिंग शुरू हुई।
0: हाँ।
1: कई साल तक उससे रिकॉर्डिंग चली फोनिंग प्रोग्राम की, और भी कई प्रोग्राम चलते थे
0: जी, जी, जी।
1: स्टार्टिंग एक चौपाल वाले में भी किया
0: किसान था। बाड़ी में। हाँ।
1: हाँ, उसमें भी कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ
0: हाँ,
1: के
0: हाँ।
1: और ये फोनिंग के भी फिर शुरू हो गए। कई साल चला, फिर वो डिजिटल सिस्टम आ गया, फोनिंग कंसोल आ गया, तो वो चला, तो ऐसे फिर शुरुआत हो गई। तो हम लोग आकाशवाणी सागर कई मामलों में दिल्ली मुंबई की बराबरी पे चलते
0: क्या
1: रहे।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया।
1: और जैसे सीडी भी हम लोगों ने
0: हाँ।
1: सबसे पहले शुरुआत की थी, लोकल मार्केट से परचेस करके फिलिप्स के।
0: अच्छा,
1: सीडी
0: अच्छा।
1: लगा के, और सीडी की भी शुरुआत गानों में कर दी थी।
0: हाँ।
1: फिर
0: यानी समय के साथ साथ खूब मेहनत करते
1: आगे ही चले हम लोग। सागर आगे ही चला हम लोग।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्योंकि श्रीवास्तव साहब की सोच बहुत बढ़िया थी इस मामले में, हर नई नई चीजों के लिए वो सबसे पहले आगे रहे। उसके बाद फिर धीरे धीरे हार्ड डिस्क बेस्ड माने कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम शुरू हो गए।
0: हाँ,
1: वो आज तक चल रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये सब श्रीवास्तव साहब की देन है।
0: हाँ,
1: सही हो हम लोगों का
0: सागर आकाशवाणी।
1: हाँ,
0: में जी।
1: तो इस तरह ये सागर आकाशवाणी हर कदम पे अपने आप को बड़े बड़े केंद्रों के टक्कर टक्कर में खड़ी रही।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने।
2: तो ये पीएम 100 ओम 100 वाट का रेजिस्टेंस लगता था।

0: है ना, तो वो एक रेजिस्टेंस जो था वो टूट गया, पूरी जड़ से टूट गया। अब वो आ गया मेरे पास कि इसको आपको जुड़ के देना है। अरे यार, मैंने कहा इसमें गुंजाइश ही नहीं है जुड़ने की, कह लगे नहीं जोड़ो इसको। तो मैंने बहुत कोशिश कर करा के उसको लगा के जैसे तैसे जोड़ के कंटिन्यूटी चेक करके फिर मैंने रेल डाइट लगा दिया।
1: हाँ।
0: तो रहा 100 ओम।
1: हाँ हाँ।
0: दूसरे दिन वो सुबह से आ गए चेक करने और उनने पहले नंबर वो उठाया, चेक किया, हाँ है, और उसे ऐसे ऐसे हिलाया, अब तो एयर डाइट चिपक रहा था, थाई में निकल गया कि फिर से देगा, फिर जुड़ो। मैंने पूरे इंजीनियर हमारे साथ में जितने थे हमने सबको कहा भैया अब जी बताओ जुड़ने लायक है कि नहीं है। फिर सब गए गुलाटी के पास के साहब ये नहीं जुड़ेगा, अब इसकी कोई कंडीशन ही नहीं बची है, इसमें गुंजाइश ही नहीं है। फिर जाके वो माने, जब उनने मेरा पीछे छोड़ा मेरे पीछे पड़े थे कि इसको जोड़ो।
1: तो श्रोताओं, आज आपको ऐसी बहुत सारी बातों से परिचित और रूबरू होने का मौका मिला जो आप पर्दे के पीछे चलती रहती हैं आकाशवाणी में। और सागर आकाशवाणी से सेवानिवृत्त दो हमारे साथी गफ्फार खान और मसूद खान, ये दोनों हमारे साथ मौजूद रहे और हम इन दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। आप लोग खूब स्वस्थ रहें और अच्छा लंबा और मज़ेदार जीवन गुजारें। आप दोनों हमारे स्टूडियो आए, आपने अपना समय निकाला, आप दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: हम भी बहुत आभारी रहेंगे कि आपने इस लायक समझा हम लोगों को और बुलाया। मसूद भाई तो खैर भोपाल से आए, मैं तो लोकल में ही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए बुलाया इसके लिए आभार, धन्यवाद, और हमेशा आभारी रहेंगे। तो एक बार फिर आभार व्यक्त करते हैं आपका, डिपार्टमेंट का, सभी साथियों का,
0: बहुत बहुत
2: नमस्कार।
1: बहुत बहुत नमस्कार।
3: सुनहरी यादें, आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर ये विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:15 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए भेंट वार्ता। विषय है पर्यावरण संरक्षण, चुनौतियां और समाधान। इस भेंट वार्ता में हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अमित कुमार, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं पर्यावरण विज्ञान विभाग डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। इनसे भेंट की है दीपक निषाद ने।
4: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद, और एक बेहद खास विषय हमने आज इस भेंट वार्ता में चर्चा के लिए रखा हुआ है। 5 जून को प्रतिवर्ष हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और ये दिवस पृथ्वी के प्रति, प्रकृति के प्रति हमारे सामूहिक चेतना, सामूहिक दायित्व का बोध कराता है। आज हमारे समक्ष पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी चुनौतियां हैं, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, पर्यावरण प्रदूषण, और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों के ऊपर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए एक बेहद खास मेहमान को हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया हुआ है। आप हैं डॉक्टर अमित कुमार जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पर्यावरण विज्ञान विभाग डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी सागर, उसकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने विचार साझा करने के लिए। आकाशवाणी जो अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर एक मंच प्रदान करता है जिससे समाज जागरूक होता है, तो धन्यवाद आकाशवाणी
4: जी। डॉक्टर साहब, हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे, और जैसा कि हमने अपने आरंभिक बातचीत में संबोधन में ये बातें कही कि पर्यावरण संबंधी बहुत सारी चुनौतियां हमारे समक्ष हैं, तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझना चाहेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस एक अलग से दिन मनाया जाता है, एक अलग से दिवस इसके लिए रखा गया है, तो इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी भूमिका क्या है, और ये क्यों मनाया जाना आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है।
5: जो विश्व पर्यावरण दिवस है तो यह इसकी 54वीं वर्षगांठ है, और यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार पर्यावरण को संरक्षण और संतुलित बनाए रखने के लिए एक वैश्विक विश्व के स्तर पर, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, यह पहल शुरू की। और इसमें विश्व भर के हर कंट्रीज, हर देशों को ला करके एक पटल पर लाया गया, और ये देखा गया कि कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो वहां से वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की शुरुआत हुई, 5 जून को यह दिवस मनाया जाता है,
4: और प्रतिवर्ष इसकी एक थीम भी होती है। इसकी एक थीम के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इस बार का थीम क्या है, और क्यों इस थीम को इस बार चर्चा के लिए रखा गया है?
5: इस बार का जो थीम है वो क्लाइमेट एक्शन है, और इस बार जो कंट्री, जो देश मेजबानी कर रहा है, उस देश का नाम है अजरबैजान, और अजरबैजान की राजधानी बाकू में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और वहां पे क्लाइमेट एक्शन को देख करके अलग अलग देशों के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां पर आकर के इस बात पर चर्चा करेंगे कि अब हम लोगों ने बहुत कार्य कर लिए, लेकिन अब एक्शन करने की बारी है और हमारी जिम्मेदारी है।

0: सभी देशों को एक साथ आना होगा, सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना होगा, जितने भी एकेडमिशियंस हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने इंडस्ट्रीज के लोग हैं, जितने पॉलिसी मेकर्स हैं, हर लोगों को एक साथ एक पटल पर आकर के हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करना होगा।
1: सामूहिक जो है आह्वान है और नीति से आगे बढ़ करके ये एक्शन की बारी है, कार्यान्वयन की बारी है। तो डॉक्टर साहब, हम ये समझना चाहेंगे कि आजकल पर्यावरण की बहुत बात हो रही है और एक हमेशा एक विमर्श के केंद्र में रहता है पर्यावरण, क्या चुनौतियां आप देखते हैं आज के दिन की पर्यावरण के समक्ष, क्या क्या मुख्य चुनौतियां हैं?
0: सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि पर्यावरण को बचाने की जरूरत क्यों है। तो मानव के स्वास्थ्य को बचाने के लिए, किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए या फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ना है तो पर्यावरण को अगर हम लोग संतुलित नहीं रखेंगे तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। विगत कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि समूचा जो विश्व है वो अलग अलग पर्यावरण की चुनौतियों से जूझ रहा है, जैसा कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वाटर की स्कर्सिटी, वाटर की कमी होना, जल के स्तर में जो जमीन के भीतर या उसको ग्राउंड वाटर की जो डिप्लेशन की बात करती है उसमें कमी आ जाना, फॉरेस्ट फायर, वेस्ट जनरेशन, आज के समय में वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स जैसे फॉरेस्ट फायर्स हो गए, फ्लड्स हो गए, सूखा हो गया, माउंटेनस एरिया में लैंडस्लाइड्स हो गए, तो ये सारे जो इन्वायरमेंट के जो चुनौतियाँ हैं हमारा पूरा विश्व इसको अभी फेस कर रहा है। तो इन सारी चुनौतियों को एड्रेस करने के लिए हम सबको सामुदायिक भागीदारी करनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल लेवल पे इसके रोकथाम के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
1: यदि हम सामान्य शब्दों में अपने श्रोताओं को समझाना चाहें कि हम परिवर्तन की बात करते हैं या जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो उससे क्या आशय है? आखिर जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसमें मानव का हस्तक्षेप कहाँ है?
0: अगर इसको देखें तो जब से धरती बनी तब से ग्रीन हाउस गैस तो था, लेकिन जब से मानव आया, जब से आग का आविष्कार हुआ और जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तब से जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो उसका अमाउंट है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज के डेट में हम देखें तो कंज्यूमरिज्म जो है, उपभोक्तावाद जो है, जो इंडस्ट्रीज से जो एमिशंस हैं, जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स है, हमारे जो दिनचर्या है इसमें हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं जो पर्यावरण को दूषित करने में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान देती हैं। तो मानव पिछले कुछ समय से अपने अलग अलग गतिविधियों से, अपने अलग अलग कार्यों से पूरे पर्यावरण को कहीं ना कहीं दूषित कर रहा है। अपनी अनावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए वो पर्यावरण को ही अनदेखी कर रहा है, यह मानव से एक प्रकार से गलती हो रही है।
1: कहीं ना कहीं मानव द्वारा कुछ कारित किए गए कार्य हैं जिससे पर्यावरण में आज ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है या विद्रूप रूप एक पर्यावरण का सामने आ रहा है और जो हमें आए दिन देखने को मिल रहा है, हम कहीं ना कहीं उसके बहुत नज़दीक पर्यावरण प्रदूषण है या पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं, बहुत नज़दीक से उसको देख पा रहे हैं। गर्मी बढ़ रही है और पूरे विश्व में ये परिवर्तन देखा गया है। समस्या तो हमारे समक्ष है, समाधान के स्तर पर यदि बातचीत की जाए तो यूनाइटेड नेशंस के अलावा भारत सरकार की यदि हम बात करें तो क्या क्या पहल अभी तक की गई है?
0: अगर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात करें तो अपने अपने स्तर पर दोनों सरकारों ने अच्छा योगदान कर रही हैं। अगर मैं केंद्र सरकार की इनिशिएटिव्स की बात करूं तो मिशन लाइफ, जल जीवन मिशन, एक पेड़ माँ के नाम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और नमामि गंगे जैसे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हमारे पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए की जा रही हैं। मिशन लाइफ उसमें सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा इस चीज़ को किया गया है। उनका यही कहना है कि पूरे समाज की भागीदारी हो पर्यावरण को बचाने के लिए,
1: पूरे समाज की भागीदारी हो पर्यावरण को बचाने के लिए। इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स की बात की जाए, हम युवाओं की बात कर लें, विद्यार्थियों की बात कर लें या समुदाय एज अ होल समुदाय की बात कर लें, अपनी भूमिका इस पर्यावरण संरक्षण के दिशा में कैसे दर्ज करा सकता है, कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है?
0: इस पे मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमारे पास एक ही धरती है, हमारे पास कोई ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम अपनी लाइफ को रख सकते हैं। सो इसमें हमारे यूथ बहुत अहम योगदान दे सकते हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि यूथ जो है पूरे भारत में लगभग 65% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है और यह वह कम्युनिटी है, समुदाय है, जो आने वाली जेनरेशन को उसके बारे में समझा सकती है, बता सकती है कि पर्यावरण को हमें आगे कैसे अच्छा बेहतर बना करके रखना है। स्टूडेंट जो है अपने परिवार में जा करके अपने माता पिता अपनी फैमिली मेंबर्स को भी ये बात कन्वे कर सकते हैं कि आज जब वो क्लासरूम में पढ़ के जाते हैं कोई चीज़ पर्यावरण के बारे में, तो वो चीज़ अपने माता पिता या अपने परिवार के हर लोग के साथ शेयर कर सकते हैं।

0: कि किस तरीके से हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं।
1: सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हमेशा होती है, संवहनी विकास जिसे हम बोलते हैं, संवहनी विकास से क्या आशय है, क्यों हम भावी पीढ़ियों को एक हरी भरी वसुंधरा सौंपने की बात करते हैं?
0: एजेंडा 21 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई और ऐसे फ्यूचर की बात की गई कि इस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए आने वाले समय में कि जो कि सोशली एक्सेप्टेबल, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली वायबल हो, और इस तरीके से एनर्जी रिसोर्सेज को यूज किया जाए जिससे कि आने वाले जनरेशन को भी वो मिल सके। हमारी जो पूरी व्यवस्था है उसमें हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं, तो हम एनर्जी रिसोर्सेज का जो उपयोग है इस स्तर पे ना करें, बहुत तेज गति से ना करें कि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, आने वाली जनरेशन भी उस एनर्जी रिसोर्सेज को देख पाए।
1: पृथ्वी के पास जो संसाधन है वो सीमित हैं और वो संसाधन आज ही नष्ट ना हो जाए, आने वाली भावी पीढ़ियों को भी वो हम वैसे ही सौंप सकें, उसी रूप में सौंप सकें, यही जो है संवहनी विकास का मुख्य उद्देश्य है। और एक चीज़ और डॉक्टर साहब आपसे हम समझना चाहेंगे, चूंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए आपका बहुत वृहद स्तर पर काम है और हम ये देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन लगातार हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जिसकी हम बात करते हैं, पैटर्न परिवर्तन हमें देखने को मिला है और इससे जो हमारा फसल चक्र है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, क्या कारण है कि हमारा मौसम का जो चक्र है बिगड़ गया है, इसके पीछे क्या वजह रही है?
0: अगर हम वेदर की बात करें तो कोई भी वेदर है बहुत सारे मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या आर्द्रता, जो हमारे पर्यावरण में आर्द्रता होती है या तापमान होता है, क्लाउड कवर, बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण इन सब सारे पैरामीटर्स में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं और जैसे ही इनमें बदलाव होता है जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जिसको हम लोग जल चक्र कहते हैं, हमारे पर्यावरण में जो होता है प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, उस जल चक्रण में बदलाव होने लगता है, तो जल चक्रण में बदलाव के कारण सबसे ज़्यादा हमारे जो इरेटिक रेनफॉल की बात करते हैं कि इसके कारण इरेटिक रेनफॉल जो पैटर्न, जो लगातार एक लंबे समय तक बारिश हो रही होती है, आज की डेट में देखा जाए तो फ्लैश फ्लड, अचानक से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसको हम लोग फ्लैश फ्लड कहते हैं कि अचानक से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई, एक्चुअली में वो बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। तो अलग अलग जो मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स में बदलाव हो रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण अभी ये स्थिति उत्पन्न हो रही है।
1: खासकर यदि हम सागर की अब बात करना चाहें, सागर के दृष्टिकोण से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे हैं, जो पर्यावरणीय स्थिति है, बहुत विशिष्ट पर्यावरणीय स्थिति सागर की कही जाती है, सागर के ये जो पूरे क्लाइमेट जोन है इसको बचाए रखने के लिए सागर वासियों द्वारा क्या योगदान दे सकते हैं?
0: सागर की जो धरती है वो सर डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब की धरती है। सागर के बारे में मैं कहूँ तो इसकी एक बहुत ही यूनिक ज्योग्राफी है। सागर में एक लेक से जिसको लाखा बंजारा लेक के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे बहुत ही ग्रीन सराउंडिंग्स है, बहुत अच्छा एक हरा भरा क्षेत्र है और एक नेचुरल हेरिटेज आप देखें आसपास के एरिया में तो बहुत नेचुरल प्राकृतिक हेरिटेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से सागर जैसे एरिया को और जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे एरिया को रिस्टोर करे, जिस कंडीशंस में है उसी कंडीशन में ये बनी रहे। मगर जैसा कि जलवायु परिवर्तन जो समस्या है इसके कारण सागर भी अछूता नहीं रहा है। विगत कुछ वर्षों में ये पाया गया कि सागर में भी ये जो वर्षा के जो पैटर्न में बदलाव हुआ है, गर्मी के दिनों में हीट वेव्स के दिनों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है
1: कम हुआ,
0: वो काफी ज्यादा कम हुआ है। ये सच बात है, सागर की जो हवा है दूसरे महानगरों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मगर ये एक गलतफहमी जरूर है लोगों के बीच में कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सपोजर है, अगर व्हीकल से, अगर वाहनों से निकलने वाला धुआं जो है, या खुले में आग जलाने का जो धुआं है, या फिर सफाई कर्मचारी जो झाड़ू लगाते हैं, पेशेवर जो काम करने वाले, रोड साइड्स पे जो डस्ट है उसके कारण काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। तो एयर पोल्यूशन यहाँ पे है, एक्सपोजर है कंटिन्यूअस, अगर मिनिमम, अगर आप मिनिमम अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट से भी अगर एक्सपोज्ड होते हैं तो आपके हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो ये सागर में हवा अच्छी है मगर हवा को और बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा गया है कि यहाँ की भी एयर क्वालिटी काफी ज्यादा खराब रही है ठंड के दिनों में। और वेस्ट मैनेजमेंट को अगर देखें तो सागर में वेस्ट मैनेजमेंट भी एक समस्या है। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस सागर के लोगों में डेवलप की गई है कि कम से कम सागर के लोग अपने कूड़े को, कचरे को गाड़ी आती है और उसमें वो डाल देते हैं,
1: डोर टू डोर,
0: डोर टू डोर, दैट इज वेरी गुड। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव इस चीज को किया है। फिर भी सागर के वासियों से एक आह्वान करना चाहता हूं,

0: घर में जब वो कचरा रखते हैं तो गीले और सूखे कचरे को बिल्कुल अलग करके रखें, क्योंकि जो भी वेस्ट सेग्रीगेटर हैं, जो वेस्ट को अलग करने वाले लोग हैं, जो गीले और सूखे कचरे को अलग करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। घर के टूटे हुए कांच अगर आपके पास हो, या लोहे की कोई वस्तु अगर आप फेंक रहे हो, या बैटरी हो, या आपके पास कुछ ऐसी मेडिसिन हो अगर आप फेंक रहे हो, तो जरूर उसको एक कागज में, एक पेपर में लपेट करके एक क्रॉस का निशान लगा दें, ताकि जो भी उसको सेग्रीगेट कर रहा हो, जहां पे उसको चुनने वाले, बिनने वाले जो हमारे भाई लोग काम करते रहते हैं, उनको उसका एक्सपोजर कम हो सके। तो ये मैं आह्वान करना चाहता हूं, और मुझे पता है कि सागर वाले जब मेरी बात सुन रहे होंगे तो इस पे जरूर अमल करेंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं उस पृथ्वी को साफ रखना, उसको संरक्षित करना और उसको उसी रूप में आने वाली पीढ़ी को सौंपना, ये हमारा सामूहिक दायित्व है। उसके साथ साथ जिस हवा में हम सांस लेते हैं उस हवा को भी साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है, और जिस पानी को हम पीते हैं भूजल स्तर को बनाए रखना उसको भी साफ और स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है, और प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को हम कम करें ये भी हमारी सामूहिक दायित्व का बोध होना चाहिए हमें, और संवहनी विकास सबके लिए बेहतर है ये भी हमें समझना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर अमित कुमार जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पर्यावरण विज्ञान विभाग डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में। आप विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर आएँ और तमाम चुनौतियां हमारे समक्ष जो हैं पर्यावरण संबंधी उसके बारे में बहुत ही विस्तार से बातचीत की, हमारे श्रोताओं को जागरूक किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: धन्यवाद दीपक जी।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था पर्यावरण संरक्षण, चुनौतियां और समाधान। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए सदाबहार फिल्मी नगमे। कार्यक्रम सदाबहार गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है, और आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं हेमलता और यशुदास की आवाज़ों में रविंद्र जैन का संगीतबद्ध और लिखा हुआ गीत, फिल्म का नाम राधा और सीता।

0: अब तीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% GST लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: कार्यक्रम सदाबहार गीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं यसुदास की आवाज में रविंद्र जैन साहब का लिखा हुआ और संगीतबद्ध किया हुआ गीत। फिल्म का नाम है सुनैना।

0: सुनना फिल्म से अभी आपने गीत सुना और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार गीत अब यहीं संपन्न होता है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।

0: सदाबहार फिल्मी नगमों का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जयंत विश्वकर्मा का गाया ये बुंदेली गीत।
1: धन्य धन्य है हमारे

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कार्यक्रम लोकरंग में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। और आइए इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं महेश प्रसाद अहिरवार का गाया ये बुंदेली गीत।

महेश प्रसाद अहिरवार का गाया ये बुंदेली गीत अभी आपने सुना, और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं रामजी सिंह और राघव सिंह का गाया ये कृषि गीत।

रामजी सिंह और राघव सिंह के गाए इस बुंदेली गीत के साथ ही कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन बेहतर होगा। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से जबरन कब्जा कर रखा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% रहने का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत

0: को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मेगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आज के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में सभी श्रोताओं का स्वागत है। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। लोकरंग बुंदेली गीतों का ये कार्यक्रम सुनेगा शाम 7:20 पर, और शाम 7:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश। रात्रि 8:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम का प्रसारण, जिसका विषय होगा महिला सशक्तिकरण। रात्रि 8:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी, और रात्रि 9:00 आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। हमारी कल की सभा में 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ सुनेगा 6:30 पर। 6:40 पर आप कार्यक्रम फूले बिसरे गीत में गुजरे जमाने के खूबसूरत तरानों का लुत्फ उठाएंगे, और 6:55 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:00 आप सुनेंगे हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। 7:20 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। 7:45 पर समाचार संध्या, माफ कीजिए कार्यक्रम संगीत सरिता आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से। 8:00 समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, और 8:15 पर आप सुनेंगे बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। चित्रपट संगीत फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर। 10:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी बुंदेली गीतों का कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत, और 10:30 पर सुनेगा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का मन पसंद कार्यक्रम युववाणी, और 5:30 पर सुनेगा कार्यक्रम संगीत सरिता। शाम 6:00 हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और 6:15 पर सुनेगा कार्यक्रम संगीत सरिता। 6:30 पर सदाबहार फिल्मी नगमे सुनेगा हमारे स्टूडियो से। कल 7:20 पर आप सुनेंगे कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। कल रात्रि 8:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम का प्रसारण, जिसका विषय होगा युवा शक्ति। और कल रात्रि 9:00 आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, और रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा का समापन होगा। तो ये थी जानकारी आज और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:10 होने वाले हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरगन ने आकाशवाणी परिसर में पौधा लगाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ। और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर सूरत पहुंचे श्री मोदी ने कहा कि गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा में कई साल पहले ही बड़े कदम उठा लिए थे और देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क भी यहीं के पाटन जिले में लगाया गया था।
1: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारण का गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
0: सूरत के बाद श्री मोदी दमन भी जाएंगे, जहां करीब 2,970 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य और विमानन क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा वे लक्षद्वीप के लिए कई अहम समुद्री परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। इस लेख में श्री यादव ने पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जनभागीदारी की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरगन ने नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्यस्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्यस्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। डॉक्टर यादव ने भोपाल स्थित अपेक्स बैंक परिसर में हरित सहकार अभियान की भी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कोलारस की चीनी फैक्ट्री को दोबारा चालू करने और किसानों को एमएसपी से अधिक दाम दिलाने का ऐलान भी किया।
2: हॉर्टिकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री और बाकी लोग भी सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं। ऐसे में जब हमारी सरकार आगे बढ़ रही तो कोलारस में शकर की फैक्ट्री क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगी और चलेगी भी सही, एक नहीं दो दो लगाएंगे। आप गन्ना भी लगाओ और अब तो पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से उधर का क्षेत्र और हरा भरा होने वाला है। लगातार हमारी सरकार किसान समृद्धि के लिए काम कर रही है।
0: वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में माचना नदी के घाट पर पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो झाबुआ में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में वन विभाग परिसर में वृहद पौधरोपण किया गया। वहीं बुरहानपुर के शाहपुर में नगर परिषद ने 2,000 से अधिक पौधे लगाए, जबकि रायसेन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। नीमच में विधायक दिलीप सिंह परिहार ने ग्रामीणों से खेतों की मेड़ों पर पौधे लगाने की अपील की। गुना में एनसीसी ने

0: जागरूकता रैली निकाली और सिंहवासा तालाब परिसर में जिला प्रशासन ने पौधरोपण किया। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान बताए गए। वहीं देवास, अशोकनगर, इंदौर, शिवपुरी और धार में भी जिला प्रशासन की अगुवाई में पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है और अगले महीने की 31 तारीख तक आवेदन किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगरतला के ऐतिहासिक पुष्पबंता पैलेस को हेरिटेज होटल में बदलने की परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह और पूर्व राजघराने के सदस्य प्रद्योत विक्रम माणिक्य भी मौजूद रहे। इस परियोजना से त्रिपुरा और पूरे पूर्वोत्तर में पर्यटन को नई गति मिलेगी। बुजुर्गों के अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जून को प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। वृद्धाश्रमों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर रैली, नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य शिविर और सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। युवाओं और बुजुर्गों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए अंतर पीढ़ी संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। डिंडौरी के पाटनगढ़ गांव के गोंडी चित्रकारों की कला अब अमेजन ई कारीगर प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर तक पहुंचेगी। इसके लिए आजीविका ग्राम संगठन और डॉट्स एंड डैशेस संस्था के बीच MOU साइन किया गया है। गांव के 157 परिवार सीधे इस कला से जुड़े हैं, जिसमें 85 महिला और 72 पुरुष कलाकार शामिल हैं। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि इस कला को GI टैग दिलाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भोपाल में बाल कल्याण समिति के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 13 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 134 प्रतिभागी 4 बैचों में हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण में किशोर न्याय अधिनियम, मिशन वात्सल्य योजना और संकटग्रस्त बच्चों की पहचान जैसे विषयों पर व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है। रायसेन जिले के सेमरी गांव की बेटी अंजना यादव ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। आज उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से समत्व भवन में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस अद्भुत उपलब्धि के लिए अंजना को बधाई दी और उनके हौसले की तारीफ की। इंदौर में 9 जून से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। इस सम्मेलन में इंदौर को वैश्विक स्तर पर अपनी कृषि और नवाचार उपलब्धियां प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि ऐसे छोटे तालाब जिनका किसी नदी से संबंध नहीं है, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में मलेरिया निरोधक माह के अंतर्गत जिला चिकित्सालय परिसर में जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा 2 दिवसीय पंडित कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन 6 और 7 जून को देवास में किया जाएगा। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने आज जिले में खाद वितरण व्यवस्था, ई टोकन प्रणाली और जैविक खेती को बढ़ावा देने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और झाबुआ में 7 जून को समान नागरिक संहिता पर उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरगन ने आकाशवाणी परिसर में लगाया पौधा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं रज्जो राजा का गाया ये बुंदेली गीत।

साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत

0: लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इल्लाई, बहरौल और कुल आदि ग्रामवासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
1: कार्यक्रम लोकरंग में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं राजू पटेल का गाया ये कृषि गीत।

राजू पटेल और साथियों के गाए इस कृषि गीत के साथ ही कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 होने वाले हैं। अगला प्रसारण सुनिए आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। बस कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: के लाने आज एक रिपोर्ट सुनवा रहे हैं, रेडियो रिपोर्ट है जा, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित जो कार्यक्रम है और रिकॉर्डिंग सहयोग है अंशु तिलेठे को, संयोजक श्री चंद्रशेखर शर्मा को।
1: प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, इसकी सुरक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए जा रहे कदम से संबंधित विचारों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के विचार हम जानते हैं।
2: हम कई कारणों से आज के समय में पर्यावरण को लेकर हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल अवधारणा या जीवन पद्धति थी, आज विश्व हमारी तरफ इस नाते से भी देख रहा और उनको एहसास भी होता है। हमारे लिए तो परमात्मा की दया से ये प्रकृति का पांच तत्वों का बना हुआ पूरा समूचा, एक तरह से इसको सृष्टि भी कहें, तो सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई है और छोटे छोटे वेद वाक्य में सारी बातें पूरी हो गई। यत पिंडे तत ब्रह्मांड है, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड बनने के साथ हम ब्रह्मांड पे तो बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति या जीवन के लिए संध्या वंदन दीप प्रज्वलन के साथ, हम अगर अब सूर्योदय सूर्य की तरफ देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ, हमारी कोई पूजा पाठ से लेकर के भोजन भजन किसी प्रकार की पद्धति में अगर भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है। ये कई सारे उदाहरणों से कई बार प्रकाशित भी हुआ है, बताया भी गया है। जब जगदीश चंद्र बसु जी को नोबेल पुरस्कार मिला इंग्लैंड के अंदर रॉयल सोसाइटी में, वो डेमोंस्ट्रेशन दे रहे थे कि जब वैज्ञानिकों ने इस बात को मान लिया कि हाँ ये पौधों में प्राण होते हैं, तो बड़े लोगों ने उनको हर्षित होकर के बताया कि आप तो आपका दुनिया में नाम हो गया, कितना बड़ा काम आपने कर दिया, भारत के लोग तो आपको कंधे पे उठा करके घुमाएंगे। उनने बहुत अच्छे से बात करके कहा कि भाई ये बात सही है कि आपके सबके सामने मैंने इसको सिद्ध कर दिया है, लेकिन मेरे भारत में मेरा कोई सम्मान नहीं होने वाला, ये आप लोग ही करने वाले। तो उन्होंने कहा क्यों, आपके भारत के लोग इतने इस तरह से अच्छे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देते क्या? लेकिन हमारे लोग तो बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन वहाँ गांव से गांव के लोगों को भी मालूम कि पौधों में प्राण होता है, तो आपको नहीं मालूम था तो आपको बताने के लिए मैं यहाँ आपके बीच में खड़ा। यहाँ तो इस पूरी चीजों को लेकर के भारत की जीवन शैली बहुत आदि काल से इन सारी बातों को लेकर चलती रही है, इसलिए उसके मामले में कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। और इसी नाते से हम कदम कदम पे देखते हैं, रात के समय पौधों की पत्ती तोड़ने भी परिवार वाले मना करते हैं कि पौधों को सोने का समय हो गया, अभी इनको हाथ नहीं लगाना है। हमारे लिए वैसे तो कई बार अलग अलग प्रकार की बातों से कहा गया है, लेकिन ये बात सही है कि 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ माना गया है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस अवसर पर यहां के सभी प्रबुद्ध पर्यावरणविद प्रकृति चिंतक हृदय में अपने इस पवित्र भाव को धारण करते हुए इस कुशल नेतृत्व को भी याद करेंगे और अपने अपने तय भूमिका अदा करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई।
1: इसी तारतम्य में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी के विचारों को हमने जानना चाहा और हम लेकर आए हैं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनके विचार आप सभी श्रोताओं के लिए।
3: क्योंकि आज का दिन हम सबके बीच में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण हमें ध्यान में आता है, पहले तो वायु, फिर वृक्ष जो पौधे, फिर आता है जल। वायु की बात तो हमारे माननीय अशोक बड़वाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से, मगर अगर हम वृक्ष की बात करेंगे, पौधे की बात करेंगे, तो आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और मुझे गर्व से कहता हूं मैं कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में जब यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम जब चलता है तो पूरा मध्य प्रदेश के हमारे चाहे नेता हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे हमारे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, संगठन हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, अन्य सभी साथियों ने चढ़ बढ़कर एक आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाकर इतिहास दर्ज किया है कि आप सबने एक पेड़ माँ का नाम केंद्र पेड़ लगाया। ये हमारा सौभाग्य है, हम सबके जीवन सौभाग्य का दिन है। शायद हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन भी मध्य प्रदेश के अंदर आएगा कि हमें अपनी माँ के नाम से मिलेगा। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करूंगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि आपके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से अभियान चला है, अब मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में तमाम अभियान चल रहे हैं, मगर एक अभियान और भी बहुत महत्वपूर्ण हम सबके जीवन में है, जल गंगा संवर्धन अभियान। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब मध्य प्रदेश के अंदर चलता है तो आप सोचो, कल्पना करो कि लाखों खेत तालाब और मध्य प्रदेश की ऐसी धरोहर, चाहे वो चंडील काल के तालाब हो, चाहे वो बावड़िया हो, आज मुझे गर्व मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हम लोग कभी सोचते नहीं थे, ऐसी बाड़ियों का, छोटे छोटे तालाबों का, ऐसे हमारे आपके मार्गदर्शन में हजारों बाड़ियों का निर्माण हुआ ताकि जल का संरक्षण हो सके, जल को हम रोक सके के माध्यम से हम सबको जोड़ने का अवसर मिलता है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से यही आग्रह कहूंगा, पेड़ लगाने के साथ उसकी पानी को हम संरक्षण तो हमारी सरकार के मार्गदर्शन में हो ही रहा है, हम लोग कर ही रहे हैं, मगर हम सबकी जिम्मेदारी भी है, हम चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे हम आम व्यक्ति हो, वो संकल्प लेके जाए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कि हम पेड़ की सुरक्षा भी करेंगे, जल का संरक्षण भी करेंगे। मुझे वाले समय में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभियान चल रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ेगा, और हम लोग जो हमारी इच्छा है, हम लोग जो सोच रहे हैं, वो हम पुनः एक बार विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।
1: आज के इस कार्यक्रम में पुरस्कृत हमारे कृषक भाई की मेहनत और समर्पण को हम उन्हीं के मुख से जानते हैं, समझते हैं कि किस तरह उनके छोटे छोटे प्रयासों से उन्होंने पर्यावरण को संरक्षित करने का वीड़ा उठाया। आइए जानते हैं।
4: मैं विवेक सिंह राठौर हूँ सर, मैं पर्यावरण से जुड़ा हूँ। मैं बचपन से, हमारे घर में क्या है कि हमारे जो बहन थे तो उन्हें छोटे छोटे पौधे लगा रखे थे, तो हमने प्रेरणा वहाँ पाई। बाकी हमारे गांव में एक तालाब था, तो तालाब में क्या है सर, एक वो जैसे गांव की भाषा में कलम डाला खेलते थे, ऊपर चढ़ के ऊपर नीचे उतरते थे, तो वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली होगा। तो वहाँ से मेरे, मैंने आज दिनांक 548,934 पौधे जो परसों की निजी भूमि में लगाए, जो फारिश के जंगल वो तो अपनी जगह है ही सही, बाकी मैंने कहा कि ये जंगल तो है ही है, कौन नहीं अपन ऐसा करें जो एक निजी रोपण भी हो जाए तो उनके कोई सांस के कोई पैसे लगे ना कुछ नहीं, सुरक्षा भी बर्बाद हो जाए काश्तकार डर लेंगे। बाकी हुक्म निवेदन है कि इसके अलावा काश्तकार को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ, जो एक सांस की जंगल जो कटने जा रहे थे वो बचे है ना, अपनी पाट बल्ली जो अपने निर्मित करी खुद ही अपने, मतलब उनने मतलब ये मतलब उपयोग करी, इस कारण से जंगल का भी बड़ा। और इसके अलावा मैं एमपी तक भी निपट नहीं रहा, मैं राजस्थान में भी ये प्रक्रिया अपने जो थे, बहुत से लोग क्या पहले मूली काटते थे, आदिवासी लोग क्या है कि जंगल में जाके मूली काट के बेचते थे, मैंने उनको क्या करा, बीज से जोड़ा उनको, पौधे तैयार कराए जहाँ पानी का साधन था, तो वहाँ तो मैंने बेड तैयार करा जहाँ पानी का साधन, उनके नहाने धोने की जगह होती थी ना जो पानी जाता, वहाँ पे मैंने पौधे तैयार करे बीज से, वो पौधे मतलब हाट बाजार में बिकवा के उनको अर्जी टाइप पैदा करी, वो शेष पौधे उनकी निजी भूमि में लगाए जो काफ़ी वृक्षों के मामले में हो गए वो तो। और सभी कलेक्टर महोदय, फॉरेस्ट अधिकारी महोदय ने जो मैंने लगाए पौधे, जो वृक्ष बने, सबने सत्यापन करा। अभी गत वर्ष 4 जुलाई 2024 में कलेक्टर साहब मातम साहब ने, मैंने एक रोजर नदी जो निकलती है पिपुदा से, वो मैंने उन्हें दोनों सिरों पे रोकने की कोशिश करी, दोनों साइड पे मैंने पौधे लगा के वृक्ष बनाए, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि चलो हमें बताओ। तो 4 जुलाई 2024 में कलेक्टर साहब ने वो रोजर नदी जो बहती दोनों सिरों पे भूमि कटाव रोकने का, तो उन्हें 1 किलोमीटर जो मतलब घूम के उन्हें निरीक्षण करा, तो उन्हें बेहतर बजाय मेरे को सम्मानित करा इसके लिए। और हुक्म इसके लिए संभाग लेवल पे कलेक्टर महोदय, कितनी बार में संभाग गोल्ड मेडल मिला हो मेरे को, ग्रीन आइडल अवार्ड मिला, और आप लोग भी मेहरबान।
5: हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपने स्तर पर क्या प्रयास करके वो पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं?
4: किसान भाई मेरे लिए एक देवता, एक मतलब क्योंकि मेरे को उन्हें संभाला है नहीं, उनने मतलब क्या मेरे मतलब कार्यशैली को उनने संवारा, उनने मेरी बात मानी, और अपनी निजी भूमि में जो मेरे कहने के अनुसार जो अपनी भूमि मतलब जो शेष भूमि जो छोड़ के उनने वृक्षारोपण करे जो वृक्षों के रूप में पड़ती है, तो मैं सबसे बड़ा मेरे साथ में अभी भी कृषक भाई अभी आए हुए मेरे सर सभी बोलो सभी मतलब आज भी मेरे साथ में कुछ लोगों को लाए जो मैंने मतलब रोपण करा रखा उनका,
5: मतलब अपने स्तर पे कर संरक्षण कर सकते पर्यावरण
4: पर्यावरण सब मैंने मेरा फोकस होगा सबसे ज्यादा मैं मतलब कृषक भाई को ही देता हूँ, मतलब जो मेरी बातें उनने सर से स्वीकार करी, और विकट परिस्थिति में भी मतलब भूमि का टुकड़ा छोड़ के उनने, पहले तो हुक्म थोड़ा सा ये हुआ कि झाड़का वाला है, कौन झाड़का लगा है, मतलब शुरुआत में मेरे को बहुत कठिनाई शुरुआत में करे झाड़के तो मतलब क्या छुप जाते लोग, तो मैंने मतलब पर्यावरण पेड़ पौधे सबसे उनको बताया, मैंने चलो अपन क्या है कि ये बेड़ा कर सके उठा सकते जो अपन क्या पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण देंगे, जो मतलब

पूरी दुनिया को मतलब संचालित करेंगे। तो मतलब क्यों नहीं ये सब पुनीत कार्य में अपन तो कुछ कुछ एक जोड़ा और हुक्म में, जैसे मेरा फोकस ये रहा जैसे कहीं होटल पे गया तो जब होटल में चार आदमी बैठे हैं वहाँ तो सक्सेस नहीं होता उसमें, क्योंकि वो तो

0: है ना, नाम तो ये
1: वृक्ष के नाम पर,
0: वृक्ष के नाम से गांव में रखा जाता था। तो मैंने ये धावड़ा, तुमने धावड़ा के वृक्ष खाए या कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्यों नहीं, जैसे मतलब तो धावड़ा के जो अपने जो एक नामन करना पड़ा वो तो चीजें होना चाहिए, जैसे गुलरी पाड़ा मतलब आंबा पाड़ा और मतलब क्या खेरिया पाड़ा, ये हुक्म क्या है कि वृक्षों के नाम से गांव रखे, तो मैंने वो तो आज दिख भी नहीं रहे। तो इस प्रकार से मैंने और हुक्म एक मैंने ये देखा क्या है कि प्रजाति है मतलब वृक्षों के नाम से जो अपने दीवार के आसपास देवी पूजा होती है ना वृक्षों के नाम से, जैसे मैं राठौड़ हूँ तो हमारी नीम की पूजा होती है, तो मैंने ऐसे लोगों को बहुत जोड़ा, मैंने चलो आपकी काई पूजा हो गया फलाने, तो मैंने ये पेड़ लगा हुआ, तो मतलब इससे मतलब प्रेरणा मिली, तो ये मतलब वृक्ष बढ़ते गए हुक्म
1: और
0: जी हुक्म
1: और भावना से जोड़ा,
0: भावना से जोड़ा मतलब क्या मैंने धार्मिकता से जोड़ा चारों तरफ से मैंने क्या है जी हुक्म। और अभी भी मेरा लक्ष्य है, अभी मैं करीबन इसी मतलब साल इसी बरसात में करीबन 4-6 हजार पौधे मैं फिर लगाऊंगा, और मेरा रेसा हर साल हुक्म ये रहा है 4-5 हजार पौधे मतलब मैं हर वक्त में लगाता हूँ, और जहाँ तक मेरी जीवन है वहाँ तक मैं ये पुनीत कार्य मैं करता रहूंगा।
2: हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के अधीक्षण यंत्री श्री हनुमत सिंह मालवीय जी, वो हमें बताएंगे कि किस तरह प्रदूषण मुक्त होकर हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। आइए जानते हैं उनके विचारों को।
3: जैसा कि आपको विदित है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो कि विश्व पर्यावरण चिंतन के ऊपर हुई थी, उसमें भारत सरकार द्वारा भी भाग लिया गया था, जिसमें हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा भाग लिया गया था। उस समय से ये तय किया गया कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और उसका प्रतिवर्ष यूएन द्वारा एक थीम दी जाएगी। इस वर्ष की थीम जो दी गई है इंस्पायर्ड नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर और हैशटैग दिया गया है नाउ फॉर क्लाइमेट। जैसा कि आप जानते हैं औद्योगिक विकास और अर्बनाइजेशन की वजह से जल एवं वायु प्रदूषण बहुत बढ़ा है और इसके वजह से हम देखें तो इसके स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर अत्यंत गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। हमारी आम जनता और जितने श्रोतागण हैं उनसे अपेक्षा है कि वह इन कारणों के निदान के साथ साथ इनसे कैसे निपटा जाए, जिसको हम अडॉप्टेशन बोलते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे आप पाएंगे कि अभी बहुत तेजी से बारिश एक साथ हो जाती है अथवा टेम्परेचर बहुत एकदम से बढ़ जाता है, कभी हवा तूफान आते हैं, तो चाहे हमारा रहन सहन हो, चाहे हमारी खेतीबाड़ी हमारा बिजनेस हो, हम इन सब में इन द्रुतगामी घटनाओं से निपटने के लिए तैयारी करनी होगी, हमें अडॉप्टेशन करना होगा और हम ग्लोबल लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं उनको स्थानीय लेवल पे कैसे उनमें हमारा सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं उसके ऊपर काम करना है। चाहे हम जल संरक्षण से स्टार्ट करें या हम एनर्जी कंजर्वेशन से स्टार्ट करें, ग्रीन एनर्जी के उपयोग से करें, सोलार एनर्जी का यूज़ करें, साइकिल का उपयोग करें और हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं उनमें ऐसी एक्टिविटी होना चाहिए जिससे हम जल संरक्षण कर सकें, वायु प्रदूषण को बचा सकें, वेस्ट का मिनिमाइजेशन कर सकें। जैसा कि आपको ज्ञात है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ स्टार्ट किया। मिशन लाइफ में 7 थीम दी गई हैं जिसमें खास तौर पे वेस्ट मिनिमाइजेशन की बात है, जल संरक्षण की बात है, ठोस अपशिष्ट कम जनरेट करने की बात है, किचन वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट ई वेस्ट इत्यादि कम से कम हम उपयोग कर सकें, सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग नहीं करना है। इन सब को करके हम अपने देश प्रदेश और हमारी कॉलोनी इत्यादि को पर्यावरण प्रदूषण से बचा सकते हैं और इस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में हो रहे परिवर्तनों में कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे उनको कम किया जाए, उसमें हमारी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।
2: तो किसान भाइयों, ये एक विशेष कार्यक्रम स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम हम आपके लिए लेके आए। निश्चित ही हमें आशा है और विश्वास है कि आप विश्व पर्यावरण दिवस पर इस कार्यक्रम के मार्फत अपने आप को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तैयार करेंगे और अपने छोटे छोटे प्रयासों से हमारे पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को बचाएंगे, संरक्षित करेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाएंगे। हमेशा लेने की प्रवृत्ति

0: प्रवृत्ति छोड़कर देने की प्रवृत्ति अपनाएंगे। यही हमारे इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम है, सोच है, विचार है।
1: भैया अब आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित विशेष कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग सहयोग अंशु तिलेठे को दो और कार्यक्रम संयोजन श्री चंद्रशेखर शर्मा को। अब आगे बढ़ते हैं, बात पर्यावरण की हो रही है और आपकी पाती आपके फिल्मी गीत की भी हम बात कर रहे हैं। एक गीत आपको सुनवा रहे हैं, पर्यावरण से जुड़ो भाव।

हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। जी हाँ, जो गीत है फिल्म बूंद जो बन गई मोती, स्वर मुकेश और बोल आप सुन रहे हैं आनंद ले। एक पसंद करो है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने।

ये कौन चित्रकार है भैया? प्रकृति में जो चित्रकारी हमने देख रही है, देख रहे हैं, जाखों सवार भी की जरूरत है, सजा भी की जरूरत है, बना भी की जरूरत है। तभी तो हम कहते हैं ना कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। और जब पर्यावरण सुरक्षित रहे थे, संवर्धित रहे थे, बढ़े थे आगे, स्वच्छता रहे थे, तो मन कहन लगा थे, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह वो कहीं पे नहीं। भैया जो गीत हम आपके लाने सुनवा रहे हैं, जो गीत के लाने पसंद करो है, रामचंद्र माखीजा काफिर, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, श्रीमती सबीता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार ने बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से, और फिल्म को नाम है मन की आंखें, आवाज मोहम्मद रफी की।

0: त्रिपुरा के पतवा सरी के डोले मनवा कि आराम में उठते हिलो।
1: भैया गांव की बात करी जाए, पर्यावरण की बात करी जाए, तो जगीत में जो दर्शन हो रहे हैं, जगीत में जो आप सुन रहे हैं, वर्णन सुन रहे हैं, वो ही सब आपके लाने आज जमीन पे उतार के रखने हैं, बनाए रखने हैं। कैसे? कि गांव में अगर हरियाली है, खुशहाली है, तो पूरे देश में हरियाली खुशहाली रहेगी।

क्योंकि देश में सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा क्षेत्रफल गांव को है। हम सब गांव के लोगों के लाने भी अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, खेतों में, सब में स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने हैं, पर्यावरण को बनाए रखने हैं। सुना था जो गीत, आनंद लेते हैं। फिल्म गोदान को गीत है, गाँव है मोहम्मद रफी ने।

तो भैया जे थे आपकी पार्टी आपके फिल्मी गीत के आपके पसंद करे भाई गीत, और हम चाह रहे हैं कि आप भी अपने पसंद के गीत सुनबो चाह रहे हैं तो हमें चिट्ठी लिख देवे। हमारा पतो है ग्राम सभा कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल पिन 462002। संगे संगे भैया फिल्म को नाम अपनो पूरो पतो साफ साफ अक्षरों में जरूर लिख दो तो हम आपके लाने आगे भी गीत जरूर सुनवे हैं। चलत चलत एक बात हम आपको बता देवे कि अब खरीफ की फसलों की बुआई को टेम पास आ गयो है तो उन्नत किस्में जो हैं सोयाबीन की बे हो चाहे धान की हो उन सब की व्यवस्था करके रखें। किसान भाइयों ने धान की नर्सरी डालबे को काम शुरू कर दो है तो बाकी लाने भी बड़ी प्राथमिकता से करें। और रहो सवाल सोयाबीन को तो सोयाबीन में ध्यान रखने हैं कि हमें कम समय अवधि वाली और कम पानी वाली किस्मों को चुनाव करने हैं। और सोयाबीन को बीज जब खरीदें तो जा बात को ध्यान रखें कि बिल पक्को जरूर ले लें और जो प्रमाणित जातियां हैं वे ही खरीदें और ऐसी जगह से खरीदें जहां से आपके लाने पक्को बिल मिले, है ना। और बीज को अंकुरण परीक्षण तो हमें करके देखना ही है। जी कछु बातें हैं जो हमें आपसे और भी करने हैं थी, मनोटेम है नहीं है, समय को अभाव होवे कारण अब हम आपसे विदा ले रहे हैं। फिर कोई और कार्यक्रम में मिले हैं तो आपके लाने पूरी जानकारी दे हैं। तब तक के लाने स्वीकार करो मनोज भैया की दो हाथ जोड़े की राम राम।

ग्रामीण श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल कल भी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संकल्प।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: कार्यक्रम संगीत सरिता में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं लकी अली की आवाज में सईद असलम के अल्फाज।

कार्यक्रम संगीत सरिता अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगा हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को

0: 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए विकास जितना जरूरी है उतना ही अहम है हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
0: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि BSF जहां जहां है, SSB जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे।

0: देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सकता है एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
3: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आप

0: से संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। कार्यक्रम मनचाहे गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए सुनते हैं पहला गीत। ये है फिल्म आखिरी खत से गीत लिया गया है। लता मंगेशकर की आवाज़ है, अल्फाज कैफी आसमी के संगीत खयाम का है। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे ये सभी श्रोता। लक्ष्मीपुरा वार्ड से सुनना चाहते हैं NR शिवात्री, श्रीमती केशर शिवात्री, हेमंत, योगेश, कैलाश, निशा, सुनीता, विनीता, अभय, आभा, अनिमेश, आयुष और समस्त शिवात्री परिवार। इसी गीत की फरमाइश की है यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश।

से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से इस गीत की फरमाइश की है टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से सुनना चाहते हैं शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। तो आइए सुनते हैं सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर की आवाज़ में आखिरी खत से ये गीत।

0: AIR at 90.
1: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
2: कार्यक्रम मनचाहे गीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत। आवाज़ लता मंगेशकर की, अल्फाज जानिसार अख्तर के, संगीत जयदेव का। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे ये सभी श्रोता। सदर बाज़ार सागर से सुनना चाहते हैं मोहम्मद बशीर मकरानी, आसिफ मकरानी, साजिद मकरानी, इमरान मकरानी, अब्बास मकरानी, ईशान मकरानी, अनवर मकरानी, फराज मकरानी, समीर मकरानी, शबे नूर मकरानी, साबरीन मकरानी, रुबीना मकरानी, तवस्सुम मकरानी, रेहान मकरानी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता। ये सुनना चाहते हैं ग्राम विनेका, तहसील बंडा, जिला सागर से बलराम सेन, अरविंद सेन, रेखा सेन, रविंद्र सेन, संगीता सेन, महेंद्र सेन, रामदेवी सेन, सुरेंद्र सेन, नंदिनी सेन, रिया, गौरव, राज, आर्यन, कौशल, दीप्ति। नेपाल पहले सागर से फरमाइश की है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन ने। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर की आवाज़ को फिल्म प्रेम पर्वत में।

आकाशवाणी एट 90 कार्यक्रम मनचाहे गीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं अगली फरमाइश। ये फरमाइश की है, फिल्म का नाम है आप लौट चलें, आवाजें अलका याग्निक, उदित नारायण की, शब्द

कृष्णा समीर की संगीत नदीम श्रवण का और फरमाइश की है आप सभी ने बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबूल, पीवी कुलथे। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से सुनना चाहते हैं रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। राजकोट गुजरात से फरमाइश की है रश्मि झरना भरत कुमार ने। आकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से सुनना चाहते हैं शैलेश गौहाड़कर, वैशाली कुमारी गौहाड़कर, श्वेता, सुमित गौहाड़कर, धोनी गौहाड़कर, परी। तो आइए सुनते हैं सभी की फरमाइश पर अब लौट चलें फिल्म से ये गीत।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: कार्यक्रम मनचाहे गीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत जो पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं रूपेश सिंघई, महेश सिंघई, प्रज्ञेश सिंघई, प्रतेश सिंघई और समस्त सिंघई परिवार। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। मलोट कैंप पंजाब से स्कीत की फरमाइश की है सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, लखविंदर संधु और विवान मिगलानी ने। कोंजगिरी कॉलोनी कोपरगांव से सुरेश मलोदे, वर्षा मलोदे, श्रद्धा मलोदे, मानसी मलोदे। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी। आप सभी ने पसंद किया है एक लड़का एक लड़की फिल्म से ये गीत। आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति सुरेश वाडेकर की, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत आनंद मिलिंद का।

एक लड़का एक लड़की इस फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनेंगे।

0: जाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

इसके बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार, मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका, जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है, बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए, तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

और फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म मिर्जा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। मिर्जा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

गिरजा जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर

किड्स अवार्ड, आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है, उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही।

तो दोस्तों ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान, एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। अमलतास की झालरों पर जब उतरती है चांदनी, हवा के झोंके कुछ और मुखर हो जाते हैं। ताल झूमता है, कुमुदनी हुलस जाती है, तब अचानक होठों पर कोई अधूरी सी बात चली आती है।

जोड़ता है टूटे हुए तार को, तो कहीं दिल मचलता है बस एक इकरार को। कभी तो मिलता नहीं जरा सा करार, और कहीं छाया है नाजुक एहसासों का खुमार।

ये राज हैं ऐसे जो सरेआम बताए नहीं जाते, ये नख़मे हैं दिल के जो हर सांस पर गाए नहीं जाते। इन्हें तो बस वही गा सकता है जिसके दिल में बेपनाह मोहब्बत हो और आवाज हो ऐसी पवित्र कि लगे स्वाति की कोई बूंद हो।

फासले कदमों के नहीं हो, बीच में कई बरस खड़े हो, रातों में जागी हुई आंखें हो, होठों पर खामोश हुए नगमे हो, तो भी कोई सुन ले तो ये नगमे फिर गा सकते हैं और उन आंखों में उतर सकती है नींद की।

0: कभी से।
1: टप टप कर स्मृतियों की बरसात होती है जब कभी, रात के आंगन का कोना कोना भीग जाता है, अंधेरे के सितार पर गूंज उठता है एक उदास राग, और चांद अपने ख्यालों में डूब जाता है।

0: ये था विविद भारती का नजराना।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा

वे भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।